हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं डॉक्टर प्रीति सिंह। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपसे बात करने वाले हैं उस शक्ति के बारे में जो बिना किसी दवा के और बिना ही किसी इलाज के एक दर्शन के द्वारा हमारे मन को गहराई से बदल सकती है, जिसको कहा जाता है ध्यान, जिसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में, सोशल मीडिया के दबाव में, पढ़ाई और नौकरी की चिंताएं, इन सब के बीच में मन को शांति कहाँ से मिले? क्या कुछ ही मिनट रोज ध्यान करके हम सच में ज्यादा शांत, सकारात्मक और संतुलित हो सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस्कॉन से जुड़े हुए एक साधक जो भक्ति योग और मंत्र ध्यान का अभ्यास करते हैं। ये सिर्फ एक साधक ही नहीं है, ये एक पेशे से एक इंजीनियर है और इस्कॉन भक्ति शास्त्री के नाम से इनको जाना जाता है, और जो कि TTC सर्टिफाइड भगवत गीता ट्रेनर भी हैं, जो कि शारदा यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़े हुए हैं। इन्होंने 13 साल वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, अलग अलग विभागों में, R&D डिपार्टमेंट्स में इन्होंने IT कंपनीज में काम किया है, और पिछले 10 साल से इन्होंने वैल्यू बेस्ड सेशन और वर्कशॉप्स ली हैं, देश और विदेशों में इन्होंने यात्राएं की हैं और न्यूयॉर्क, USA, लंदन, कैलिफोर्निया, चाइना, ये कुछ ऐसे नाम मैं बता रही हूँ, ऐसे स्थान में बता रही हूँ जहाँ पे जाके इन्होंने भगवत गीता के प्रसार और प्रचार में अपना योगदान दिया है। बल्कि इसके अलावा ये बहुत सारे एकेडमिक कोर्सेज भी जो है ये डिलीवर करते हैं, जिसमें भगवत गीता, इमोशनल इंटेलिजेंस और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे इन्होंने बहुत सारी वर्कशॉप्स लगाई हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो आयोजित किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नाम है हमारे बीच में, जीव गोपाल दास जी, और जो हमें बताएंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र, जप माला और सरल साधना के जरिए कोई भी साधारण व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिकता, एकाग्रता और आनंद कैसे ला सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का सफर ध्यान और भक्ति के रंगों के साथ में। जीव गोपाल दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनो शारदा में।
1: धन्यवाद मैम, आपके इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक बहुत अच्छा मंच है जो कि आप इतने सालों से बहुत सुंदर रूप से लेके चल रहे हैं। रियली थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमारा इनविटेशन जो है एक्सेप्ट करने के लिए, और मैं खुद बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, उत्सुक हूँ ये जानने के लिए, क्योंकि आप पेशे से एक इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरिंग से आप कैसे भक्ति मार्ग में आप रमे, कैसे इस मार्ग पे आए और कैसे इस्कॉन का एक हिस्सा बन के आप गीता के प्रचार प्रसार में अपने आपको शामिल करने के बारे में सोचा?
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मैंने 13 साल इंडस्ट्री में जॉब किया, पूरी दुनिया में जाके आया, लेकिन एक प्रॉब्लम मैंने हर जगह देखी और वो थी हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो खुश नहीं है। मेरा सफर शुरू हुआ उस खुशी के पीछे भागने की। पेशे में तो मैं भागता रहा और अपने आप को एंजॉय किया, लेकिन जब उस खुशी की दौड़ में भागा तो मुझे एहसास हुआ कि पेशे से पूरी बात नहीं बनेगी, थोड़ी सी कमी है। उसको पूरा करने के लिए एक बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है, जब हम कोई इच्छा करते हैं तो पूरी प्रकृति और भगवान सब मिल के हमारे लिए कार्य करने लग जाते हैं। और यहाँ पर मेरे हाथ में श्रीला प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज मेरे हाथ में आई, और उसको क्योंकि एज एन इंजीनियर मुझे रिसर्च में बहुत सारा पढ़ना पड़ता था, भगवत गीता पढ़ना शुरू किया इसी एटीट्यूड के साथ, स्क्रूटिनाइजिंगली, इसमें कुछ गलती हो सकती है चलो पकड़ते हैं,
0: क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से।
1: एग्जैक्टली, गलती तो नहीं मिली लेकिन मेरे जीवन में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया और इससे मैं भक्ति योग में जुड़ा।
0: किस तरह के परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप?
1: जब हम देखते हैं भगवत गीता हमें बताती है कि आप इस संसार में जब भी जितनी भी खुशी, किसी भी वस्तु में जितनी खुशी को एंजॉय कर सकते हैं, वो वस्तु आने वाले समय में आपको उतना ही दुख प्रदान करने वाली। उदाहरण देखिए, आप मान लीजिए बहुत एक दो साल तक पैसा सेविंग करते हैं कि मुझे एक बड़ी कार खरीदनी है।
0: जी जी।
1: और आप खरीद के आ जाते हैं, शोरूम के बाहर निकलते हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन जैसे ही आप शोरूम से बाहर निकलते हैं और कार को आप जैसे ही टर्न मारते हैं और रोड पे आते हैं, अचानक से लेट से रिक्शा वाले ने आके स्क्रैच मार के निकल गया। तो बताइए वो स्क्रैच आपकी गाड़ी पे लगा या आपके दिल?
0: बिल्कुल दिल पे लगा।
1: इस गाड़ी में जितना सुख दिया
0: आपने तो मुझे कुछ याद भी दिलवा दिया कि हम कहते हैं ना कि ओनली योर चाइल्ड हैज द कैपेसिटी टू हर्ट यू मोस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि जितना प्यार हम अपने बच्चों से करते हैं, जितना ख्याल उनका रखते हैं, जितनी खुशी वो हमें देते हैं, तो क्या एक वक्त पे वो हमें सबसे ज्यादा दुख दे सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं और वो देते हैं।
0: अच्छा हमने भी दिया है, जब हम बच्चे थे तो हम भी अपने जो है माता पिता को पेरेंट्स को परेशान करते ही थे, तो दुख तो हमने भी दिया है। ये तो एक जनरेशनल प्रोसेस है जो आगे बढ़ रहा है।
1: यस, आप देखेंगे कि जिससे जितना लगाव है उससे जितना प्रेम मिलता है उससे उतना ही क्लेश भी मिलता है।
0: ओके
1: राइट। ये केवल दूसरों की बात नहीं है, रिश्तों की बात नहीं है, स्वयं हमारा शरीर भी जितना सुख देता है वो जाते जाते उतना दुख भी देके जाता है।
0: जी,
1: हमारा
0: जी।
1: मन जितना हमें सुख देता है उतना ही दुख भी
0: जाता है। देकर
1: बिकॉज इस संसार में एक कंसेप्ट है कि सुख के साथ दुख फ्री में मिलेगा, तो दो ऑपोजिट पोल्स के बीच में हमेशा हमें ट्रेवल्स करना पड़ता।
0: तो ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक पैकेज है जो कि साथ में ही आएगा।
1: लेकिन भगवत गीता हमें बताती है कि सुख और दुख के ऊपर भी एक ऐसी दुनिया है, जब सुख के पीछे भागते तो दुख मिल सकता है, लेकिन हाँ। एक ऐसी दुनिया है जहाँ की अगर हम सुख के पीछे भागेंगे तो सुख बढ़ता चला जाए, और उसको कहते हैं वो एक एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि ये दो पोल्स के बीच में दुनिया नहीं चलती। जब सुख के पीछे भागते हैं तो बढ़ता जाता है, और उसको सुख नहीं बोलते, उसको आनंद कहते हैं।
0: आनंद कहते हैं।
1: इस आनंद की खोज हमने शुरू करी और ये बढ़ता चला गया।
0: तो किस प्रकार का आनंद है ये जीव गोपाल दास जी जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम भी उस आनंद की अनुभूति करना चाहेंगे आपकी मौजूदगी के साथ में?
1: ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और भगवत गीता बताती कि ऐसे प्रश्न केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। अगर इसीलिए आप सबके मन में भी यही प्रश्न है कि हम कैसे इस सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, इस आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको ABCDE फॉर्मूला देंगे। ए फॉर्मूला इज ऐसे लोगों के साथ पहले एसोसिएट कीजिए जो कि इस आनंद की खोज में हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं तो क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर नहीं बनते अगर वो हॉकी के मैदान में जाकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते।
0: जी,
1: विच मीन्स कि उन्हें क्रिकेट के एक्सपर्ट्स का एसोसिएशन
0: चाहिए था,
1: और एक समय उन्हें चाहिए था, और एक ऐसा समय आया जब पूरी दुनिया उनके एसोसिएशन के पीछे दीवानी थी। सो एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: यानी जिन लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, जिस स्थान पे हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमें बनाने में, हमारी पर्सनालिटी को एस्टैब्लिश करने में।
1: एग्जैक्टली। आप देखिए कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया से दूर होना चाहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक और बताने आजकल कितने प्लेटफॉर्म्स आ गए, इनसे दूर होना चाहता हूँ। परंतु ये दूर नहीं हो पाते, प्रयास करते हैं, हर साल रिजोल्यूशन लेते हैं कि अब नहीं करूंगा, ये आदतें मैं छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ पाएंगे जब तक कि ऐसे लोगों का एसोसिएशन नहीं लेंगे जो कि छोड़ चुके हैं या छोड़ने का सीरियस प्रयास
0: कर रहे हैं, या इस प्रकार के वातावरण में रहते ही नहीं है, उसका प्रयोग करते ही नहीं है।
1: एग्जैक्टली।
0: तो देखिए, जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है हमारा, और इसके जो श्रोता है वो काफी हद तक एक छात्र कम्युनिटी भी है, स्टूडेंट कम्युनिटी भी है, तो खास तौर पे मैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बात आपसे पूछ रही हूँ कि समय के साथ में कई बार हमारे वातावरण के भी प्रभाव में आके हमारे कुछ स्टूडेंट्स कुछ एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, तो उस एडिक्शन से बाहर निकलने का भक्ति साधना में क्या जरिया हो सका है?
1: आपका ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा स्पिरिचुअलाइज्ड क्वेश्चन है। इस प्रश्न के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, पर देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स तैयार हैं कि नहीं।
0: जी।
1: सो फर्स्ट थिंग इज, अगर स्टूडेंट्स किसी भी तरह के एडिक्शन में फंसे हैं तो उन्हें सबसे पहली चीज ये सोचनी चाहिए थी क्या वे बदलना चाहते हैं। अगर उनके अंदर से प्रश्न आता है मैं बदलना चाहता हूँ, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। करने के लिए उन्हें ऐसे व्यक्तियों से एसोसिएशन लेना पड़ेगा जो कि अपने जीवन को बदल चुके हैं। मैं एक सुंदर सा उदाहरण देता हूँ। शिला प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, 1966 में वो न्यूयॉर्क पहुंचे, और न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद वो उनके गुरु ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया था कि जाकर आपको विदेशों में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है भगवद गीता और भागवत धर्म का। तो इसीलिए वे पहुंचे वहां पर, और वहां उन्होंने देखा कि समाज में कोई नियम ही नहीं है। एडिक्शन तो छोड़ दीजिए, एक्सट्रीम एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शन, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कोई ऐसा एडिक्शन नहीं था जो वो करते थे।
0: जी।
1: नहीं करते थे। परंतु शिला प्रभुपाद ने उनको एक चीज दी, जैसा हमने डिस्कस किया, एसोसिएशन, संघ प्रदान किया। किसका संघ दिया? शिला प्रभुपाद भगवान के एक शुद्ध भक्त थे, और उन्होंने शुद्ध भक्त जब किसी व्यक्ति को संघ प्रदान करता है तो किस प्रकार से उनके जीवन में चेंज आया आप देखिए। ऐसे लोग जो कि एडिक्शन से बाहर नहीं आना चाहते थे, कृष्ण का नाम जीवन में कभी सुना नहीं
0: जी,
1: लेकिन वे भक्ति योग को इतना सीरियसली प्रैक्टिस करने लगे कि सुबह 4 बजे उठते थे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, भगवद गीता पढ़ते ही नहीं थे, जाकर भगवद गीता को डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे ज्यादा से ज्यादा। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। जिसने कृष्ण का नाम नहीं सुना, भगवद गीता का भी सुना नहीं है, वो भगवद गीता के डिस्ट्रीब्यूशन को कर।
0: बल्कि मेरा अपना एक पर्सनल जो है अनुभव कहिए, ऑब्जर्वेशन कहिए, कि हम जिस धर्म से जुड़े हुए हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ तो गीता हमारे जीवन का एक आधार है, है ना। लेकिन अगर हम विदेश की बात करें तो उनका जुड़ाव तो आप छोड़िए, कि आपने जैसे कहा कि उन्होंने कभी धर्म का नाम ही नहीं सुना था इस प्रकार का, तो उनका जो भक्ति भाव हम देखते हैं वो हमें बहुत इम्प्रेस करता है कि कैसे एक इंसान एक डिफरेंट कल्चर से आकर उठकर दूसरे कल्चर में किस तरीके से अपने आप को जो है वो समाहित कर लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो असर आप बात कर रहे हैं, ये कैसे होता है, किस प्रकार से ये हम किसी व्यक्ति को जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं कि आप इस भक्ति भाव की तरफ जाएं, आप एडिक्शन से जो है बाहर निकलें, और क्या क्या जरिए हो सकते हैं इसको अपनाने के?
1: सबसे प्रमुख, मैम आपने बहुत अच्छा ये भी प्रश्न किया है, सबसे प्रमुख चीज जो व्यक्ति को जानना चाहिए, अपनी सही पहचान को
0: जी।
1: हमारी सही पहचान का अर्थ है कि क्या जो मैं रोज सुबह ब्रश करते हुए आईने में देखता हूँ,
0: हाँ,
1: क्या मैं यही हूँ? कहने का तात्पर्य ये है,
0: यानी हमारा क्या शरीर ये हमारा ही है या हम ही शरीर के ही हैं,
1: या मैं शरीर हूँ भी कि नहीं,
0: हूँ भी कि नहीं।
1: फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की तरह देखिए, अगर ड्राइवर कहे कि मैं ही गाड़ी हूँ,
0: हाँ,
1: तो क्या ये सही होगा?
0: हाँ,
1: तो ड्राइवर तो गाड़ी नहीं होता,
0: नहीं हो सकता।
1: गाड़ी केवल एक माध्यम है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए
0: जी।
1: इसी प्रकार से ये शरीर हम नहीं है, क्योंकि ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवत गीता हमें बताती है कि आप शरीर नहीं है, आप शरीर को चलाने वाले ड्राइवर अर्थात आत्मा है, और उस आत्मा की पहचान अगर आप सही से कर लेते हैं तो फिर आप केवल इस शरीर को जैसे चलाना चाहें, अपने मन और बुद्धि को जैसे चलाना चाहें, इसको चला सकते हैं। मन तब परेशान करता है जब आप सोचते हैं मैं मन हूँ। जब आप मन को बोलेंगे कि तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम है, तुम मैं नहीं हूँ, अर्थात मैं आत्मा हूँ और तुम मेरे मन हो, मैं मन नहीं, जब मन को स्वयं से अलग कर कर वो व्यक्ति देखने लगता है तो उसमें सुधार की गुंजाइश है। लेकिन किसी व्यक्ति को आप बोलेंगे कि आप सही नहीं है, तो उस व्यक्ति को ये प्रश्न पूछना चाहिए, सही क्या नहीं है? आप शरीर की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, या बुद्धि की बात कर रहे हैं? कि आत्मा तो हमेशा सही है,
0: सही है बिल्कुल।
1: तो जब पता चला कि प्रॉब्लम तो मन में थी, मन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उस पे काम करते हैं। लेकिन वो मन मैं ही मान लूंगा ना, तो मेरा अहंकार इसे एक्सेप्ट करने के लिए मुझे मानने नहीं देगा, और मेरा अहंकार मुझसे कहेगा अरे मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। और यहाँ हम सुधार करने के लिए तैयार नहीं, कितना ही बुरा एडिक्शन हो हमारे जीवन में, लेकिन वो सुधारा जा सकता है अगर हम एक्सेप्ट करें कि वो प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं है, हमसे जुड़े एक एलिमेंट में, तत्व में है। गाड़ी में प्रॉब्लम है उसको सुधार सकते हैं, ड्राइवर में प्रॉब्लम है तो मुश्किल हो गया ना। इसलिए मन को अपने से अलग कर देखकर और फिर उस पर कार्य करें, बड़ा आसान।
0: तो ये जो आप कह रहे हैं कि शुरुआत करें अपने मन पे काम करने की, उस मन पे काम करने के लिए पहला स्टेप क्या हो सकता है?
1: मन को क्या अच्छा लगता है वो करिए। कितना आसान हो गया ना,
0: जो मन करे, जहाँ मन जाए, क्योंकि मन तो एक चंचल है। अक्सर हम कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, ये शब्द यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं इनका मन के लिए, तो उस चंचला को भी तो नियंत्रित करना जरूरी होता है।
1: आप अगर स्प्रिंग को दबाएंगे, 1 साल तक दबाए रखेंगे, तब भी वो उछल के रिएक्ट करेगा। मन भी बेचारा ऐसा ही है, उसमें इसकी क्या गलती, उसकी प्रकृति ऐसी। मन में 3 चीजें होती है, थिंकिंग अर्थात सोचता है, फीलिंग अर्थात कुछ महसूस करता है, और इंटेंशनैलिटी यानी कि कुछ करने की उसमें प्रवृत्ति होती है। अब ऐसे में जो दूसरा मैंने पार्ट, मन के अंदर फीलिंग्स होती हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ महसूस करना चाहता है, जहाँ उसको अच्छा लगता है वो करता है ना। तो अगर हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना है और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है, देखिए 2 चीजें मन एंजॉय करता है, एक तो या तो आध्यात्म में बढ़कर अपने आप को कंट्रोल कर लेगा
0: जी,
1: या फिर यू नो भौतिक विषयों में, एडिक्शन में कहीं ना कहीं
0: फंस जाएगा। और भौतिक भी अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एडिक्शन, जो कहते हैं कि हर व्यक्ति एडिक्टेड है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अल्कोहल एक एडिक्शन है या ड्रग्स एक एडिक्शन है। मुझे कई बार लगता है कि चाय भी एक एडिक्शन है जो अब मेरे जैसे भारतीयों को बहुत विचलित करती है। बार बार किसी से बात करने की इच्छा होना, मन को खाली करना, वो भी एक एडिक्शन है। कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी बहुत फैलाते हैं अपने आसपास, वो भी एक एडिक्शन है कि उनको उस तरह की बातें करने की आदत हो गई है। तो ये जो एडिक्शन है, जो खास तौर पे हम जिस पे बात कर रहे हैं, तो भक्ति मार्ग में उससे निकलने का क्या तरीका बताया गया? उस मन को नियंत्रित तो नहीं करने की बात कहूंगी मैं अब, क्योंकि आपने कहा जितना नियंत्रित करेंगे वो उतना बेकाबू होता चला जाएगा। तो उसको सही मार्ग पर लेकर आने का क्या तरीका हो सकता है?
1: वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। अब अगर दूसरे स्टेप पे आगे बढ़े, कंट्रोल मत करिए, फोर्स मत करिए मन को। मन को जो अच्छा लगता है वो करते हैं ना।
0: हाँ।
1: तो हम लाइफ में अगर एनवायरनमेंट ऐसा रखें, जैसे कि सुबह जल्दी उठना,
0: हाँ,
1: सुबह वॉक पे जाना,
0: हाँ,
1: सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन करना, अच्छा क्वालिटी का भोजन लेना,
0: हाँ,
1: केवल जिह्वा की तृप्ति के लिए रोज पिज्जा बर्गर नहीं खाना। तो कहने का तात्पर्य, अगर अच्छी आदतों में भी मन को अच्छा लगने लगे तो करने लगेगा,
0: करने लगेगा।
1: तो मन को ये कन्विंस करना और उस ज्ञान के स्तर पर लाना कि अच्छी चीजें अच्छी,
0: तो यानी मन को भी हमें कन्विंस करना होगा, बच्चे की तरह समझाना होगा उसको कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये बुरा है,
1: उसके इमोशंस में अच्छी चीजों को भरना है।
0: हाँ।
1: जैसे कि जब टंकी में,
0: हाँ,
1: पानी गंदा होता है,
0: हाँ, हाँ,
1: तो हम टंकी पूरी इतनी बड़ी टैंकर साफ करने तो नहीं जाते,
0: नहीं जाते।
1: हम क्या करते हैं,
0: फिल्टर लगा देते हैं।
1: हाँ। फिल्टर भी लगाते हैं और एक और चीज करते हैं, ऊपर से साफ पानी चालू करते हैं और नीचे से गंदे पानी

0: को निकलने का रास्ता खुला छोड़ देते हैं। हाँ। जैसे ही गंदा पानी निकलता जाता है, पानी साफ हो जाता है। कहने का तात्पर्य, अच्छे विचारों को, सात्विक विचारों को मन में आने दें। हाँ। भगवत गीता के उत्तम विचारों को मन में आते रहने दें। हाँ। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन में जगह तो उतनी है ना।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: जैसे अच्छे विचार आएंगे, जो पुराने विचार हैं, दुखी विचार हैं, धीरे धीरे बाहर होते जाएंगे।
1: बाहर होते
0: कुछ समय में आप देखेंगे मन में अच्छे विचार ज्यादा हैं और स्वयं अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते।
1: अक्सर कहा जाता है कि मेरा मन नहीं लगता है ना, और जैसे हमारे बॉलीवुड ने मन को बड़ा रोमांटिसाइज भी कर दिया है कि मेरा मन तुम्हारे बगैर नहीं लगता है, या मन जो है वो अकेले खुशी नहीं देता है, किसी और के साथ खुशी नहीं देता है। तो मन लगाने का क्या तरीका है, भक्ति मार्ग में मन को हम कैसे लगाते हैं और किस प्रकार से जो है वो, जैसे आप एक तरीका आपने सुझाया कि सुबह समय से उठें और मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करने के क्या तरीके हो सकते हैं, ये हमें कैसे अफेक्ट करता है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए।
0: इस पे दो प्रश्न मैं देख पा रहा हूँ। पहला ये कि मन को कैसे हम अध्यात्म में लगा सकते हैं
1: जी।
0: और बॉलीवुड ने जिस प्रकार से
1: हाँ।
0: मन को या दिल को
1: हाँ।
0: जिस प्रकार से रोमांटिसाइज किया है
1: हाँ।
0: उसी को यूज कर लेते हैं। जब किसी से प्रेम होता है यू
1: हाँ।
0: नो you know, आप देखिए बॉलीवुड में भी
1: हाँ।
0: या हॉलीवुड में भी
1: हाँ।
0: लव जो होता है, प्रेम होता है
1: जी।
0: वो वन साइडेड होता है, एक तरफा होता है,
1: एक तरफा है।
0: कहने का तात्पर्य है
1: हाँ।
0: कि उसे एक तरफा ही रखे ना, बट प्रॉब्लम
1: लेकिन क्या एक तरफा जो प्रेम है, क्या वो पूर्ण प्रेम कहा जा सकता है, क्या वो फुल सर्कल है?
0: यस, वही पूर्ण है। यही मैं इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि एक तरफा लव ही, प्रेम ही जो है पूर्ण है
1: हाँ।
0: जब दो तरफा से हो जाता है
1: तो
0: उसमें स्वार्थ जुड़ जाता है। मैं कुछ आपके लिए करता हूँ, आप मुझे बदले में कुछ देंगे, ये तो बिजनेस हो गया,
1: ये बिजनेस हो गया।
0: प्रेम तो केवल एक तरफा ही होता है,
1: यानी अपेक्षा रखना जो है वो बिजनेस है।
0: एग्जैक्टली अभी हम भक्ति योग में यही करते हैं कि भगवान से कहते हैं, एक संस्कृत में चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है
1: जी।
0: उसकी छोटी सी पंक्ति ऐसी है
1: जी।
0: यथा तथा वा विदधा तु लम पटो मत प्राण नाथस्तु स एव नापरः। व्हाट डज द चैतन्य महाप्रभु सेज, महाप्रभु सेज कि देखिए
1: हाँ।
0: भगवान, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ
1: हाँ।
0: मैं आपकी प्रेम से सेवा कर रहा हूँ
1: जी।
0: आप मेरे साथ कुछ भी करिए,
1: समर्पण,
0: आप कुछ भी करिए मेरे
1: जी,
0: साथ
1: जी,
0: कितने
1: जी।
0: ही बुरे दिन दिखाइए, लेकिन ये मेरी परीक्षा है, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, आप ही मेरे प्राणनाथ
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी।
0: जब हम ऐसा कर देंगे तो स्वार्थ से हम बाहर निकलने के लिए अपने आप को खोल देते हैं,
1: यानी प्रभु को समर्पित कर दें हम स्वयं को।
0: एक जगह प्रेम है और दूसरी तरफ काम है। बॉलीवुड में काम को प्रेम की तरह दिखाया जा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान में होता है वो इन दोनों को अलग अलग करके देख पाता है, और वो शुद्ध प्रेम से बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा में लगा रहता है, उससे जो आनंद आता है वो बढ़ता जाता है। लेकिन अगर कामवश व्यक्ति किसी प्रेम में फंसा है, काम में फंसा है, तो थोड़े दिन के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसीलिए हम जब काम की भावना से किसी रिलेशनशिप में या मैरिज में या किसी भी रिलेशनशिप में जब घुसते हैं
1: जी,
0: तो उस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन आता है।
1: इट डजंट लास्ट लॉन्ग।
0: यस, और जब निस्वार्थ सेवा में जाइए उस रिलेशनशिप में, वो पूरे जीवन आपके साथ।
1: तो ऐसा कोई मार्ग, जैसे अक्सर हमने सुना है कि आपने कहा दो तरीके हो सकते हैं मन को जो है वो सही रास्ते पे लगाने के, एक मेडिटेशन हो सकता है, अगर हम करें तो मन नियंत्रित रहेगा, दूसरा तरीका भक्ति मार्ग भी हो सकता है। तो क्या ये दो अलग अलग तरीके हैं, और हैं तो किस प्रकार से ये हमारे शरीर और मन पे काम करते हैं?
0: ओके, तो इसमें हम क्विकली अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भक्ति क्या अलग से करनी पड़ती है या हमारे अंदर है
1: जी।
0: सो अगर शॉर्ट में बोले तो एक बच्चा
1: हाँ।
0: माँ से बच्चे का क्या रिलेशन होता है, क्या रिश्ता है ये माँ और बच्चे का?
1: एक जुड़ाव है, एक ममता। हाँ,
0: ममता, ममता में प्रेम है
1: जी जी।
0: तो ये प्रेम का बच्चे का और माँ का जो रिश्ता है
1: जी जी,
0: इसमें जब माँ को बच्चे से प्रेम होता है तो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर बच्चे को सर्व करती है
1: जी जी।
0: एक दिन ऐसा आता है जब बच्चा उसके पंख
1: निकल
0: जाते हैं, निकल
1: हाँ।
0: जाते हैं और वो उड़ना चाहता है
1: हाँ।
0: माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, जा तू उड़ और अपने जीवन में यू नो सक्सेस को, सफलता को प्राप्त कर,
1: को प्राप्त कर।
0: वो रोती है, अंदर ही अंदर रोती है, लेकिन वो निस्वार्थ होती है, ये माँ का प्रेम
1: बांधता नहीं है। यानी प्रेम कभी बांधता नहीं है हमें किसी रिश्ते में, या फिर
0: दूसरे रिश्ते के बारे में सोचता है कि ये कितना अच्छा करेगा इस प्रेम में
1: हाँ,
0: अपने हाँ। स्वार्थ से बाहर निकल के व्यक्ति
1: निकल के सोच पाता है,
0: और यही भक्ति है। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है और हम भगवान का अंश हैं। जैसे कि शरीर से माँ ने हमें जन्म दिया है, वैसी आत्मा रूप में इस आत्मा को भगवान ने जन्म दिया है। भगवान का अंश है ये आत्मा। तो उस एंगल से हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता हुआ? प्रेम का
1: रिश्ता।
0: और प्रेम का रिश्ता है तो क्या करेंगे? हम उनकी सेवा करेंगे। शरीर समाप्त हो जाएगा एक दिन, लेकिन आत्मा हमेशा अमर है,
1: साथ में रहेगी।
0: बिल्कुल, हमारा इटर्नल शाश्वत रिश्ता है भगवान से, प्रेम का। और यही अगर हम प्रेम भगवान से करते हैं तो भक्ति हमारे जीवन का अंश है, अलग से नहीं करनी है।
1: जी जी। और ये जो मार्ग है, इस पे चलने में परिवार का, हमारे आसपास के घर का माहौल का कितना असर पड़ता है?
0: जैसे हमने कहा कि शरीर जो है बदलता रहता है, आत्मा का पिछले जन्म में तो कोई घर था। अगर उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है भक्तियों को, इस जन्म में आकर उसको अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तब भी वो फेवरेबल एनवायरनमेंट बना लेता है या उस फेवरेबल एनवायरनमेंट में चला जाता है। ये नेचुरल है हमारे साथ। अगर मुझे क्रिकेट खेलने की इच्छा, तो अपने आप क्रिकेट के ग्राउंड में मिलूंगा मैं आपको। वैसे जिसका भक्ति योग, जिसने पहले भी पिछले जन्मों से भक्ति करी, अभी पूर्ण नहीं हुई, पूर्ण करने के लिए वो अगले जन्म में भी वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के पहुंच जाएगा।
1: यानी कि अक्सर हम कहते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें लगता है कि शायद इनसे पहली बार नहीं मिले, मिलते ही, जैसे आज आपसे मुझे मिलके ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे पहले भी मिली हूँ। तो ये एक हमारा रिश्ता होता है जो हम कभी पहले किसी और जन्म की जब हम बात करते हैं, या एक आप कहिए कि लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं, लाइक माइंडेड जो पीपल होते हैं, तो उनका मन को एक दूसरे को आप पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं वो मेरी समझ में आ रही है, और जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो आप उस भाव को समझ पा रहे हैं। तो ये रिश्ता बहुत ज़रूरी है भक्ति मार्ग पे चलने के लिए। मैं जीव गोपाल दास जी, एक ऐसी समस्या की बात करूँगी कि जो हमारा जो युवा वर्ग है खासतौर पर, वो बहुत जूझ रहा है समस्या से। और ये समस्या ऐसी है कि मुझे लगता है कि जिसमें शायद उनकी ज़्यादा गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि सोशल मीडिया का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उनको पोस्ट करना होता है, लाइक करना होता है, दोस्तों ने लाइक नहीं किया, या फिर रात भर जो है गेम खेलते हैं, सुबह पेरेंट्स जो है वो शिकायत करते हैं कि सुबह टाइम से नहीं उठते हैं, स्कूल में नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, एग्जाम्स के समय पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेटली ये जो सारी चीज़ें हैं उनको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। तो क्या भक्ति मार्ग में ऐसा कोई रास्ता है जिसके द्वारा जो है वो अपने इस तनाव से बाहर निकल सकते हैं?
0: अभी हमने जैसे चर्चा किया कि भक्ति करनी नहीं होती,
1: हो जाती है,
0: हमारे अंदर
1: होती है।
0: इसी प्रकार से अगर मान लीजिए, उदाहरण देता हूँ कि एक मछली से कहा जाए कि आपको पेड़ पे चढ़ के कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आना है, और बंदर से कहा जाए कि पानी में आपको एक घंटे तैर कर फर्स्ट आना है, तो दोनों के लिए अननेचुरल है, अप्रकृतिक है, प्रकृति के उनके विरुद्ध है।
1: बिल्कुल।
0: सो भक्ति योग हमें ये बताता है कि आपकी जो प्रकृति है उसको कैसे हम भगवान की सेवा में लगा सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं, जैसे आपने देखा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था
1: जी।
0: अब 10 12 13 साल जॉब करने के बाद अगर मैं भक्ति में आता हूँ, तो क्या मुझे अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए? डेफिनेटली यस। और इसी तरह से हम शारदा यूनिवर्सिटी में कुछ समय से एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं
1: जी,
0: और ये प्रोग्राम बड़ा सुंदर है
1: जी। हाँ, और मैं खास तौर पे इस प्रोग्राम पे अभी आने ही वाली थी, क्योंकि इसके बारे में भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि किस रंग में ये प्रोग्राम आप प्रस्तुत कर रहे हैं, किस तरीके से ये हमारे छात्रों को, हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को प्रभावित कर रहा है, और कुछ ऐसे उदाहरण अगर आंखों के सामने आप देख पाते हैं, कोई ऐसे एग्जांपल कि बच्चों के जीवन में कोई बदलाव आ रहा है इससे, तो वो मैं जानना चाहूंगी।
0: राइट मैम, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सो नेचुरली हमारी कुछ फीलिंग्स होती हैं, वो किसी ना किसी डायरेक्शन में इंक्लाइंड होती हैं। जैसे कि जैसे ही हमने यहाँ पर इन प्रोग्राम्स को शुरू किया, हम शुरू में कीर्तन करते हैं विद म्यूजिक एंड डांस, तो उसके साथ साथ म्यूजिक डांस के साथ जब हम इस कीर्तन को करते हैं, तो अपने आप ही नेचुरली कुछ स्टूडेंट जिनको म्यूजिक अच्छा लगता है, जिनको डांस अच्छा लगता है, स्वयं अपने आगे आ गए, उन्होंने कहा हम भी कीर्तन करना चाहेंगे। सो उनके अंदर वो उनका नेचर था, हमने उनको एक चैनलाइज किया
1: जी। जी,
0: ऐसी कुछ स्टूडेंट्स आए, बोले कि सर हम इंजीनियरिंग में हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा जो मैंने किया, मैंने इस प्रोफेशन से सीखा और मैं अभी उसी टैलेंट को सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ। हमारे आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशंस को भी जो है टेक्नोलॉजी में का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए, अर्थात ये टेक्नोलॉजी जो हमें दे सकती है वो हमें भी करना चाहिए
1: जी।
0: तो इस प्रकार से उन बच्चों ने कहा यस सर हम भी करना चाहेंगे। आप आइए, इंटर्नशिप करिए हमारे साथ में और अच्छे से एक्सपोजर लीजिए। बच्चे बिल्कुल खुश हो गए, बोलते हैं यस सर हम करना चाहेंगे। उन्होंने अपना डिटेल्स दिया कि भाई आप ये रहा हमारा सीवी, आप प्लीज इसको परस्यू करिए। कुछ स्टूडेंट्स आए बोले सर मैं क्या कर सकता हूँ। हमने कहा आप क्या कर सकते हैं ये आप सोचिए, आपका नेचर क्या, आपकी प्रकृति क्या है। और आप भगवत गीता में बताती कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, अर्जुन के अंदर तीर चलाने का टैलेंट था उसको भगवान की सेवा में लगाया, वैसी आपके अंदर जो भी टैलेंट है अगर उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहे तो वो आपके बंधन का, इस संसार में बंधन का कारण बन सकता है। अगर पूर्ण रूप से मुक्त होना है तो जो कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है उसको भगवान की सेवा में लगाइए। इसलिए स्टूडेंट से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये म्यूजिकल अवेकनिंग का जो प्रोग्राम है एवरी ट्यूजडे इवनिंग 4 PM शारदा यूनिवर्सिटी के टेम्पल में हॉल में होता है, और वो आकर जरूर अटेंड करें। वहाँ आप अपने टैलेंट को फ्रीली कैसे आध्यात्मिक रूप से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। मंदिर केवल घंटी बजाने के लिए नहीं है, मंदिर वो है जो आपके अंदर के नेचर को बाहर निकाल कर लाए ताकि आप अंदर और बाहर दोनों तरफ सफाई से देख सके। ये हम
1: सो अध्यात्म हमें वो क्लैरिटी देता है कि हम अंदर और बाहर अच्छे से देख पाते हैं, डिफरेंस समझ पाते हैं।
0: हाँ, आप देखिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था लेकिन उसका टैलेंट जो था वो तीर चलाने में था, और भगवान ने उससे कहा तुम्हारा टैलेंट है तीर चलाने का तो उसे ही भगवान की सेवा में लगाओ, अलग से जाकर कहीं योग और ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है।
1: जी
0: यही भक्ति योग,
1: यानी अगर हम अपने कर्म पे ध्यान दें, जैसे गीता में कहा गया है कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, कर्म करते जाएं और भक्ति भाव से अपने कर्म को प्रभु को समर्पित करते हैं, तो ये जो समर्पण की जो भावना अगर हमारे अंदर रहेगी तो ये स्वयं ही हमें भक्ति मार्ग पे ले जाएगी।
0: जी।
1: और जो तनाव, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी जो हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है हम स्वयं ही इससे बाहर निकल पाएंगे।
0: यस, मैं बहुत सुंदर कहा, इसमें छोटी सी बात मैं जोड़ूंगा
1: जी
0: कि हमें किसी ना किसी को गुरु तो हम बना ही लेते हैं, या तो भगवत गीता को अपना गुरु बना लें या मन को गुरु बना
1: लें।
0: मन को बनाएंगे तो वो क्या करवा रहा है ये तो हमने देख लिया, एक बार भगवत गीता को गुरु बना के देखिए।
1: तो जो गुरु की जो एक कंसेप्ट हमारे धर्म में मौजूद है, हमारे पुराणों में मौजूद है, तो वो गुरु ही हमें जो है आगे लेके जाते हैं, हमारे सूत्रधार बनते हैं जीवन के।
0: यस, भगवत गीता 4th चैप्टर में भगवान इसको कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनाम् तत्वदर्शिना। जिसने तत्व को देखा है वो आपको तत्व के बारे में बता सकते
1: हैं।
0: आपने बस 3 चीजें करनी है, जाके समर्पित करना है, दूसरा प्रश्न पूछना है, तीसरा थोड़ी सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव। और इसी की प्रैक्टिस हम यहाँ करते हैं।
1: बहुत सुंदर। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जितना आनंद मुझे, जैसे आनंद की अनुभूति मुझे हुई है इस कार्यक्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत करते हुए, आप सबके बीच लेके आते हुए, उतनी आनंद की अनुभूति आपको सुनने में भी ज़रूर प्राप्त हुई होगी। तो अभी है हमारे साथ में जीव गोपाल दास जी, जो कि अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं और गीता दर्शन के लिए और इस्कॉन के प्रचार प्रसार के लिए, भक्ति मार्ग के लिए, और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जैसे आपके जैसे लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने समय निकाला और हमें, हमारे छात्रों के साथ में, हमारी कम्युनिटी, हमारे समुदाय के साथ में सुनो शारदा 90.8 FM पे हमारे बीच में ये कुछ अपने विचार साझा किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते रहेंगे दोबारा से, फिर से कोशिश करेंगे कि फिर से आपके विचारों को हम सुनो शारदा पे दोबारा से जो है प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद
0: इस प्लेटफॉर्म पर गीता के विचारों को व्यक्त करने का जो आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवद गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूँ गगन आपके साथ, वो गगन हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूँ अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से। इसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें होती हैं। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हम समुदाय की बातें करते हैं, आपकी बातें करते हैं, जिंदगी को जीने की बातें करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने जिस तरीके से बातें की तो जाहिर सी बात है कि आप समझ ही गए कि जीने की हम बात कर रहे हैं। और जल को पीने की जब बात होती है तो शुद्धता की बात होती है, और शुद्धता की जब बात होती है तो एक ब्रांड की बात होती है। वो ब्रांड कौन सा है उसके बारे में जानेंगे जरूर। लेकिन आज मेरे स्टूडियो में खुद चलकर एक बड़ी शख्सियत हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं, बहुत बड़े अनुभव के साथ आप पाते हैं। और जो पीछे अनुभव है, मैं देख पा रहा हूं कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर मार्केटिंग में आप रहे हैं आयोटा वाटर, प्रेजेंट टाइम में आप हैं, और ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर BN ग्रुप में आप जुड़े रहे हैं, हेड ऑफ मार्केटिंग वेंकटेश नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में आप रहे हैं नोएडा में, और कैटेगरी मार्केटिंग मैनेजर पतंजलि में आपने भी बहुत अच्छा काम किया है, और एक बहुत बड़ा ब्रांड जिसका नाम है बिस्लरी से भी आप जुड़े रहे। आप हैं मेरे साथ मिस्टर अजीत कुमार सिंह। तो सिंह साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, मैं अजीत कुमार सिंह।
1: सर, कहीं कुछ परिचय में कमी रह गई है तो आप मुझे बता सकते हैं। कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
1: और जो आपका एक ब्रांड है आयोटा वाटर, जिसमें आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं,
2: जी जी जी,
1: तो इसके बारे में सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये थॉट कैसे आया और किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। ऑफलाइन आपने मुझे इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया, तो थोड़ी थोड़ी हम बातों को शुरू करेंगे।
2: जी जी बिल्कुल। आयोटा वाटर एक ब्रांड नहीं, एक सोच है, एक समाज को ध्यान में रख
1: के मार्केटिंग मैनेजर है। और यही चीजें होती, यही चीजें इंसान को आगे लेकर जाती हैं। ग्रेट
2: जी, एक अपने आप में एक सोच है, एक सोच के तहत हमने एक विज्ञान का जो विषय है उसको हमने अपनाया है इस पानी के अंदर। मार्केट में पानी विगत 20-25 सालों से जो पैकेज ड्रिंक वाटर का मार्केट चल रहा है, उसमें हमने एक इनोवेशन का सोचा जो एक जनकल्याण का भी माध्यम बने, पानी के साथ साथ जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारी बाकी चीजें हमारे लिए बाय प्रोडक्ट्स है। हमारा इंटेंशन ये, हमारा उद्देश्य, लक्ष्य ये है कि लास्ट माइल तक हमारा पानी पहुंचे, गांव-गांव में, घर-घर तक हमारे पानी पहुंचे। आज शुद्ध पानी अपने आप में एक विषय है, और पानी का सीधा संबंध आपका
1: हेल्थ से
2: है, स्वास्थ्य से है। और वहां पे सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब हमें शुद्ध पानी नहीं मिलता, वाटर कंटेनमेंट के इश्यूज होते हैं। आज बड़े बड़े सोसाइटियों में भी वाटर कंटेनमेंट इश्यूज होते हैं, आए दिन अखबारों के अंदर भी आप पढ़ते रहे होंगे। तो उस चीजों को समाधान करने के लिए तो हमने आयोटा वाटर लेकर आया, जिसमें एक विज्ञान का भी योगदान है, जिस योगदान का नाम है नैनो बबल टेक्नोलॉजी।
1: परफेक्ट, ये जो बात है दोस्तों, इस संबंध में हम जरूर जानेंगे एक सोच के बारे में, और जो नैनो बबल टेक्नोलॉजी का आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं, ये क्या है, ये सोच कहाँ से डेवलप हुई, दो बातें, इन बातों को हम जरूर आगे लेकर जाएंगे। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, बहुत ही खूबसूरत गाना। और इस गाने को सुनकर हम लोग बड़े हुए हैं। और ये लाइन है जो कहती है कि जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। हमने ये भी सुना है कि पानी पर भविष्य में युद्ध होगा। युद्ध आज हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान का युद्ध, पाकिस्तान का युद्ध। हम युद्ध अक्सर अपनी गली मोहल्ले में देखते हैं कि पानी की कमी है जिसकी वजह से लोगों में झगड़े हो जाते हैं। अब बात आती है शुद्धता की। जब शुद्धता का जिक्र हो रहा है तो जिक्र इस समय स्टूडियो में हो रहा है अजीत कुमार सिंह जी, जो कि आयोटा वाटर से जुड़े हुए हैं। जिक्र कर रहे हैं एक सोच का, जिक्र कर रहे हैं एक शुद्धता का। तो सर ब्रेक के इस पार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गगन जी।
0: सर सोच के बारे में मुझे बताइएगा, और साथ ही साथ जो आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा। ये जो नई टेक्नोलॉजी है नैनो बबल टेक्नोलॉजी, ये क्या है, किस सोच के साथ आप डेवलप हो रहे हैं, किस सोच के साथ आप मार्केट में उतर रहे हैं, ये सोच कहाँ से आई?
1: हमने इस तकनीक में ये रखा है कि पानी का हर बूंद ताकतवर बने
0: जी।
1: उस बूंद को ताकतवर बनाने के लिए हमने नैनो बबल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो आपके शरीर में एडवांस हाइड्रेशन को देता है, आपके एक नेक्स्ट लेवल जनरेशन को जो हाइड्रेशन की जरूरत है, जो एनर्जी की लेवल की जरूरत है। जैसा कि हम जानते हैं 60% आपका शरीर पानी से बना हुआ है, उस पानी की आपूर्ति के लिए ये बहुत ही उत्तम समाधान है आपके आज के दौर में। और हमने ये तकरीबन 2023 से ये सोच स्टार्ट हुई, 2025 में हमने इसको बाजार में उतारा है। और अभी हम दिल्ली NCR में इस चीज को सर्व कर रहे हैं, चंडीगढ़ ट्राइसिटी वगैरह में सर्व कर रहे हैं, ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी में सर्व कर रहे हैं, ताकि हमारे लास्ट माइल तक जाए ये हमारा पानी। और ये तकनीक ऐसा तकनीक है जो हमारे जो त्वचा पे छिद्र है उससे भी 200 times छोटा होता है ये तकनीक। इसके एक बूंद के अंदर अनगिनत जो है बबल्स, जो नैनो बबल टेक्नोलॉजी का ताकत है, वो एक बूंद के अंदर मौजूद है, जो आपको ताकतवर बनाता है। आप अगर इसको एक महीने तक यूज करेंगे तो आपको अपने शरीर के अंदर अंतर मालूम पड़ेगा कि क्या ये टेक्निक है, कैसा है, क्या है आयोटा वाटर। तो ये टेक्नोलॉजी एक हमारे तरह से एक समझिए कि एक बहुत बड़ा पानी के अंदर आंदोलन है अपने आप में। और ये एक पैटेंट टेक्नोलॉजी है भारत का, जिसका पहला ऐसा प्रोडक्ट जिसके भारत के माध्यम से विश्व को सर्व करने वाले हैं। तो वी सपोज टू सर्व द वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब। सो दिस इज आवर द इनोवेशन। आयोटा इज ऑल अबाउट इनोवेशन। नाम भी वैसे ही रखा, आई स्टैंड फॉर द इनोवेशन, ओ फॉर ऑक्सीजन, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ए फॉर ऑल।
0: माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप तो मन की बातों को पढ़ लेते हैं, आपने मेरी मन की बात छीन ली मुझसे। और यही मैं जानना चाह रहा था, मेरे श्रोता जानना चाह रहे थे कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत लकी है आयोटा टीम, क्योंकि आप जैसे दिग्गज उनके पास है।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: चलिए सिलसिला जो बातों का वो लगातार जारी है, सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। मैं हूँ गगन आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं स्टूडियो में, जल की बातें हो रही है। निश्चित तौर पर जल है तो कल है, क्योंकि अगर शुद्ध पानी आप पियेंगे तो कल को आप देख पाएंगे। और शुद्धता का जब जिक्र हो रहा है तो जिक्र हो रहा है स्टूडियो में आयोटा वाटर का। ये तो विज्ञापन हो गया सर, क्या बात है। चलिए हम भी कम नहीं है। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। प्रोग्राम का नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें मेरे यानी गगन के साथ। जो विषय है वो विषय है जल। जल के बारे में बातें हो रही है और एक ब्रांड उसके बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है आयोटा वाटर। जल का जब जिक्र होता है तो जिक्र होता है शुद्धता का। अगर आप शुद्ध पानी पी रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने शरीर का ख्याल रख पा रहे हैं। शुद्धता नहीं है तो निश्चित तौर पर सच बात तो यह है कि दिक्कतें परेशानियां आज नहीं तो कल आपके सामने आएंगी ही आएंगी। एक एक्सपर्ट के तौर पर एक नुमाइंदगी कर रहे हैं आयोटा वाटर की, हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में है अजीत कुमार सिंह जी। तो अजीत जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गगन जी।
0: एक सोच के साथ जब इंसान बढ़ता है आगे चलता है, हम जानते हैं चैलेंजेस जिनको हम कहते हैं कि चुनौतियां आती हैं
1: जी,
0: तो जाहिर सी बात है कि वो चुनौतियां आई होंगी, कुछ चुनौतियां आज हैं और उन चुनौतियों को पार करके मैं समझ पा रहा हूं कि कई सारे आउटलेट आज आपके दिल्ली NCR में हैं और उस सोच के साथ आप आगे भी बढ़ेंगे, तो उस स्ट्रेटजी के बारे में बताइए प्लीज।
1: देखिए प्रतिस्पर्धा तो काफी स्वाभाविक होता है, किसी भी चीज को प्रोडक्ट को आप बनाते हैं, कोई उत्पाद जो होता है तो उसको वो साकार करने के लिए हमारे जैसे जो विशेषज्ञ होते हैं वो एक प्लानिंग हम बनाते हैं, एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं बाजार के लिए। तो हमारे पास जो आज के टाइम में जो हमारी टीम है वो ये कोई मुझे कहने में संकोच नहीं कि भारत की सबसे अच्छी टीम हमारे पास, जो हमारे सारे सेल्स की टीम है, हमारे पास जो एक्सपर्टीज है, जो हमारे ऑपरेशन टीम है, जो हमने प्लांट ऑपरेशन जो कर रहे हैं तो वो सारे हमारे उच्च कोटि के सारे स्तर हैं। तो हमने स्टैंडर्ड का काफ़ी ध्यान रखा है कि जो हमारा स्टैंडर्ड हो वो विश्व स्तरीय हो, और हमारे प्रतिस्पर्धा इसलिए हमारा ज़्यादा मायने नहीं रखता है क्योंकि हम एक यूनिक प्रोडक्ट हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है आयोटा वाटर की। ये हमारे जो फाउंडर्स हैं मिस्टर अनंत कपूर और हमारे जो MD हैं मिस्टर अमित कपूर, तो ये हमारा पेटेंट है। आगे आने वाले वर्षों में हम पूरे भारत के अंदर को सर्व करने वाले हैं, उसके बाद हमारा प्लान जो है विश्व स्तरीय पर जाने का है। तो ये जो है हम चाह रहे हैं कि पूरा जो दुनिया है इसका संपूर्ण लाभ ले और इस विज्ञान का फायदा उठाए, इस विज्ञान को अपने जीवन में तर्कसंगत करें। और जिस तरह से हमारा आने वाला वक्त जो समय जो है हमारे पास बहुत कम बचता है, जब हम काम करते हैं 24 घंटे जब हम काम करते हैं हमारे पास थकान होता है, आज जो स्ट्रेस लेवल हाई है जिस तरह से लोगों का जनमानस का और एक थका देने वाली जिंदगी है, तो उसमें एक आयोटा वाटर एक बहुत अच्छा आपके लिए समाधान बन सकता है, जो आपको एक ताकत देगा, जो आपको डिटॉक्स करेगा, जो आपको हाइड्रेट करेगा, जो आपको नेक्स्ट लेवल हाइड्रेशन पर ले जाएगा, तो आप तुरंत जो है अपने आपको रिजुवेनेट महसूस कर सकते हैं।
0: वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और एक एक्सपर्ट के तौर पर ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ नुमाइंदगी कर रहे हैं आयोटा वाटर की। अजय कितनी अच्छी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो तुम, मजा आ गया। मतलब आप अजीत साहब हमारे एक बहादुर के बारे में बोल दो कि मिलके खुशी हुई, बड़ा अच्छा है गगन के साथ रहता है ये बहादुर। कैसा लग रहा है आपको मिलके मुझे?
1: बहुत मजा आ रहा है।
0: अरे बहुत मजा आ रहा है और भी मजा आएगा। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे स्पोर्ट्स में भी ये बहुत अच्छा काम करने वाले हैं और दिल्ली के अंदर सरकार के साथ भी इन्होंने हैंडशेक किया, डिटेल में जानेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से पुनः आप सबका इस्तकबाल में हूँ गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। गर्मी जब पड़ती है तो जाहिर सी बात है कि गर्मी में हम सब पानी की ओर भागते हैं। शुद्धता का आप लोग ख्याल रखें, पानी भरपूर पीजिए, पानी नहीं पीते तो तमाम दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं। जब आप खेलते हैं भागदौड़ करते हैं तो उस समय भी पानी की आवश्यकता होती है। आपसे अजीत जी हाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजीत कुमार सिंह जी जो कि आयोटा वाटर से हैं और बहुत सारी डिटेल में हमें बातें बता रहे हैं। तो सर स्पोर्ट्स सेक्टर में जो क्वालिटीज हैं आपके आयोटा वाटर की, जब मेरी आपसे ऑफ एयर सिटिंग हो रही थी तो आप बहुत सारी क्वालिटीज गिना रहे थे, कुछ अगर दो चार क्वालिटीज उसके बारे में आप हमें बताएं एक बात। दूसरी बात, आपका जो प्रयास है वो रंग ला रहा है, हमारी यमुना हम देख रहे हैं कि साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। भारत में वर्तमान समय में जो सरकार है वो भी प्रयासरत है और वो बातें भी आप हमें बता रहे थे कि इस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो आपकी कंपनी है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप एक करार के साथ सरकार के साथ मिलकर आप आगे बढ़े। दो बातें क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट किया जो हमारी पेरेंट कंपनी है निको बबल्स, उसके थ्रू हम B2B करते हैं जिसमें हम कई सारी सरकारी परियोजनाओं में जो कई सारे जो सरकार गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है उसमें हम काफी काम करते हैं उस चीजों को लेके। तो उसमें भी हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि जो हमें प्रोजेक्ट सरकार दे रही है भारत सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा जो भी हमें प्रोजेक्ट मिल रहा है उस पर हम काम कर रहे हैं। जो भी सेवा करने का हमें अवसर प्रदान किया जाएगा समाज कल्याण हेतु उस पर हम कार्यरत रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे, तो ये हमारा हमेशा रहेगा। आयोटा वाटर एक बॉटल पैक हमने बनाया, उस विज्ञान को हमने बॉटल में लाने के लिए सोचा ताकि हर चीज जो है एक व्यक्ति को मिल सके, उसका फायदा व्यक्ति को मिल सके, उसका इस्तेमाल कर सके। ये औद्योगिक क्षेत्र तक पहले निहित था जिसको हम अब आगे जाके एक व्यापार और बाजार के थ्रू एक लास्ट माइल ग्राहक होते हैं उस तक पहुंचाएं। हाँ। तो ये हम लोगों का लक्ष्य है, ये हम लोगों का लक्ष्य है और हम धीरे धीरे इसको प्रचार प्रसार के माध्यम से, उपलब्धता के माध्यम से हर जगह हम इसको उपलब्ध करवाएंगे।
0: ठीक है,
1: अब हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर अरुणाचल तक।
0: चलिए आप भारत से बाहर निकलें, क्योंकि निश्चित तौर पर जब भारत से बाहर निकलेंगे अच्छा करेंगे तो हमारे भारत की एक पहचान होगी आयोटा वाटर के रूप में, क्योंकि हम यहाँ कुछ अच्छा सर्व कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के बारे में प्लीज आप मुझे बताइए कि जो
2: अरे आपको बादाम खाने की जरूरत भूल गए, दो सवाल मैंने करे थे, एक का जवाब दिया एक का जवाब नहीं दे पाए। देखा मैंने आयोटा वाटर पिया था इसलिए मेरी याददाश्त मजबूत है। तो खैर ये चुप रहिए बहादुर, आप बताइए।
1: बिल्कुल आपका जैसा निर्देश है बादाम जरूर खाऊंगा।
0: अब तो आप दिल पर लगे।
1: तो स्पोर्ट्स ऐसा रहा कि जब मैं भी खुद बचपन से देखता था अंक तालिका जो भी होते थे, जो बड़े खेल प्रतिस्पर्धा होते थे
0: जी जी,
1: उसके अंदर हम देखते थे अंक तालिका, भारत कहीं से नामो निशान भी नहीं होता, कहीं कहीं कुछ एक चंद स्वर्ण पदक रजत पदक टाइप की चीजें कुछ होती थी। तो स्पोर्ट्स का शुरू से बहुत सारा चुनौतियां रही है स्पोर्ट्स सेक्टर में, और स्पोर्ट्स में जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट्स होता है या पानी का जो आवश्यकताएं होती है जो आए, तो प्लेन वाटर कभी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वो
0: नहीं
1: लाभकारी नहीं होता, क्योंकि एक काफी लंबे रेस के बाद आपको पानी होता है जिसके पीछे विज्ञान होता है, आपको कैसे पानी लेना है, कब पानी लेना है, क्या डाइट फॉलो करना, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसी भी स्पोर्ट्स में खासकर जो भागने दौड़ने वाले खेल हैं लाइक मैराथन वगैरह हैं, जो अदर रेसेस हैं, उसमें खिलाड़ी को इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और बॉडी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा योगदान होता है। ठीक है, आज सारा जो प्रदूषण है, ये सारी चीजें हैं, सब तरफ ऑक्सीजन ही चला रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है। और ये हमारे पानी में 36% ऑक्सीजन है जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है बाकी पानी के रिस्पेक्ट में,
0: ये क्वालिटीज हैं आयोटा वाटर की, फुलफिल करते हैं।
1: जी जी जी,
0: वेरी गुड वेरी गुड।
1: तो ये आपको एक आप सम्मान के आप ये चल सकते हैं कि आपको एक अल्टरनेटिव दे रहा है, एक आपको विकल्प दे रहा है कि जिसके अंदर आप ऑक्सीजन तुरंत अपने शरीर के अंदर ले सकते हैं और अपने आप को पुनर्संचारित कर सकते हैं।
0: वेरी गुड, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे शब्द का आपने यहाँ इस्तेमाल किया, और तुरंत आपको एनर्जी मिल जाती है, वो एनर्जी जो एनर्जी ड्रिंक आप आजकल टीवी विज्ञापन में देख रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। ये जो एनर्जी ड्रिंक है यानी कि ये जो एनर्जी का पेय जल है, पेय पदार्थ है आयोटा वाटर, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका जो लाभ है आपको मिलेगा जरूर। एक खास सवाल मैं आपसे जरूर जानूंगा क्योंकि क्षेत्र बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, मैंने सुना कि अभी आप एक यूथ को भी कनेक्ट करने जा रहे हैं लोगों को मौका भी दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक सवाल और इसका जवाब आपसे हम जरूर जानेंगे। आखिर में एक छोटा सा संदेश भी लेंगे कि क्या आप मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी के लिए। सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। मेरे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए आयोटो वाटर के एक्सपर्ट मिस्टर अजीत कुमार सिंह जी। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और पानी पानी पानी पानी पानी भरपूर पीजिए। पानी का इस्तेमाल यानी कि कहते ना कि बारिश का जो पानी है उसको भी आप संचरित करिए, इकट्ठा करिए और फिर उसको रिसाइकिल करके आप कहीं ना कहीं रीयूज कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैं हूं गगन आपके साथ और आयोटो वाटर से एक एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए अजीत कुमार सिंह जी, जो कि कई सारे अनुभव के साथ इस कंपनी में जुड़े हैं। और वो अनुभव कहां आ रहा है हम देख रहे हैं, धरातल तक वो जा रहे हैं, लोगों की सोच को जान रहे हैं, अपनी सोच को उनसे वाबस्ता करा रहे हैं। और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर में बहुत कम समय में बहुत सारे आउटलेट इन्होंने यहाँ स्थापित किए और एक सोच के साथ अभी कह रहे थे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम आगे जाएंगे और हिंदुस्तान से भी आगे जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं सर आपके साथ हैं। आखिर में एक छोटा सा संदेश और एक बात, आप चाह रहे हैं कि यूथ को आप जोड़ें, चाहे वो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हों, इंटर्न के तौर पर या किसी भी क्षेत्र से कोई आए, तो वो क्या जरिया हो सकता है कि लोग आपसे कैसे कनेक्ट हों? क्या एक प्लेटफॉर्म होगा आपका, कोई कॉन्टेक्ट नंबर होगा या ईमेल आईडी होगी, वेबसाइट वगैरह वगैरह, जो आप कहना चाहें?
1: आयोटा वाटर का हमारा अपना वेबसाइट है, उसके थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं iotawater.in पे। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स है, सोशल मीडिया हैंडल्स है इसी नाम से, प्लस मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है जिस पे आप एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं मेरे से। और वो एक आज जो यंग प्रोफेशनल्स का जो माध्यम है, जो कि हमारे पास जो भारत की जनसंख्या है सबसे युवा देश है विश्व के अंदर, और युवा होने से ये सबसे बड़ी फायदा होता है कि आज जैसे मैं 17 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, तो जो एक नई पीढ़ी आती है हमारे पास, वो एक नई सोच लेके आती है। सोच में उनके भी इनोवेशंस होते हैं, उनके एक्सपीरियंस होते हैं। जो 18 से 35 वाला आज वर्ग है हमारे पास, जो सबसे ज़्यादा भारत में है, तो उनकी ज़रूरतें अलग हैं। अल्फा बीटा और गामा जनरेशन जो सारे अपकमिंग जनरेशन है, जैन जी हैं पीछे अपने, तो सारे उनकी एक सोच अलग है। आज रियल लाइफ है, रियल लाइफ है, सारा डिफ्रेंसिएशन है। सोशल मीडिया काफ़ी एक बहुत बड़ा टूल बन चुका है मार्केटिंग का, तो इन सब टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है, अपने जो प्रोडक्ट का जो रीच है, अपने प्रोडक्ट के जो इन्फॉर्मेशन है, अपने प्रोडक्ट के बारे में जो जानकारियां देनी है, या जो आपका एक कम्युनिकेशन का माध्यम बन सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, तो इस इन सब चीज़ों के अंदर जो है हमारे जो युवा पीढ़ी काफ़ी संलग्न है और इसका फायदा हमेशा होता है। और मैं इन चीज़ों को हमेशा टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो आपका चलता ही रहता है, जिसको ATL और BTL हम बोलते हैं, और डिजिटल, लेकिन साथ में जब सोशल मीडिया टूल इसमें मिल जाता है तो सोने पर सुहागा हो जाता है।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत।
1: तो माध्यम हमेशा अच्छा एक होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जब बहुत अच्छे उत्पाद को बनाते हैं लेकिन हम उसे पहुंचा नहीं पाते जनता तक, तो उसका बस ये होता है कि उसको मार्केटिंग करने का तरीका जो होता है वो हम चुनते हैं, कैसे चुनना है, कि हमें अमेजोन पे जाने की जरूरत है या हमें जनरल ट्रेड्स में जाने की जरूरत है,
0: सुनो शारदा पर आने की जरूरत है, ये भी आप मेंशन करें,
1: और हमें सुनो शारदा पर आने की जरूरत है गगन जी के साथ।
0: अरे सर शुक्रिया, थैंक यू। देखिए हाँ, इसको कहते हैं अपने मुंह क्या कहते, मिठू बनना मियाँ मिठू बनना। मैं पूछ रहा था कि कहीं तुम भूल तो नहीं गए। चलिए सर, हंसना मुस्कुराना बहुत जरूरी है, आप यही मुस्कुराते रहे, क्योंकि ये मुस्कुराहट आपकी लोगों से कनेक्ट करती है। मेरी तरफ से आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अजीत कुमार सिंह जी का दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमें समय दिया, आयोटा वाटर के बारे में डिटेल में बातें बताई, और एक जिंदगी का सार यही है कि जल को व्यर्थ ना बहाएं,
1: बिल्कुल
0: है ना। ये मैं एक सार आपके साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पानी की टंकी हम लगा लेते हैं, 500 रुपए का अलार्म लगाना भूल जाते हैं, जो कि आपको एक इंडिकेट करता है, सूचित करता है कि आपकी टंकी भर चुकी है, कृपया उसको बंद कर दें। तो ये बेसिक चीजें, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज न करें, पानी को व्यर्थ ना बहाएं, पानी भरपूर पीजिए, जो कि आपकी सेहत के लिए मुफीद है, लाभकारी है, जल है तो कल है। तो अजीत कुमार सिंह जी, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन मेरे यानी गगन के साथ, और गगन को दीजिए अनुमति। नमस्कार, टाटा बाय, टेक केयर, थैंक यू।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं
1: समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और type 2 diabetes के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
2: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-66-66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी,
0: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रही नी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
2: और आस पास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कोनो भी चीज में पानी जमा

0: अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़ जा मच्छर बन पर भारी।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अभियान।
1: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
2: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: नमस्ते जी, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं, स्मार्ट के साथ मिलकर हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं और आप लंबे समय से उस कार्यक्रम को सुन भी रहे हैं, जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। अब सेहत सही, आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य ठीक हो तो उसके लिए आपको हम बताते रहते हैं कि भाई आपको बहुत सारी जो बीमारियां हैं, मच्छरों से हो रही हैं या अन्य किसी कारण से होती हैं, उनसे आपको कैसे बच के रहना है। साथ ही साथ आपका जो खान पान है वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आपको बताते रहे हैं और बताते रहेंगे। लेकिन आज एक खास दिन है और आप सबको भी पता होगा कि आज 21 जून है और आज के दिन हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और योग के बारे में हम बात कहें तो ऐसा जो योग के जानकार हैं उनका ये कहना है कि जो लोग योग करते हैं, साथ ही साथ अच्छा खान पान उनका रहता है, तो वो अपनी बीमारियों को भी जल्दी ठीक कर लेते हैं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। लेकिन योग क्या है, कैसे इसकी शुरुआत करें, कैसे ये हमको फ़ायदा पहुंचा सकता है और हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए योग के साथ साथ, इन सब बातों की विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरेंद्र गौतम जी। आप फाउंडर हैं पंचोपचार वेलनेस रिजोर्ट कांडाताल उत्तराखंड के। तो सबसे पहले डॉक्टर हरेंद्र गौतम जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया।
0: तो डॉक्टर गौतम जी, जैसा कि हमने अभी अपने जो लिसनर हैं उनको बताया और आपको भी पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है
1: जी,
0: तो क्या कहना चाहेंगे आप?
1: सबसे पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 21 जून को उन्होंने एक पर्व के रूप में इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में मनाने के लिए शुरुआत कराई और एक इनिशिएटिव लिया। और बात करते हैं हम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के, और योग क्योंकि किसी धर्म से नहीं इसको जोड़ा गया है, किसी जाति से नहीं जोड़ा गया है, किसी चीज से नहीं जोड़ा गया है, तो योग जो है हम सब के लिए है। योग को अगर हम सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करें और इसके महत्व को समझने की कोशिश करें तो योग हमें अपने आप से जोड़ने के लिए प्रेरित करता है, अपने आप को जानने की प्रेरणा देता है। जब हम सही दिशा में योग कर रहे होते हैं तो हम स्वयं के साथ प्रसन्न रहना चालू कर देते हैं, एक हम जॉयफुल नेचर में चले जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति इस नेचर में जाता है तो ऑटोमेटिकली जो हम बात करें कि समाज में कई सारी विकृतियां हैं, कई सारे परेशानियां चल रही हैं, वो धीरे धीरे घटना चालू हो जाती हैं। तो योग पूरे पृथ्वी पर लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य, जिसकी बात करें हम अगर मेंटल हेल्थ की, उसमें हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। आज लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, और हमें इन दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो योग हमें एक बैलेंस देता है और हम अपने जीवन को भी बैलेंस करके खुशियों के साथ, स्वस्थ एक जीवन के साथ आराम से जी सकते हैं।
0: बिल्कुल, आपने योग के बारे में कहा। देखिए, आम जन की यही सोच रहती है कि कोई भी काम करें तो उससे उनको फायदा क्या मिलने वाला है, तो यही सोच योग के साथ भी है कि चलिए हम योग करते हैं, शुरुआत कर दें तो क्या क्या उनको फायदे मिल सकते हैं।
1: सबसे बड़ा फायदा उनको जो होने वाला है, उनका पैसा बचने वाला है
0: जी। वो कैसे?
1: हर इंसान पैसा कमाता है इस सोच के साथ कि वो एक अच्छा जीवन जिएगा, उसमें अपने घर की सारी सुख सुविधाओं को जोड़ेगा, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देगा, घर की सारी जरूरतों को पूरा करेगा। अनजाने में उस लग्जरी के ट्रैप में जब वो चला जाता है, उस पैसे को जब वो अपनी लग्जरी के साथ जोड़ता है, वहीं समस्या चालू हो जाती है। तो जब हम ये समझ जाएंगे इस पैसे को हमें कैसे सदुपयोग करना है, तो हम बहुत ज़्यादा सेविंग कर पाएंगे। सेविंग का मतलब आप समझ रहे हैं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बीमार होंगे तो वो पैसा दवाइयों में जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: और खाली आप अपने पैसे से दवाइयां जो खा रहे हैं डॉक्टर्स के पास या हॉस्पिटल्स में जो आप जा रहे हैं, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि आप ठीक नहीं हो रहे हैं। आप सिर्फ अपना टेम्परेरी इलाज करा रहे हैं और जैसे ही आपको थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, आप थोड़े दिन बाद फिर से उसी पोजीशन में चले जाएंगे। और बार बार ये लाइफ में रिपीटेशन चलता रहता है। अगर एक आदमी अपने जीवन में हर साल बीमार पड़ रहा है तो लाखों रुपए उसके खर्च हो रहे हैं, और जब वो रेगुलर बीमार पड़ रहा है तो किसी ना किसी दिन वो एक गंभीर बीमारी के का शिकार भी हो जाएगा। तो हमें ये समझना है कि योग से हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, हमें उसको किस तरीके से अपने जीवन में उतारना चाहिए, कैसे हम उसको जोड़ सकते हैं। तो इसका सिंपल तरीका मैं यही बोलूंगा कि आप आप किसी अच्छे योग शिक्षक को अपने आसपास ढूंढें, उनसे आप गाइडेंस लें। ऑनलाइन भी हमारे सेवाएं चलती रहती हैं, क्लासेस चलती रहती हैं, कंसल्टेशन भी होता है। हम उसके माध्यम से भी लोगों को योग की जानकारी देते हैं और उनको किस तरीके से लाइफ में योग को जोड़ना चाहिए वो भी बताते हैं, क्योंकि हर इंसान की अलग जरूरत है। एक इंसान पतले होने के लिए योग कर रहा है, एक इंसान बीमारियों से बचने के लिए योग कर रहा है, किसी इंसान को कोई हेल्थ इश्यू हो गया है उसको उसे रिकवर करने के लिए योग कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग जरूरतें हैं, कोई मेंटल पीस के लिए योग करना चाहता है। लेकिन अगर हम सिंपल तरीके से समझें कि योग जब आप करते हो तो आप हर तरीके से ठीक होते हो, हर बीमारी वो रिकवर करता है। मतलब एक आदमी काम एक ही कर रहा है, लाभ अनेक मिलना चालू हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो हमारे कार्यक्रम का भी नाम यही है, सेहत सही लाभ कही। डॉक्टर साहब, आपसे बातों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं।
1: जी।

0: नमस्ते जी, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। अपने सुनने वालों को एक बार फिर से याद दिला दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और खासकर योग पर हम बात कर रहे हैं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरेंद्र गौतम जी। आप फाउंडर हैं पंचोपचार वेलनेस रिजोर्ट कांडाताल उत्तराखंड के। डॉक्टर साहब, आपने लाभों की बात करी कि योग करने से कितने फायदे हैं, तो अपने जो श्रोता हैं, हमारे जो लिसनर हैं, उनको एक बार फिर से याद दिला दें कि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि जब कोई इंसान योग करता है तो किस तरह से वो अपने पैसे बचा सकता है। और पैसे तभी बचते हैं कि जब आप बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हैं तो घर में डॉक्टर साहब एक ही नहीं, कभी कभी तो पूरा घर ही बीमार हो जाता है। और बहुत से घर हमारे भारतीय समाज में ऐसे हैं कि जहां पर कमाने वाला एक है लेकिन सबका खर्च वही चला रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे में बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है, बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं कि अगर जो ही हमारे घर का मुखिया या जो भी करता धरता है उनको कुछ हो जाता है, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो एक तो बीमारी होगी, उसको बीमारी को कवर करने में पैसा की जरूरत होती है, और दूसरा जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है वो एक अलग से होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब ने हमें समझाई है कि योग के जरिए हम कैसे अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। जब हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम डॉक्टर साहब के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें कोई बीमारी नहीं होगी, और जो बीमारी पर खर्च होने वाला जो पैसा है वो बचेगा और हम उसका कहीं पर भी सदुपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज हमारे और आपके बीच जो चर्चा चल रही है और हमें जो सुनने वाले हैं, हो सकता है वो सुन के आज से ही योग शुरू करना चाहें, तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं योग की, कैसे अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं?
1: जी, मैं जरूर ये दिशा देने की कोशिश करूंगा लिसनर्स को, क्योंकि आप ये मान लीजिए कि अच्छी शुरुआत कभी भी की जा सकती है, कभी भी किसी चीज के लिए हम लेट नहीं है, जब हम जाग जाएं तभी सवेरा है। बचपन से इस कहावत को सुनते आ रहे हैं। आपने पहले कभी योग नहीं किया,
0: हाँ,
1: कोई फर्क नहीं पड़ता। और योग जो है कितना मतलब सरल और सुंदर एक अभ्यास है और एक ऐसी प्रैक्टिस में लेके जाता है जहां बिल्कुल सामान्य प्रैक्टिस से शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए किसी आपको बहुत एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है कि पहले मैं ये सीख लूं तब मैं योग कर पाऊं। कई सारे कंफ्यूजन लोगों को रहते हैं। आप सिंपल आप सांसों के माध्यम से योग चालू कीजिए। आप डेली 15 से 20 मिनट प्राणायाम चालू कर दीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम चालू कर दीजिए। आपको अनुलोम विलोम नहीं आता, ये क्या होता है? तो आप सिंपल आप बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और लंबी गहरी सांस भरना चालू कर दीजिए। यही आपके बॉडी में इतना चमत्कारी बदलाव लेकर आएगा। और इसका बदलाव आपको कंसिस्टेंसी बस मेंटेन करनी है। आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन इसको लगातार करें, आप फील करेंगे आपकी एनर्जी ठीक होने लगी, आपका जो है एक पॉजिटिव नजरिया आपको मिलने लगा, आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो योग को करने के लिए आप, मैं आपको बताया कि आप अगर अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, योग शिक्षक से जुड़िए किसी। आजकल हर जगह बहुत आसानी से योग शिक्षक अवेलेबल हैं। ऑनलाइन का भी टाइम चल रहा है, आप ऑनलाइन भी कनेक्ट हो सकते हैं जिसमें बहुत कम खर्चा होता है। तो और आसपास भी कई सारे योग सेंटर हैं जहां पे जाकर भी आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हर इंसान की कुछ वीकनेस होती है। और जनरली एक वीकनेस तो मैंने सबके साथ सुनी है कि हम योग तो स्टार्ट करते हैं बट कर नहीं पाते, हम खुद से नहीं कर पाते। तो हम कह रहे हैं कि आप खुद से मत करो, आप किसी संस्था को ज्वाइन करो, वहां आपको थोड़ा सा एक सर्कल मिलेगा, एक सोसाइटी के लोग मिलेंगे, तो आपका मन भी लगेगा। और जब एक दूसरे से हमें मोटिवेशन भी मिलता है, एक सोशल दायरा भी बढ़ता है हमारा, तो और बहुत कुछ चीजें एक्सचेंज होती हैं जब हम किसी जगह जाते हैं। तो आपका एक तो एक सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, आपको वहां से अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी स्वास्थ्य के बारे में, योग के बारे में, और आप लॉन्ग टाइम तक कंसिस्टेंटली उस प्रैक्टिस में जा सकते हैं जिससे कि आपको रियल फायदा होने वाला है। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सुनते ही खुद से चालू कर देते हैं, 2-3 दिन करते हैं और फिर चीजें छूट जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप किसी को अपना हाथ पकड़ाएं। जीवन में मेंटोरशिप बहुत जरूरी है और हर एक छोटी से छोटी चीज का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में। बड़ी चीजों का महत्व कम है, छोटी चीजों का महत्व ज्यादा है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम करते हैं चलो कल से कर लेंगे, वो कल कभी नहीं आता, आपको आज से ही करना है। आप वॉक कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए और थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, जितना समय आपके पास है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में जाएंगे आपको अंदर से भीतर से आनंद आने लगेगा, तो आपका प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, ये उसकी पहचान है योग करने के बाद। लोग अपने काम में परेशान रहते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, कोई उनसे बोलता है तो गुस्सा आता है। लोग खाना खा रहे हैं उनको एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है। लोग घर पे आके बात कर रहे हैं तो किसी से बच्चे से फैमिली में बात करने का मन नहीं कर रहा है। ये हमारे सिम्टम्स हैं कि हम बीमार हैं, हमें एक अच्छी हेल्थ की जरूरत है। लेकिन क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है हमारी, हम उसमें ट्रैप हो गए, मतलब हम हर समय कंप्लेंट्स करते रहते हैं और थके रहते हैं, हम अपनी चीज़ों से नहीं भाग सकते, उसे स्वीकारना पड़ेगा। तो योग एक ऐसा माध्यम है, मैंने शुरुआत में ही बोला कि जो कि हमें स्वयं से जोड़ता है। जब हम स्वयं से जुड़ते हैं तो पूरे परिवार के साथ जुड़ना चालू कर देते हैं। तो स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, योग कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, किसी के साथ जुड़कर कीजिए, तो आपको बहुत आनंद आने वाला है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि शुरुआत आप अल्प समय से कीजिएगा, फिर उसको आप बढ़ाते रहिए। डॉक्टर साहब, एक और बात यहाँ पे निकल के आती है कि जैसे आपने तो बता ही दिया किस तरह से योग की शुरुआत कर सकते हैं, आपके आसपास कोई ट्रेनर हैं या योग गुरु हैं उनके साथ में जा करके शुरुआत कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे निकल के आती है खान पान की, जो लोग योग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो अनुकूल समय कौन सा होता है योग करने के लिए, और साथ ही साथ खान पान है वो कैसा होना चाहिए?
1: बिल्कुल, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पे आपने ये सवाल जो मुझसे पूछा है। भोजन का बहुत बड़ा रोल है, हम जैसा खाते हैं हम वैसे ही बनते हैं, है ना, जैसा हम अन्न खाएंगे वैसे ही हम बनेंगे, वही हमारी सोच से भी जुड़ा हुआ है, वही हमारे शरीर और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। तो मैं सिंपल जो बात बोलना चाहूंगा भोजन को लेकर, हमें अपनी लाइफ में कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम स्वीकारते नहीं हैं और हम एक ऐसी पोजीशन में मनो इस दशा में रहते हैं जहां पर लाइफ आगे बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, लेकिन हम चीजों के साथ वहीं अटके हुए हैं कि पहले तो मैं ऐसे खा लेता था, पहले तो मैं ये करता था, मुझे कुछ नहीं होता था।
0: बिल्कुल,
1: अरे भाई वो 22 साल 25 साल 30 साल की उम्र में हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर के जो मशीनरी है, ऑर्गन्स है, उनकी फंक्शनिंग अलग थी, उनकी पावर अलग थी। इसको हम लॉजिकली ऐसे समझ लें जैसे कि हमने शोरूम से गाड़ी निकाली है, हम उस गाड़ी का कितना ध्यान रखते हैं, सर्विस हमें 10,000 रुपये करानी है हम पहुंच जाते हैं लेकर, इंश्योरेंस हमें कराना है हम पहुंच जाते हैं लेकर, जिस शरीर को ईश्वर ने दिया है, जिसको हम भोग रहे हैं, उस पेट के अंदर हम क्या क्या नहीं डाल रहे, क्या हम उसकी कभी सर्विस कराते हैं? नहीं कराते, हम सिर्फ डाले जा रहे हैं डाले जा रहे हैं। निकलने का रास्ता जो है वो हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि हम जो खा रहे हैं उसको कितना पार्ट उसका बॉडी में लग रहा है और कितना निकल रहा है, तो वो धीरे धीरे धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है और हम बीमारियों में घिर जाते हैं। तो भोजन में जब हम एक 30 स्लैब में हैं तो हमारा भोजन थोड़ा सा, उसमें हम 3 टाइम का भोजन भी कर लेते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि हम फिजिकली बहुत एक्टिव हैं। जब हम 40s में जा रहे हैं तो हमारी मेटाबॉलिज्म चेंज हो रही है, तो मैं बोलूंगा कि आप भोजन को 2 टाइम पर लेकर आओ, आपका ब्रेकफास्ट और आप लंच करो, डिनर आपका 7 बजे से बाद नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 8, इससे पहले आपको ले लेना है। क्योंकि ये बहुत ही कैटेगराइज्ड विषय है इसलिए मैं इस पे मतलब ये सामान्य बात सबके लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज ये हर इंसान के साथ अलग अलग एप्लीकेबल होती है, हर इंसान के साथ उसको अलग तरीके से कस्टमाइज करके बताना होता है तभी उसको लाभ मिलता है। लेकिन जनरल वे में स्वास्थ्य रहने के लिए जो बातें हैं मैं वही बता रहा हूँ। 40s के बाद आप कोशिश करो कि आपका 2 मील ही होनी चाहिए, आप ब्रेकफास्ट लो, ब्रेकफास्ट आपका न्यूट्रिशनल फुल होना चाहिए। हम लोग जो पराठे हैं, ब्रेड है, जो जनरल ये खाते हैं, इससे हमें अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। हमारी बॉडी में जितना हो सकता है हम रॉ फूड खाएं, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सलाद हो गए, ये सब चीजें खाएं। खाना खाने से पहले भी सैलेड जाना चाहिए। हमें ये तय करना है

0: कि आज मेरी फिजिकल रिक्वायरमेंट, फिजिकल एक्टिविटी कितनी हो रही है। मैं पूरे दिन में 2000 कैलोरी खा रहा हूँ, मतलब मैंने 2000 कैलोरी लिया, तो क्या मैं उस कैलोरी को बर्न कर पा रहा हूँ? अगर वो बर्न सिर्फ 1000 हो रही है, 1500 हो रही है, तो जो 500 और 1000 कैलोरी बच रही है और वो डेली बच रही है, तो वो धीरे धीरे स्टोर हो रही है और वही बीमारियां बना रही है। तो मैंने आज जितना कैलोरी लिया, मुझे आज वो उतना बर्न करना है, ये कॉन्सेप्ट को मुझे बहुत आराम से समझना है और क्लियर करना है। इसके लिए कुछ भी कंफ्यूजन है उसको भी दूर कर सकते हैं आप किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से गाइडेंस करके, किसी योग टीचर से गाइडेंस लेकर आप इसके ऊपर चर्चा करके आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि मुझे क्या खाना चाहिए। हम लोग क्या है, पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, हम जिस अपब्रिंगिंग के साथ बड़े हुए हैं हम उसी पैटर्न को जिंदगी भर चलाते हैं। हम बचपन में पराठे खाते थे, हम 40 साल में भी पराठे खा रहे हैं। पराठे खाने में प्रॉब्लम नहीं है, कितना खाना है इसमें प्रॉब्लम है, कब खाना है इसमें प्रॉब्लम है, कैसे खाना है इसमें प्रॉब्लम है। तो कब, कैसे और कितना, ये समझना जरूरी है, अदरवाइज हम उस ट्रैप का पार्ट बनेंगे। और फिर आज आप देख रहे हो कि दुनिया में, हिंदुस्तान में जितने हॉस्पिटल बन रहे हैं वो भी कम है, जितनी फार्मेसी कंपनियां और ये मेडिकल स्टोर हैं वो भी कम है, वहां मेला सा लगा रहता है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जबकि बीमारियों को बहुत ही आराम से समझा जा सकता है और उनको ठीक किया जा सकता है। और आपकी बीमारी आपके किचन में है, इस किचन को समझो और उस किचन को बदलो, नहीं तो आप तैयार रहो, जो हम किसी चीज में बचा रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, वही हमारा रियल जो है ना एक धन है। तो हम पैसे को वहां से बचा सकते हैं बीमारियों में खर्चा करने से, तो अपने किचन को हमें बदलने की जरूरत है, अपने शरीर को समझने की जरूरत है, जो कि योग हमें अच्छे से समझाता है, कब कैसे कितना। 3K को समझना है, 3K को समझना है, आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कब कैसे कितना खाना चाहिए ये जरूर हमारे श्रोता आपकी बात सुनकर समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उसी अनुसार अपना जो जीवन है, जीवन की दिनचर्या है उसको अपनाएंगे। और आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो हमारा स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है, और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है चाहे आपके पास कितना भी धन हो, वो भी आपके लिए सुखदायी नहीं बन सकता।
0: बिल्कुल सही है।
1: अपने सुनने वालों को एक बार फिर से याद दिला दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और खासकर योग पर हम बात कर रहे हैं, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरेंद्र गौतम जी। आप फाउंडर हैं पंचोपचार वेलनेस रिजोर्ट कांडाताल उत्तराखंड के। डॉक्टर साहब, आपसे बातों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं।

0: नमस्ते जी, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरेंद्र गौतम जी। डॉक्टर साहब, बात स्वास्थ्य की चल रही है, बहुत सारी बातें आज आपने हमारे श्रोताओं को बताई हैं और आपने ट्रैप की भी बात की थी। तो आजकल हम देखते हैं आज का जो युवा है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, मोबाइल फोन के आदि हो चुके हैं। रात रात भर जागते हैं, कोई 3 बजे सो रहा है, कोई 1 बजे सो रहा है, फिर सुबह जगते हैं तो जब नींद पूरी नहीं होती है तो चिड़चिड़ापन रहता है और अपने माता पिता के साथ फिर उनका व्यवहार ऐसा हो जाता है। तो जो ये दलदल है मोबाइल फोन का, क्या योग के जरिए उससे छुटकारा पाया जा सकता है?
1: जी बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल पूछा है और ये एक ऐसा विषय है जिसपे मुझे लगता है कि हमें चर्चा करनी चाहिए और ये चर्चाएं मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही इग्नोर्ड वे में ये चीजें चल रही हैं। हमें होश नहीं है, हम बेहोशी में चीजों को देख रहे हैं, लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव है जो हमारी जनरेशन, हमारी अगली पीढ़ी पे जो पड़ रहा है, आने वाली पीढ़ी को जो खराब करेगा, बहुत भयानक तरीके से करेगा। मैं आपसे मतलब शशि कपूर जी ये बोलना चाहूंगा कि आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, बच्चों की कहीं कोई गलती नहीं है। हम बच्चों को डांटते हैं, हम उनको चिल्ला के बोलते हैं जाके अपने रूम में जाओ, पढ़ाई करो, यहाँ मत जाओ, वो मत करो। क्या हमने कभी सोचा है कि ये जो बच्चे हैं इन्होंने जो चीज़ें आज सीख रहे हैं या ये जो एक्ट कर रहे हैं, क्या वो पहले से सीख कर आए थे? बच्चे को अगर आपको बदलना है तो स्वयं को बदलना पड़ेगा। आज सबसे बड़ी समस्या हो गई है पेरेंटिंग में। बच्चा पैदा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा लगता है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमने पूरी कर दी। क्या वो काफी है
0: जी?
1: आप अपने बच्चे को कितना प्रेम करते हैं? बहुत मोह है, बहुत प्यार करते हैं। और फिर वही बच्चा जब आगे चल के बीमार होता है या गलत मार्ग पर चला जाता है तो आप कितना परेशान होते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जो बच्चा जिस राह पे पहुंचा है या बीमार हुआ है या गलत मार्ग पे गया है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आप डॉक्टर्स के पास लेकर जा रहे हैं बच्चों को काउंसलिंग कराने के लिए, क्या आपको लगता है कि बच्चों की काउंसलिंग की जरूरत है? काउंसलिंग तो आपकी जरूरत है। आपको पता ही नहीं है कि माता पिता का सही रोल क्या होना चाहिए, बस एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं कि बच्चा होना चाहिए। अरे भैया, आपने अगर बच्चा अपने मतलब परिवार में आप बच्चे को लेकर आ रहे हैं, जन्म दे रहे हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाओ। बच्चे कभी बोलने से नहीं सुधरते, बच्चे फॉलोअर होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं। वो हमें देख रहे हैं, वो इतना डीपली देख रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। आपको लग रहा है मैं और आप बात कर रहे हैं लेकिन बच्चा खेल रहा है, वो आपके उसके कानों में सारी बातें जा रही हैं। कल वो हो सकता है आपको वो बातें बता भी दे कि आप वहां बैठकर ये बातें कर रहे थे। बच्चे इतनी गहराई से हमें ऑब्जर्व करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास, उनको बेस चाहिए आपको जवाब देने का। हम बच्चों को बोल रहे हैं जाके टीवी मत देखो, आप टीवी देख के खाना खा रहे हो। हम बच्चों को बोल रहे हैं जाओ अपने रूम में पढ़ाई करो, हम मोबाइल देख रहे हैं। आपको त्याग करना पड़ेगा, इसका कोई समाधान नहीं है, इसकी कोई काउंसलिंग नहीं है। आप सोचो बच्चे को हम सुधरवा देंगे डॉक्टर के पास काउंसलिंग करा के, इम्पॉसिबल चीज़ है। बच्चों को अगर सुधारना है तो स्वयं को बदलना पड़ेगा, खुद की एक्टिविटीज़ को बदलना पड़ेगा। मैं अपने बच्चे के बारे में बात करूं, मेरा बेटा 8 साल का है। 8 साल के बच्चे को, बहुत रेयर बच्चे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा ही बच्चा रेयर है, सभी बच्चे मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखकर खाना खा रहे होते हैं। मेरा बच्चा 8 साल का हो गया, उसको मोबाइल नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोन नहीं देखा या फोन नहीं चलाया या फोन के बारे में उसे जान, सब रही जानकारी है, लेकिन उसकी हर चीज की टाइमिंग फिक्स है। वो यूट्यूब भी देखता है तो उसको टाइम फिक्स है कि संडे को ही यूट्यूब उसको देखना है, 1 घंटा 2 घंटा। मोबाइल देखना है तो ट्रैवलिंग में हम कभी बाहर जाते हैं तो उसको मोबाइल मिलता है, अदरवाइज घर पर नहीं मिलता। मैं जब स्वयं खाना खाता हूं तो टीवी बंद होती है, मैं पालथी मार के जमीन पर बैठ के खाना खाता हूं, तो वो भी वही काम करता है। तो बच्चे को अगर मैं बोलूं नहीं तू ऐसे कर और मैं उल्टा कर रहा हूं, तो बच्चा खुद विरोधाभासी हो जाएगा कि यार ये मुझे कुछ और बोलते हैं, करते कुछ और हैं। तो हम बच्चों को कहीं ना कहीं अनजाने में, हम कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा खराब हो, लेकिन हम अनजाने में इतना गंदे तरीके से बच्चे को खराब कर रहे हैं जिसका मतलब जो अभिशाप है एक तरीके से, जो बच्चों को झेलना ही पड़ेगा आने वाले टाइम में, हम अपनी पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। हमें बदलने की जरूरत है, बच्चों को बदलने की जरूरत नहीं। आज मोबाइल, गैजेट्स, लैपटॉप, ये सब हमारे जीवन का बहुत बड़ा अंग बन चुका है, सबका। आज योगा आप बात करें स्कूलों में तो ऑनलाइन जो है ना, उनको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं घर पे, ठीक है, आप उनको बताओ, समझाओ, उसको देखने की तरीके बताओ। अब आप अपने आप को बचाने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा रहे हैं, ये गलत है। इससे बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो रहा है, फिजिकल विकास नहीं हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हीन भावना का भी शिकार हो जाएगा, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी शिकार हो जाएगा। बच्चे इंटेलिजेंट हैं, 95% मार्क्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनका एक सोशल प्लेटफॉर्म पे या मतलब जो सामाजिक एक दायरे में वो वहां पर बहुत कमजोर हैं, वो ठीक से किसी से बात भी नहीं करना चाहते, वो लोनली रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं मानसिक विकार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बच्चों को जितना हो सकता है उम्र के हिसाब से उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो, उनको जितना हो सकता है ग्राउंड में लेके जाओ, मिट्टी के साथ वो कनेक्ट हों, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो प्रोफेशनल फिजिकल एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करो। योग है बच्चों के लिए तो ढेर सारी चीजें हैं, वही योग है उनके लिए, लेकिन आपको एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उनको बाहर लेके जाना पड़ेगा, उनको वो प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, वो स्वयं नहीं ले सकते वो जिम्मेदारी, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि अपने आप को समझें, अपने आप को बदलें बच्चों के लिए जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनको आपने पैदा किया है, अदरवाइज आप इतना बड़ा गलत काम कर रहे हैं अनजाने में जिसका भुगतान आपको भी भुगतना पड़ेगा और आपने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसको भी भुगतना पड़ेगा। तो योग से स्वयं को जोड़ें और बच्चों को भी जोड़ें, यही योग दिवस की लोगों को हम प्रेरणा देना चाहते हैं, मोदी जी प्रेरणा देना चाहते हैं कि यही एक मात्र मार्ग है जो हमें बचा सकता है, अदरवाइज कोई चीज हमें नहीं बचा सकती, इसको समझना पड़ेगा। और ये बिल्कुल नेचुरल है, प्राकृतिक है, आपको प्रकृति के साथ जुड़ना है, यही योग है।
0: बिल्कुल बहुत सही कहा डॉक्टर साहब आपने, और जैसा आपने बताया कि बच्चे जो हमेशा है ना वो बड़ों को फॉलो करते हैं और वो जाने अनजाने बहुत सारी चीज़ें हैं वो अपने बड़ों से सीखते रहते हैं, उनको कॉपी करते हैं। तो हमारे जो भी बड़े हैं अगर वो अपने घर में योग करना शुरू कर देंगे तो बच्चे अपने आप योग करना शुरू कर देंगे। तो ज़रूर इन चीज़ों पर हमारे जो सुनने वाले हैं ध्यान देंगे। डॉक्टर साहब आपसे बातों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं
1: जी।

0: नमस्ते जी, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। अपने सुनने वालों को एक बार फिर से याद दिला दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और खासकर योग पर हम बात कर रहे हैं, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरेंद्र गौतम जी। आप फाउंडर हैं पंचोपचार वेलनेस रिजोर्ट कांडाताल उत्तराखंड के। डॉक्टर साहब, एक और बात यहाँ पे जानना चाहेंगे आपसे। योग की बात हम कर ही रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, तो कौन कौन सी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है योग करने से?
1: आप ये पूछिए कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो योग से ठीक नहीं हो सकती है। योग अपने आप में संपूर्ण है। हम बीमार पड़ते हैं अनदेखे अनजाने गलतियां कर करके, इग्नोर कर करके, चीजों को हम लेटगो वाली चीजों में छोड़ देते हैं। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा ही तो खा रहा हूं, ठीक है। मैं आज के समय के हिसाब से बात करूंगा, मैं 80 और 90 के हिसाब से बात नहीं करूंगा। समय बदला है, हालात बदले हैं, परिस्थितियां बदली हैं, जॉब के कल्चर बदल गए हैं, कॉरपोरेट कल्चर हो गए हैं, MNCs के अलग अलग टाइमिंग्स होने लग गए हैं, लोग कॉल सेंटर्स में नाइट में जॉब करते हैं, और इंसान को जीवन चलाने के लिए हर तरीके से अपने आप को ढालना पड़ता है। मैं बिल्कुल इसका विरोधाभासी नहीं हूँ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा जब आप प्रकृति के अंगेंस्ट चल रहे हैं। क्योंकि प्रकृति का एक स्वरूप बनाया गया है, दिन होता है, रात होती है, रात सोने के लिए बनाई गई है, जागने के लिए नहीं बनाई गई। हम जानवरों से ये चीज सीख सकते हैं, हम पेड़ पौधों से ये चीज सीख सकते हैं कि रात को देखो वो अपने आप जब सुस्त हो जाते हैं, उनकी पत्तियां ढीली हो जाती हैं, लेकिन सुबह जैसे ही प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है वो तरोताजा होने लगती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे खिलखिला के हंस रहे हैं, जानवर भी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, रात को शांत है। लेकिन एक मनुष्य, एक इंसान वो प्राणी हो चुका है जो 24 घंटे एक्टिव फॉर्म में है। तो हमें क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। हम नींद को भूल चुके हैं, हमें नींद की

0: जरूरत भी है।
1: बिल्कुल,
0: आप 5 साल 10 साल अपनी जवानी अपने यंग बॉडी को मिसयूज कर सकते हैं, आप जीवन भर उसको मिसयूज नहीं कर सकते। आपको उसको समझना पड़ेगा। आपको ये शरीर नहीं समझे आप तो आप पूरी तरीके से फंसेंगे, और ऐसा फंसेंगे कि कई बार हम नहीं निकल पाते, क्योंकि शारीरिक समस्याओं को आराम से मैनेज किया जा सकता है, मानसिक समस्याओं का मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे समाज में मानसिक समस्याओं को लोग शेयर नहीं करते कि उनको कोई समस्या है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उपहास उड़ाएंगे उनका। वो बताएगा, यार मुझे अजीब अजीब थॉट्स आ रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा मरने का मन कर रहा है, तो लोग उपहास उड़ाएंगे, यार तू पागल हो गया है, लोग ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन वो समस्या शारीरिक समस्या से बड़ी है, क्योंकि शारीरिक समस्या का मूल जड़ जो है वो मानसिक समस्या से है। तो ये दोनों आपस में पूरक हैं एक दूसरे के। हमें शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए तो मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रखना पड़ेगा, मानसिक स्वास्थ्य चाहिए तो शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रखना पड़ेगा। और अगर ये दोनों ठीक हैं तो मैं चैलेंज से बोल सकता हूँ कि हर आदमी हर परिस्थिति में खुश रहेगा, चाहे उसको करोड़पति है, चाहे वो लखपति है, चाहे वो नॉर्मल आदमी है, वो खुश रहेगा, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया असली खुश रहना अंदर से है। ये सब चीजें लग्जरी की हैं, जो कम होंगी तो भी चलेगा, ज्यादा होंगी तो भी चलेगा, वो बैलेंस बनाना जानता है। तो स्वास्थ्य को सही रखना है तो योग कीजिए, और योग से यकीन मानिए हम बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों को 20-20 साल क्रोनिक डिजीज को भी ठीक कर रहे हैं, और लोग ठीक हो रहे हैं। हमारे पास हजारों ऐसे टेस्टिमनीज हैं, मैं आपको वो दिखा सकता हूँ जो लोगों ने स्वयं हमें दिए हैं वीडियो बना बना के, कि 20 साल पुरानी बीपी ठीक हो गया, 20 साल पुराना शुगर ठीक हो गया, सर्वाइकल ठीक हो गया। लाइक ये बेसिकली बीमारियां नहीं है शशि जी, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आपके इस रूम में हम बैठे हुए, हर चीज ऑर्डर में है, टेबल यहाँ पर है, कंप्यूटर का स्क्रीन यहाँ पर है, हर चीज सिस्टमेटिक है तो सुंदर लग रही है। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो, उल्टी सीधी हो, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड होगी। हमें अपनी बॉडी को भी ऑर्गेनाइज करना है, उसको ऑर्डर में लाना है। तो जैसी बॉडी ऑर्डर में आती है तो आपके जितने पैरामीटर्स हैं, वाइटल्स जो हमारे बॉडी को, जिसको हम लेबोरेटरी में टेस्ट कराते हैं, वो अपने आप ठीक आ जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: हमारा तालमेल हमें बस बैलेंस करना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब हम समझ गए, हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी समझ गए होंगे कि शरीर को स्वस्थ रखना है। तो आपने जैसे बताया कि योग के जरिए आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी सही रहता है, और आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी सही रहता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे ऐसे युवा साथी हैं और भी जो सुनने वाले हैं, वो चाहते हैं कि योग तो वो करें ही करें, साथ ही साथ कुछ रोजगार के अवसर भी वो हो सकता है तलाश हैं इस क्षेत्र में। तो आप तो खुद फाउंडर हैं पंचोपचार वेलनेस रिजोर्ट काड़ाताल उत्तराखंड के, तो इस क्षेत्र में जो भी आना चाहता है रोजगार की दृष्टि से तो कैसे आ सकता है और क्या क्या संभावनाएं हैं?
0: ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है ना एक बहुत बड़ा विषय है हमारे देश में, और लोग बोल रहे हैं, सरकारें गिर जाती हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है। लेकिन मोदी जी हमेशा एक अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि वो, मैं उनका नाम इसलिए लेता हूँ, मैं इसलिए नहीं लेता कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ या किसी पार्टी को, मैं उनकी पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ, व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ, बस मेरा यहीं पर वो पॉइंट है। वो हमेशा बात करते हैं कि अपने आप को जानो समझो तो स्वयं आपके पास काम आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में आओ, आप स्वयं को रोजगार दो, स्वयं को
1: जी।
0: वो चीज कितनी बड़ी फ्रीडम है। आज मेरे कई सारे मित्र हैं कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, बड़ा परेशान रहते हैं, उनको हमारी जरूरत पड़ती है, यार 40 साल हो गए, अब बता यार कुछ मेरे को, अब तो मेरे पास ये बीमारियां हैं, 5-6 बीमारियां हैं, तो पैसा तो आया लेकिन बहुत कुछ सेक्रीफाइस होके उनका छिन गया। तो आज के समय में, क्योंकि मोदी जी ने योग को इतना प्रचलित किया, रामदेव बाबा जी ने भी बहुत सारा उसमें योगदान दिया, और बड़े बड़े हमारे योगी हमारे देश में रहे हैं, आज से 15-20 साल पहले उसके ऊपर इतना एम्प्लॉयमेंट, या हम बोलें कि लोग इस दिशा में नहीं सोचते थे कि इससे हम अपने जीवन को चला सकते हैं, मतलब एक हम यहाँ से भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आज समय बिल्कुल बदल गया है, आज वेलनेस इंडस्ट्री $1 trillion की इंडस्ट्री है, दुनिया में योग की सबसे ज़्यादा डिमांड है, ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर लोग योग नहीं करते। तो योग टीचर्स जितने भी आएंगे वो भी कम है, एक अच्छा योग टीचर आराम से 50,000 से 60,000-70,000 रुपए मंथली इजीली कमा लेता है, उसको समय देना होता है, एक अच्छे कोर्स को करने की जरूरत है, कई सारे हमारे छोटे कोर्स भी हैं, 3 महीने के 2 महीने के 1 साल के डिग्री कोर्स भी हैं, ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है। मैं तो कहूँगा कि अगर आपने इस विषय में सोचा है तो आप 12th के बाद इस विषय में सोचिए, अब डायरेक्शन में सोचिए और योग से ही ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए। आपके पास अपार संभावनाएं होंगी पैसा कमाने की, जॉब करने की। कई सारी इंस्टीट्यूशंस में आज योग कंपलसरी हो चुका है, कॉरपोरेट्स में कई सारे वर्कशॉप होती हैं जहां पर योग टीचर्स उनके पास परमानेंटली होते हैं। तो योग को लेकर एक मतलब, क्योंकि ये आपका स्वयं का काम है, फ्रीलांस के रूप में आप योग कर सकते हो, एक जॉब, स्कूलों में योग की बहुत ज़्यादा डिमांड है, आर्मी में योग की ज़रूरत है, क्रिकेट, जितने भी स्पोर्ट्स हैं वहाँ पर भी योग हो रहा है, क्योंकि आज मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, हम लोग बहुत सुपर एक्टिव हो गए हैं। तो योग, जितने भी टीचर आज आएंगे वो भी कम है, बहुत टीचरों की आज ज़रूरत है योग में। जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं हम उनको डिटेल में पर्सनली गाइड कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बहुत सारी संभावनाओं के बारे में बताया है कि योग में तो बहुत सारी संभावना है, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे और औरों को भी स्वस्थ करेंगे, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आप खुद भी खुश और दूसरे भी खुश रहते हैं।

0: नमस्ते जी, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। अपने सुनने वालों को एक बार फिर से याद दिला दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और खासकर योग पर हम बात कर रहे हैं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरेंद्र गौतम जी। डॉक्टर साहब, समय हो चला है कि अपने श्रोताओं से अनुमति ली जाए, तो चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं यही कहना चाहूंगा,

0: बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: प्रिया तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे, मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ, मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ, मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया तुम क्या चाहती हो, तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
4: Solo Sharda.
5: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
6: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
7: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
8: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
6: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान। जी हां किसान मित्रों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको खेती किसानी की नई नई जानकारी पहुंचाते हैं और साथ ही साथ सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं, ताकि आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सके। और किसान मित्रों, आज के खेत खलियान कार्यक्रम में सबसे पहले बात करते हैं मधुमक्खी पालन योजना की। किसान मित्रों, आपकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से खेती के साथ साथ ही पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसान भाई खेती के साथ साथ ये काम आसानी से कर सकते हैं और इसी क्रम में सरकार की ओर से किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसान भाइयों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। किसान भाई खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सरकार की ओर से मधुमक्खी पालन को मीठी क्रांति के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किसान मित्रों, सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिसका प्रयोग आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के तहत आवेदन करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही मधुमक्खी पालन स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं तो ये लोन आपके लिए काफी लाभदायक होगा। आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के जरिए अपने व्यवसाय को और अधिक बढ़ा सकते हैं और इसे उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। यदि बात की जाए कि मधुमक्खी पालन की शुरुआत कैसे की जाए और कितना खर्चा इसमें आएगा शुरुआती दौर में, तो आपको बता दें कि यदि आप शुरू में 10 पेटी के साथ मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो इसमें करीब 35,000 से 40,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे मधुमक्खियों की संख्या बढ़ने लगेगी आपको मुनाफा अधिक होना शुरू हो जाएगा। आगे आपको सिर्फ मधुमक्खियों के लिए पेटियों की संख्या बढ़ानी होगी। इस तरह आप शुरुआती कुछ पैसा खर्च करके मधुमक्खी पालन करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के संपर्क कर सकते हैं और इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना मधुमक्खी पालन योजना के बारे में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं केशव कुमार और ज्योति। किस्सा रहेगा रामायण का।

0: किसान मित्रों, अभी आप केशव कुमार और ज्योति से ये रागनी सुन रहे थे, किस्सा था रामायण का। किसान मित्रों, आज के समय में फसल की बेहतर पैदावार पाने के लिए कृषि यंत्रों और मशीनों का जमकर उपयोग हो रहा है। अब तो खेत की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक का काम कृषि यंत्रों से ही किया जा रहा है। रोटावेटर, हैप्पी सीडर, जीरो टिलेज, रोटो सीड ड्रिल, स्ट्रा रीपर, निराई गुड़ाई के स्वचालित यंत्र, लेजर लैंड लेवलर, स्वचालित और ट्रैक्टर चलित छिड़काव का यंत्र किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं। कृषि यंत्र और मशीनें कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण अंग है। कृषि यंत्र और मशीनों के उपयोग से कम समय में कम श्रम के साथ और कम लागत से अधिक पैदावार ली जा सकती है। इसके अलावा बीज, उर्वरक, पानी और कृषि रक्षा दवाओं का उपयोग भी इन्हीं कृषि यंत्रों और मशीनों की मदद से किया जाता है। कृषि यंत्रों का प्रयोग समय पर कृषि कार्य संपन्न करने में मददगार है और बड़े स्तर पर कृषि कार्य करना इनसे आसान होता है। इसके अलावा कृषि उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण और बाजारीकरण तक के सभी कार्यों को सफलतापूर्वक और व्यवस्थित ढंग से कृषि यंत्रों और मशीनों द्वारा संपन्न किया जाता है। इन यंत्रों पर किसान भाइयों का काफी पैसा खर्च होता है, इसीलिए कृषि यंत्रों के प्रयोग और रखरखाव पर पूरा ध्यान देना आवश्यक है। इससे न केवल कृषि यंत्रों की आयु बढ़ती है बल्कि कृषि यंत्रों के रखरखाव की लागत में कमी के साथ साथ समय की भी बचत होती है। किसान मित्रों, कृषि कार्य करने के बाद कृषि यंत्रों को साफ सुथरे और सूखे स्थान पर रखना चाहिए। आवश्यकता अनुसार इन पर तेल और ग्रीसिंग करते रहना चाहिए। कृषि यंत्रों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार ही प्रयोग करें और विशेष कार्यों के लिए विशेष यंत्र का ही प्रयोग करें ताकि कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। कृषि यंत्रों को प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह से उनके सभी पुर्जों की जांच कर लें। यंत्रों के उपयोगकर्ता को यंत्र चलाने का अच्छी तरह से ज्ञान और उसका प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। अन्य सुरक्षात्मक साधनों का जैसे पानी और रेत को कार्य करते समय पास रखें। कृषि यंत्रों और मशीनों का प्रयोग करते समय केवल कुशल श्रमिकों को ही सहायक के रूप में काम पर रखें। विशेष तौर पर महिला श्रमिकों को कार्य शुरू करने से पहले ठीक प्रकार समझा दें कि किस प्रकार कार्य करना है। कार्य करने के दौरान कोई रुकावट आ जाए तो कुशल मिस्त्री की ही सहायता लें। और इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को कृषि यंत्र और मशीनों के पास ना आने दें। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई कृषि यंत्रों का रखरखाव और उनका उपयोग करें। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही कृषि यंत्रों के रखरखाव और उनके उपयोग की। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान और किस्सा रहेगा लवकुश का।
1: और हम

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान से ये रागनी, किस्सा था लव कुश का। किसान मित्रों, भारत सरकार द्वारा आपकी आय को बढ़ाने और आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि किसान भाइयों के समक्ष आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर सरकार द्वारा योजनाएं लॉन्च की जाती हैं और इन योजनाओं को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कृषि फसलों का चौमुखी विकास करना है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों का रुझान बागवानी के क्षेत्र में अधिक देखने को मिल रहा है और सबसे खास बात यह है कि वर्तमान समय में देश के हमारे बहुत से किसान भाई बागवानी से अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए सरकार ने बागवानी के क्षेत्र में लोगों को बढ़ावा देने और हमारे किसान भाइयों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बागवानी मिशन चलाया है। किसान मित्रों, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत किसानों को उच्च दामों वाली सब्जियों, फल और फूलों साथ ही मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा बागवानी में किसानों को अधिक आय के साथ ही विभिन्न प्रकार के फायदे हैं। खाद्यान्न फसलों को उगाने के लिए बहुत सारी भूमि की आवश्यकता होती है, जबकि बागवानी का कार्य आप कम भूमि पर आसानी से कर सकते हैं। बागवानी फसलों की सहायता से छोटे और हमारे सीमांत किसान भाई अपनी कम भूमि पर भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस मिशन के माध्यम से किसानों को बागवानी फसलों के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा इस स्कीम को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हमारे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बागवानी फसलों को बढ़ावा देना है, ताकि हमारे किसान भाई पारंपरिक खेती की अपेक्षा आधुनिक खेती की तरफ आकर्षित हो सके। इस योजना के माध्यम से किसान भाइयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सिंचाई, नेट हाउस, भंडारण और तारबंदी आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो किसान बहन भाइयों, ये तो बात रही राष्ट्रीय बागवानी मिशन की, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना और हरेंद्र नागर। किस्सा रहेगा महाभारत का।

ज्ञानेंद्र सरधाना और हरेंद्र नागर द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई, माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा, देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
6: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: दरोगा जी का आना हमारे घर पे कैसे हुआ? और फिर तो रुकया नहीं गया और सवाल करना शुरू कर दिया, क्यों दरोगा जी?
1: कहिए याद राम जी।
0: मैं इस भ्रम में हूँ, इस संशय में हूँ।
1: हाँ,
0: तुम्हारा आखिर हमारे घर पे आना क्यों हुआ?

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग,
1: कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: कुदरत के वसूल को मिटा सकता है कौन, और मौत के पैगाम को हटा सकता है कौन। दोस्तों, सत्यवान ने समझाया सावित्री, तू सही बता दे, ये चेहरे पर जरदाई के लक्षण कैसे दिखाई दे रहे हैं? आज तू उदास क्यों है? जति पुरुष के साथ सती वीर तो खुश होकर रहती है, लेकिन बहुत दिन के बाद आज ये खुशहाली कहां उजड़ गई? सावित्री ने समझाया, प्राणनाथ ऐसी कोई बात नहीं है, कोई तकलीफ हो उसे बताओ। क्या जंगल में रहने के बाद इस टोटी के लाचारी ने तुम्हें सता तो ना दिया? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं स्वामी। दोस्तों, सत्यवान कि दिमाग में वो बात नहीं आई, और ना ही सत्यवान को ऐसा पता था कि तू एक दो दिन में सतीवीर को छोड़ के चला जाएगा। दोस्तों, जैसे ही सत्यवान डोरी और कुल्हाड़ा लेकर के जंगल की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, हाथ पकड़ लेती है सावित्री, महाराज आज तो मैं भी तुम्हारी गैल चलूंगी। लेकिन सावित्री, वीर तो घर में ही शोभा देती है, जंगल में काम करना तो ये पुरुष का धर्म है, लेकिन महाराज हमारा ये पेशा है, मैं आज तुम्हारे साथ लकड़ी काटूंगी। भला कैसे कहती है और कैसे समझाता है।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अरे सुनीता, कैसी है मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी, बस ठीक है।
1: साफ सफाई का ध्यान रख रही हो?
2: जी दीदी, जैसा आपने बोला था, हर रविवार साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा देखते हैं तुरंत साफ करते हैं, जैसे पानी का ड्रम, कूलर, फ्रिज की ट्रे
3: और आसपास कहीं भी टायर, नारियल, खाली बर्तन या किसी

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए Sharda School of Media, Film and Entertainment. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ. स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट यानी SMFE क्षमता विकास और कौशल वृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, एक खास सब्जेक्ट है जिसके बारे में हर कोई बात करना चाहता है, यानी स्किल्स के बारे में. स्किल्स वो एक ऐसी कला है कि जिसमें चार चांद लगाकर आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं. आइए इसी संबंध में सुनो शारदा 90.8 FM स्टूडियो से निकलकर नोएडा के मोनामी फाउंडेशन पहुंचा है, जहां हमने उनके फाउंडर और जुड़े हुए जो टीम लीडर हैं, जो दूसरे सदस्य हैं, उनसे बात की कि आप किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से आपको यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है. आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर.
1: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM.
3: मैं हूं गगन आपके साथ और आज मैं स्टूडियो से निकलकर नोएडा में आया हूं. और आने का उद्देश्य, मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि विमेन एम्पावरमेंट की जो बातें हैं वो बातें हम करेंगे, उन महिलाओं के भविष्य की बात करेंगे जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनकी गाइडेंस की बात करेंगे, किस तरीके से वो अपने आप को आगे लेकर जा सकती है. और इसी संबंध में मेरे साथ एक NGO है जिसका नाम है मोनामी फाउंडेशन, और इस फाउंडेशन से एक मेंबर हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं अनुराग मैम. तो मैम, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है.
4: थैंक यू, नमस्कार सभी को.
3: इस फाउंडेशन के बारे में आप हमारे लिसनर्स को बताएं कि इसकी शुरुआत कब हुई, किस मकसद के साथ आप लोगों ने इसकी शुरुआत की.
4: ये इसकी शुरुआत 2015 में हुई मोनामी फाउंडेशन की, पर मेरे को आर्टिजन्स के साथ काम करते हुए लगभग 20 साल हो गए हैं और मैं क्राफ्ट में काम करती हूँ, काफ़ी सारे आर्टिजन्स के साथ जुड़ी हुई हूँ. और मुझे लगा कि एक फाउंडेशन की ज़रूरत है जहाँ पर हम लोग और लोगों को अपने साथ जोड़ सकें, प्रोजेक्ट वाइज ही नहीं पर बल्कि एक लंबे समय तक काम करने के लिए हम निकले हैं. और एक अकेले काम करने के अलावा एक ग्रुप में काम करना बहुत अच्छा होता है, तो एक टीम हम बना रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े रहें और हम लोग आगे और इम्पैक्टफुल काम करें.
3: मैंने सुना है कि आपके साथ जो टीम मेंबर्स हैं, मेरा मतलब ये है कि जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं, वो माइग्रेंट हैं जिन्होंने पलायन किया है, तो ये जो पलायन हुआ ये लॉकडाउन के दौरान हुआ या उससे पहले वो आपके साथ जुड़ चुकी थी?
4: ये लॉकडाउन के टाइम हमने शुरू करा है जो ये प्रोजेक्ट हमारा अभी नोएडा में चल रहा है. हम कई सालों से NCR में काम कर रहे हैं माइग्रेंट महिलाओं से, क्योंकि हमें लगा कि माइग्रेंट महिलाएं ऐसी स्थिति में हैं कि वो ना घर से बाहर निकल सकते हैं, गांव से आ कर के एक बहुत अजीब से सिचुएशन में रह जाती हैं कि ना बाहर जा कर के काम करने सकते हैं, बाहर जाने से डर लगता है, घर में बैठ के एक तरीके से बंध गई हैं. और इस बंदिश को हम किस तरीके से खोल सकते हैं और उनको उन्होंने जो इतना सालों से काम करती हुई उनका कोई अहमियत नहीं रह गई और अपने आप को सोचती भी नहीं कि कुछ अहमियत है उनमें, तो हम सोचते हैं कि इनको स्वयं सहायता समूह के द्वारा उनको हम आत्मनिर्भर बनाएं। आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है और ये हमने धीरे धीरे प्रोग्राम एक डेवलप करा। स्पेशली ये कोविड के टाइम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा क्योंकि घर से कोई बाहर ही नहीं निकल रहा था। आप मैं कोई प्रधानमंत्री तक किसी को बाहर जाने की वो परमिशन नहीं थी, तो क्या करते, घर पे बैठे। कई लोगों की नौकरियां चली गई, घर पे सभी बैठे थे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। तो हमने जूम सेशन के द्वारा ये प्रोग्राम बनाया जहां पर हमने किट भेजे सबको, जिन लोगों ने अपने नाम लिखाए थे वो चाहते थे कि कुछ काम करें। घर पे बैठ के जो महिलाएं जिनको किट मिले उन्होंने जूम सेशन के द्वारा क्लासेस ली। जब उन्होंने ये क्लासेस ली, पहले 15 सेशन एक महीने में पूरे हुए और उसके बाद उन्होंने देखा कि एक नई चीज़ें वो बनाना सीख रहे हैं, उससे उनको बहुत प्रोत्साहन मिला। तो उन्होंने कहा हम और आगे आपके साथ क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा आप एडवांस ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक स्वयं सहायता समूह बनाना पड़ेगा, स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो सब डर गए कि बैंक कैसे जाएंगे, हमने कहा कोई बात नहीं, हम बैंक से बात करेंगे। तो एक सेशन तो हमने बैंक मैनेजर के साथ भी रखा था,
3: बहुत अच्छा।
4: और बैंक मैनेजर आई, उन्होंने कहा आप डरते क्यों हो, वो भी हमारे जैसी एक महिलाएं थी और उन्होंने कहा मेरे भी छोटे बच्चे हैं पर मेरे को बैंक जाने में डर नहीं लगता। और बैंक मैनेजर ने जब ये कहा तो सारी महिलाएं इकट्ठा आईं और उन्होंने जा करके अकाउंट खोला और फिर बैंक को कैसे मैनेज करा जाता है, पैसे को कैसे मैनेज करता है, ये एडवांस ट्रेनिंग में हमने सिखाया। क्योंकि कुछ कम उम्र की भी लड़कियां थी, उन्होंने कहा मैम हमें फेसबुक भी खोलना है, अपना अकाउंट खोलना है, कुछ फेसबुक पे ऑलरेडी थे। मैंने कहा ज़रूर, तो सबके फेसबुक अकाउंट खोले, ये भी शारदा यूनिवर्सिटी के द्वारा हमने करा। उन्होंने हमें बताया कि एक हम फेसबुक अकाउंट खोलना हिंदी में बनाते हैं और वो अपने आप फेसबुक अकाउंट, ईमेल आईडी और सबने ये खोला। तो एडवांस ग्रुप में उन्होंने ये ज़रूर करना होता है और हर थर्सडे को उनकी योगा क्लास होती है।
3: बहुत अच्छा।
4: क्योंकि जब हम बैठ के कुछ क्राफ्ट कर रहे हैं तो एक तरीके से हाथ थोड़े से जम जाते हैं या कहीं गले में गर्दन में दर्द हो रहा है या कुछ, तो हमने जब योगा क्लास शुरू करी तो हमें एक सेशन में तकरीबन 80 लोग तो आ ही जाते हैं योगा क्लास के लिए। तो इतने सारे लोगों को योगा क्लास कराना पॉसिबल नहीं था अगर हम एक जगह कराते।
3: मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, मुझे लगता है कि शायद ही कोई आपसे आपका पहलू बचा होगा। आपने जिस तरीके से कहा कि एडवांस ट्रेनिंग आप लोगों ने उन लोगों की कराई या यूँ कहें कि उन महिलाओं की कराई जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जो काम कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें अभी बाकी हैं जो हमें करना बाकी है? चाहे जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ बातों में कि चाहे डॉक्टर की क्लासेस होना बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ को हम किस तरीके से बेहतर बना के रख सकते हैं, लाइफ मैनेजमेंट की बातें हैं, स्ट्रेस की बातें हैं, तो क्या लगता है कि इन पहलुओं को अभी आपको छूना बाकी है?
4: बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम और भी करना चाहेंगे। कुछ भी अगर नई चीज़ें सीखी जाती हैं तो उसमें बहुत सारे बदलाव, कुछ एडवांस में कुछ चीज़ें बनाना, हर बार एक नया डिज़ाइन समझना, उस डिज़ाइन को किस तरीके से बनाना और उसे प्रोडक्शन में ले जा के मार्केट तक ले जाना एक जर्नी है। और उस जर्नी को ये एक जब नए कारीगर बने हैं जो नया शुरुआत करी है उसको एक तर तक ही समझ पाए हैं, इसको पूरी तरीके से समझना एक समय की बात है और एक्सपीरियंस की बात है। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी लोगों ने हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं उसको और हम एक दूसरी ट्रेनिंग कराएं। अभी मार्केटिंग ट्रेनिंग हुई है जो शारदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के हेल्प से हुई है, केवल 20 महिलाएं अभी जुड़ी हैं और हमारे पास 150 महिलाएं हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ऑलरेडी पूरी कर ली है।
3: क्या बात है, बहुत अच्छा। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं जिस कमरे में आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी अच्छी कारीगरी यहाँ हुई है, और क्या ये जो कारीगरी हुई है तो इसकी भी आप लोगों ने पहले ट्रेनिंग दिया होगा उन लोगों को, और कितना समय लगता है उन चीज़ों को सीखने में, समझने में? और फिर आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोग यहाँ डिज़ाइन करते हैं या यूँ कहें कि बनाते हैं?
4: तो हम जितने भी चीज़ें अभी क्रोशे में बना रहे हैं वो सारी कॉटन में बनी हैं, और ये ट्रेनिंग 15 दिन की बेसिक और फिर 20 दिन की एडवांस, पूरे टोटल 75 दिन कम से कम लगते हैं ट्रेनिंग को कंप्लीट करने में। फिर उसके बाद उनको ऑर्डर देते हैं, जो ऑर्डर में जो सामान बनाया जाता है वो बाज़ार में लेकर के जाते हैं, जैसे दस्तकार बाज़ार है और अभी हमारा दस्तकार बाज़ार बेंगलोर में पूरा हुआ, ये सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर गए और लोगों ने बहुत पसंद करे हैं। तो ये मार्केटिंग लिंकेज काफ़ी ज़रूरी है कोई भी चीज़ें बनने के लिए, और हम चाहेंगे ये जितने भी हमारे जैसे क्रोशे के चीज़ें हैं, ब्लैंकेट्स हैं, रैटल्स हैं, अभी काफ़ी सारे नए रेंजेस हो रही हैं, हमारे साथ कुछ मधुबनी के आर्टिजन्स भी जुड़ गए हैं,
3: ग्रेट, आई थिंक बिहार से जो लोग होते हैं,
4: काफ़ी सारे लोग मधुबनी के ही हैं, और उन्होंने वो 15 साल की थी जो सबसे पहले उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन करा, जब उन्होंने शादी के बाद यहाँ पर नोएडा में आई, नहीं नोएडा आई, और नोएडा में आकर के शादी के बाद उन्होंने काम पेंटिंग करती थी पर कुछ उनका कहीं पर बेचना या कुछ भी उसको काम करना आगे नहीं ले जा पाई,
3: वो सब तो कुछ आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म,
4: हमने एक दोबारा शुरुआत करी मधुबनी का, हमारे पास एक ग्रुप है, क्रोशे के ग्रुप हैं, और जितने भी काम सारा कर रहे हैं उसको मिला के हमने काफ़ी बड़ी रेंज बनाई है जो दस्तकार बाज़ार लेके जा रहे हैं।
3: ठीक है, तो क्या जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो प्रोडक्ट आपके पास लेकर आते हैं, या यूँ कहें कि कुछ सैलरी बेस लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये जो क्राइटेरिया है वो क्या क्राइटेरिया है?
4: ज़्यादातर जो भी ट्रेनिंग के टाइम स्टाइपेंड मिलता है और जो काम बताया जाता है तो वो ट्रेनिंग का स्टाइपेंड के तरीके से होता है, ट्रेनिंग का जो भी मटेरियल है वो सारा HCL फाउंडेशन ने हमें हेल्प करा है इसको ट्रेनिंग को आगे ले जाने के लिए और इतने सारे लोगों को जोड़ने के लिए। तो एक HCL फाउंडेशन की एक विजन थी कि इतने सारे माइग्रेंट लेडीज़ हैं जो नोएडा में हैं और ये हम इनके साथ हम ये आगे ले जा सके, हमारे साथ बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं, रिमोट चैंपियंस हमने आगे बढ़ाए हैं, इन्हीं महिलाओं में से हमारे 3 रिमोट चैंपियन हैं, एक मधुबनी का जो बना रही हैं, एक जो क्रोशे का आगे कर रही हैं और एक जो सैंपल बनाने में, नए प्रोडक्ट बनाने में हमारी मदद करती हैं। तो रिमोट चैंपियंस हमारे इन महिलाओं से ही निकले हैं।
3: ग्रेट, मैं ये जानना चाहता हूँ फाइनली कि जो मेरी बातें आपसे हो रही हैं तो मैं कह सकता हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट की ये सारी बातें हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें हैं, और एक प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया है उन लोगों को जो कुछ नहीं जानते थे इन ट्रेनिंग के माध्यम से। आइए सीखिए, समझिए, अपने भविष्य को आगे लेकर जाइए। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ कही कि जिस तरीके से वर्तमान समय है आत्मनिर्भर का समय ये चल रहा है, तो वाकई एक मैं कहूँगा कि आप भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं कि लोगों को एक अच्छा अवसर दे रही हैं, करियर की भी बातें हो रही हैं और लोगों को आप गाइड भी कर रही हैं। तो कैसा लगता है कि जब इस तरीके से समाज में आप भागीदारी दे रही हैं, लोगों की आप मदद कर रही हैं, उनको आगे जाने का एक मौका दे रही हैं महिला सशक्तिकरण में?
4: हम फैसिलिटेटर्स हैं, हम मुनामी फाउंडेशन ने कुछ भी ऐसा काम हम नहीं कर रहे हैं जो मुफ्त का है या कुछ ऐसा जो हम सोचते हैं कि हम अपनी तरफ से डोनेशन कर रहे हैं, ये डोनेशन नहीं है। सब बहुत ज़रूरी है कि हर किसी को आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्मशक्ति होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हर महिला आगे बढ़ के काम करे, मुफ्त का कुछ भी नहीं है। और इसीलिए वो कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए कि हम लोग कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, हम सब अपने लिए काम कर रहे हैं, और इसी चीज़ को हम हर महिलाएं जो हमारे साथ जुड़ती है उसे ये समझाते हैं कि आप अपने लिए काम कर रही हैं, मेरे लिए नहीं।
3: सही कहा।
4: और एक फाउंडेशन में, एक टीम में, एक हम सब इकट्ठा जोड़
3: एक फैमिली
4: परिवार, एक परिवार के जैसे हम आगे बढ़ेंगे, और एक टीम में जब तक कोलैबोरेशन नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते।
3: मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो आपने डिस्कस किया कि मार्केटिंग की बात हुई और कुछ अलग तरीके से बातें हुई, शारदा यूनिवर्सिटी भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, आज मीडिया आपके साथ है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? शारदा यूनिवर्सिटी पर रेडियो आपका ये ऑनियर होने जा रहा है और अभी हमने शारदा टीवी के लिए भी आपसे बातें की, तो क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में आप?
4: बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग इतना, हमें अच्छा लगा शारदा यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ करके, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी जैसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर बच्चे हैं, जब जहाँ यंग माइंड्स हैं और वहाँ जहाँ पर ये इस तरीके से हम कोलैबोरेशन कर पा रहे हैं एक एनजीओ के साथ, एक नॉन फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट के साथ, तो आई थिंक इसी कोलैबोरेशन को हमें आगे ले जाना है. सो थैंक यू सो मच शारदा यूनिवर्सिटी.
3: आपसे अगर कोई कनेक्ट होना चाहता है, आपसे कोई जुड़ना चाहता है, तो आपका वो एड्रेस या कोई फ़ोन नंबर या सोशल साइट पर वो कहाँ विजिट करे ताकि वो आपसे संपर्क कर पाए और उन लोगों का भी भला हो सके?
4: जैसे हमने कहा कि हमारा फेसबुक अकाउंट हमारी हर महिला का है, तो इसलिए हमारा भी है. मोनामी फाउंडेशन के फेसबुक पेज पर जाइए, प्लीज़ लाइक करिए. हमारा वेबसाइट है monamifoundation.com, वहाँ पर जाइए और देखिए क्रोशे का सबसे बड़ा ग्रुप हम बनाने जा रहे हैं. और आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो ज़रूर आइए, और बहुत अच्छा लगेगा अगर नए बच्चे यहाँ पर हमारे साथ शारदा यूनिवर्सिटी के और भी आएँ. हमारे साथ ऑलरेडी इंटर्न में इंटर्नशिप कर रही हैं जेबा, और हम चाहेंगे कि और भी बच्चे आएँ. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद.
3: तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई कौशल कला है, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहती हैं, बेहतर करना चाहती हैं अपने लिए, अपनी समाज के लिए, फैमिली के लिए, तो इस फाउंडेशन से आप जुड़ सकते हैं और सोशल साइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं. हमारे साथ जुड़ी रही फाउंडर अनुराग जी. तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया.
4: थैंक यू सो मच.
3: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ और आज एक प्रोग्राम के तहत मैं स्टूडियो से निकलकर बाहर आया हूं। ये नोएडा है और नोएडा में मोनामी फाउंडेशन है और यहां मेरे साथ अब जुड़ रही हैं माधुरी जी और साथ ही साथ अनु जो कि टीम लीडर हैं। तो सबसे पहले माधुरी, आपका सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: मोनामी किस तरीके से काम करती है और आप यहाँ किस तरीके से काम करती हैं, ये थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, हमारे लिसनर्स जानना चाहते हैं।
1: एक्चुअली ये मोनामी फाउंडेशन है, मतलब मोनामी का मीन्स ही है फ्रेंड, तो हम लोग इसी के ऊपर काम करते हैं। हम लेडीज़ जो होती हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और फिर हम उनसे प्रोडक्शन करवाते हैं और उन्हें हम काम देते हैं, घर बैठे बैठे सिखाते हैं और चीज़ें देते हैं, सारा चीज़ हम लोग खुद से प्रोवाइड करते हैं। वो सिर्फ घर बैठ के सीखती हैं और वो पैसे कमाती हैं, तो ये चीज़ है। और मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट करती हूँ सारा लेडीज़ का, जितना भी प्रोसेस होता है उनका, कैसे सामान दिलवाना है, क्या क्या सारा लेके जाना है, उनके सारे डॉक्यूमेंट कि वो हम लोगों के पास वेरीफाइड रहें, सारी चीज़ें वो उनका सारा कुछ मैनेजमेंट मैं करती हूँ यहाँ पे।
0: अनु भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। अनु, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका जो वर्क प्रोफाइल है टीम लीडर का है, तो ये जो काम जिस तरीके से माधुरी जी ने मुझे बताया, आप किस तरीके से यहाँ काम करती हैं और क्या देख रेख करती हैं?
2: सर, मैं यहाँ एक साल से काम करती हूँ। मैं पहले मैं ग्रुप मेंबर थी, मैंने सीखा पहले यहाँ पे, उसके बाद से अभी मैं इसके अंदर में मोनामी फाउंडेशन के अंदर से मैं जुड़ गई हूँ। तो मेरा काम है, मैं सबको मतलब लेडीज़ों को, महिलाओं को जोड़ती हूँ इस ग्रुप में, वो भी सीखती हैं, वो भी आगे बढ़ रही हैं, अपना अपना काम कर रही हैं, सब घर बैठे काम कर रही हैं। मतलब मैंने ट्रेनिंग ली, अब लोगों को मैं ट्रेनिंग दिलवाती हूँ, लोगों को बताती हूँ कि आप भी इनके साथ जुड़े, आप भी काम करें। जितनी भी महिलाएँ जो घर बैठे हैं वो सब यही सब काम करती हैं, तो मैं उनको जोड़ती हूँ।
0: ग्रेट। स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट कौशल दक्षता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आज जो मैं बात कर रहा हूँ मोनामी फाउंडेशन के तहत, हमारे साथ जो ग्रुप लीडर है माधुरी हैं और साथ ही साथ अनु भी जुड़ी हुई हैं, और इसके अंतर्गत करियर की बातें होती हैं, माधुरी कुछ गाइडेंस भी आप लोग देते हैं, तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आप यहाँ काम कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर क्या है, आपका करियर क्या है?
1: मैं एक बैंक में जॉब के लिए अप्लाई करती रहती हूँ, मतलब बैंक में मेरा बैंकिंग फील्ड है और मैं बैंक में ही आगे जाके, पर एक्चुअली मेरा यहाँ पे जुड़ने का भी एक मोटिव है, बिकॉज मेरा मतलब हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे हमारे पीछे एनजीओ था, तो हम लोग हमेशा अपनी स्कूल की खिड़की से उस एनजीओ को देखते थे, तो हमेशा से शुरू में से मन में रहा था, क्योंकि वहाँ की हम चीज़ें देखते थे कि क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं लोगों को, तो वो चीज़ देख के मेरा हमेशा मन में रहता था या तो मैं खुद का एक एनजीओ खोलूं या फिर मैं किसी एनजीओ में काम करूं। फिर मैंने मतलब सोचा इस बारे में, तो फिर मेरे को ये एनजीओ मिला, तो फिर इसमें फिर मैंने यही सोच के कि मैंने अपनी फील्ड को एक तरफ रखा कि क्या कहते हैं एमकॉम, ठीक है वो मैंने किया है, उसको भी मैं कभी गिव अप नहीं कर रही, मैं उसे कंटिन्यू करूंगी, पर यह था कि मोनामी फाउंडेशन की एक फाउंडेशन में काम करने का मौका मिलेगा, चीज़ों को जानने का अलग नज़रिया बन जाता है, और आज को शायद मेरा नज़रिया बन भी गया है कि एक ये हेल्प होती है लोगों के लिए, चीज़ों के लिए, बहुत चीज़ें हम समझाते हैं सिखाते हैं, तो उससे अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं इस फाउंडेशन में काम कर रही हूँ, और अगर अच्छा होता है लाइफ में तो कोर्स मैं उसे पिक करूँगी और इसे कर सकती हूँ।
0: ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, आप अच्छा कर रहे हैं क्योंकि समाज के साथ आप जुड़ी हुई हैं और जो समाज की एक धारा है उस धारा में आप बह रहे हैं, और आत्मनिर्भर जो भारत है इस वक्त जो एक सोच है उस सोच के साथ ये फाउंडेशन और आप लोग चल रहे हैं। अनु, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ गाइडेंस दी जाती है कि जो आपकी कौशल है वो आगे निकल कर आए, तो कौन कौन सी ट्रेनिंग आपको यहाँ समय समय दी जाती है?
2: सर, पहले तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, जब मैं जुड़ी यहाँ पे तो मुझे बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिली जो मुझे कभी नहीं पता था, जैसे कि मैं बैंक में नहीं जा पाती थी, मुझे बैंक के बारे में नॉलेज नहीं था, बैंक के बारे में पता है, मैं कुछ भी कर लेती हूँ बैंक में जाके, बाहर में कहीं कहाँ जाना है मुझे घर से पता ही नहीं था, कहाँ का ये कौन सा ऑटो है, ऊबर यूज़ करना, कुछ भी। और शारदा ट्रेनिंग भी हम लोगों को मिली शारदा यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पर भी दो टीचर ने हम लोगों को ट्रेनिंग दिया, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया बैंकिंग के बारे में, हमें ग्रुप लीडर का मतलब क्या काम होता है, कैसे हमें सबके साथ जुड़ के रहना है, कैसे हम किसको समझा सकते हैं, आगे बता सकते हैं, छोटी सी चीज़ को हम कैसे बड़े कर सकते हैं, यही सब हमें बहुत कुछ यहाँ पे नॉलेज मिली जो हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं था, कभी देखा भी नहीं था।
0: क्या बात है, मैं कह सकता हूँ कि एक महिला सशक्तिकरण का जो आपका फाउंडेशन है मोनामी फाउंडेशन बहुत एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ एक छत के नीचे दूर दराज से महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं, ट्रेनिंग लेती हैं, काम कर रही हैं, काम सीख रही हैं और अपने आप को आगे लेकर जा रही हैं। सो फाइनली आप कुछ अगर कहना चाहती हैं उन महिलाओं को जो घर पर हैं, आगे निकल कर आना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, कुछ समाज की बंदिश हैं कि जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाती हैं, तो माधुरी आपका क्या कहना है?
1: मैं ये कहूँगी कि इससे जुड़ें, और हम आपको ये भी नहीं कह रहे कि आप घर से निकलिए, हम आपको घर पे ही बैठे बैठे ट्रेनिंग देंगे, सारी चीज़ें आपको घर पे ही प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपकी फैमिली है बैरिकेड्स लगाती है, आपको नहीं निकलने देती है, तो हम आपको नहीं बोल रहे कि आप यहाँ आइए, आपको घर बैठे सब कुछ मिलेगा, आपको इनकम भी होगी, और जिससे आप कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई इस इनकम से अपना घर चला सकता है, पर एटलीस्ट अपनी कुछ चीज़ें जो होती हैं पर्सनल चीज़ें, बच्चों की चीज़ें, वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी कर सकता है। और इसके लिए आपको हमसे जुड़ना चाहिए, और हम आपको नहीं बुला रहे हैं, ना ही हमें आपके कोई फोर्स है। आप घर बैठे सिर्फ फ़ोन से ट्रेनिंग लीजिए और अपनी इनकम कीजिए, सिंपल।
0: क्या बात है अनु, आपका क्या नज़रिया है?
2: सर मैं भी यही कहूँगी, जो घर बैठी लेडीज है मेरी तरह, जैसे मैं भी पहले घर बैठी ही थी तो मैंने भी स्टार्ट किया ये, तो उन लोगों को भी स्टार्ट करना चाहिए और ये ट्रेनिंग लेना चाहिए सभी को।
0: कहने का आशय लिसनर्स ये है कि ये यहाँ से सीखती हैं, एक कौशल कला को इन्होंने विकसित किया है और खुद के लिए कमा रही हैं और समाज की जो एक भागीदारी है उसमें योगदान दे रही हैं। कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत वाली जो बातें हैं वो यहाँ मुझे इस मोनामी फाउंडेशन में देखने को, समझने को मिल रही हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, माधुरी एंड अनु, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर।
2: थैंक यू सर।
1: थैंक यू सर।
0: ये प्रोग्राम आपको कैसे लगा? 01204060205 पर कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, मेरी यानी गगन के साथ।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। SMFE क्षमता विकास और कौशल वृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने बातें की स्किल्स के विषय में, कौशल कला के विषय में। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चर्चा को आपने बड़े ध्यान से सुना होगा। अगर आप विशेषकर एक महिला हैं तो अपने पंखों को उड़ान दीजिए, अपनी सोच को आगे लेकर जाइए और जो बंदिश है उनको तोड़कर घर से निकलिए, कुछ अच्छा करिए, बेहतर करिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। जब मैंने इन महिलाओं से बातें की तो कुछ ऐसी ही दिक्कतें, परेशानियां इनके सामने थी, लेकिन आज वो अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं और जिससे वो अपना पालन पोषण तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों का भी अच्छी तरीके से ख्याल रख पाती हैं और वहीं पुरुषों के साथ वो समाज में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा? 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
3: तो अभी चलो।
4: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
5: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
6: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ,
7: अब क्या सुनाएं?

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। यह आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए चलते हैं कक्षा एक की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों, आपको अपने स्कूल का पहला दिन तो याद होगा। पता है, मुझे भी अपने स्कूल का पहला दिन बहुत अच्छे से याद है। आपके स्कूल की भी कुछ यादें आपके साथ होंगी, मेरे स्कूल की भी कुछ यादें मेरे साथ हैं। तो क्यों ना हम आज अपने अपने स्कूल की यादों को साझा कर लें? कुछ आप कहें और कुछ मैं कहूं, और फिर कुछ मैं कहूं और फिर कुछ आप कहें। तो शुरू करें आपके और हमारे स्कूल का पहला दिन। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे नन्हे मुन्ने श्रोता हैं जो अभी तक स्कूल ही नहीं गए। ये लीजिए, ये बात तो मैं भूल ही गई।

न जाने कैसे ये दिमाग से बात निकल गई। तो कोई बात नहीं, जो स्कूल कभी नहीं गए वे ये भी जान लेंगे कि स्कूल में होता क्या है और क्या क्या होता है, कौन कौन लोग स्कूल में होते हैं और टीचर या दीदी बच्चों के साथ कितनी मस्ती मारती हैं। तो हम शुरू करें आपके और हमारे स्कूल का पहला दिन। तो क्या मैं शुरू करूं अपनी बात? ठीक है, तो आपने इजाजत दी है तो फिर आपका हुक्म मैं सिर आंखों पर रखती हूं और शुरू करती हूं अपने स्कूल के पहले दिन से। ये जुलाई का समय था और तारीख मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन शायद 1 या 2 जुलाई रही होगी। नहीं, शायद हमारे जमाने में स्कूल खुलता था शायद 15 या 16 जुलाई से। चले छोड़िए तारीख में क्या रखा है, मजा तो इस बात में है कि स्कूल का पहला दिन कैसा गया। स्कूल का पहला दिन था और मैं अपने पापा के साथ स्कूल गई। मम्मी घर में थी, वो भाई को संभाल रही थी। तो स्कूल के पहले दिन मुझे मेरे पापा ने स्कूल छोड़ा, पैदल पैदल नहीं, साइकिल पर। मुझे अपने पापा के साथ साइकिल पर बैठने में बड़ा मजा आता है, तो जब तब मुझे मौका मिलता है मैं कूद कर उनकी साइकिल में पर बैठ जाती हूँ और फिर हम घूमने निकल जाते हैं। तो पापा और मैं बतियाते गपियाते स्कूल की ढेर सारी बातें करते करते स्कूल पहुंच गए। तो मैं और मेरे पापा क्लास में गए। क्लास में माधवी दीदी बैठी हुई थी। माधवी दीदी ने मुझसे मेरा नाम पूछा, वे मुस्कुराई और उन्होंने मुझे एक टॉफी दी। तो मैंने मन ही मन सोचा कि भाई भी तो घर पर है, तो क्यों ना एक टॉफी मैं भाई के लिए ले लूं। तो मैंने माधवी दीदी से कहा, दीदी क्या आप मुझे एक और टॉफी दे देंगी? पापा ने मेरी तरफ घूर के देखा कि एक टॉफी तो मिली गई है, ये दूसरी टॉफी क्यों मांगी जा रही है। तो माधवी दीदी ने कहा, तो आपको 2 टॉफी चाहिए? मैंने कहा, नहीं मुझे तो 1 ही टॉफी चाहिए। तो माधवी दीदी ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, आपको तो 1 टॉफी मैंने पहले दे दी है। तो मैंने कहा, हाँ मेरे पास तो 1 है, तो मुझे 1 टॉफी अपने भाई के लिए चाहिए। माधवी दीदी खूब जोर से हंसी और उन्होंने हंसते हंसते मुझे 1 और टॉफी दे दी। तो ऐसा कुछ था मेरा स्कूल का पहला दिन। तो बच्चों, आपका स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? आपको कौन छोड़ने गया था स्कूल में, कुछ याद है? और आप स्कूल के लिए तैयार कैसे हुए थे? स्कूल जाने के लिए तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं, सुबह का नाश्ता करना पड़ता है, बस्ता संभालना पड़ता है और फिर हम स्कूल पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं जाते हैं या फिर जिनकी अभी उम्र नहीं हुई है स्कूल जाने की, लेकिन सबके मन में स्कूल की कोई ना कोई तस्वीर तो होती ही है। प्यारे बच्चों, आपका स्कूल का पहला दिन कैसा गुजरा, आप हमसे जरूर साझा कीजिए। तो क्यों ना हम स्कूल में चले। ठीक है, तो हम चलते हैं एक स्कूल में। ये स्कूल पता है किसका है? ये स्कूल है कल्याणी का। कल्याणी कौन? वही कल्याणी जो मेरे पड़ोस में रहती हैं। छोटी सी चुलबुली सी कल्याणी हमेशा इधर उधर न जाने कहां कहां भागती रहती हैं। कहीं टिककर बैठती ही नहीं है। उनकी माँ को ये लगता है कि कल्याणी जब स्कूल जाएंगी तो क्लास में ये बैठेंगी कैसे। पर कल्याणी को स्कूल जाकर खूब मजा आया, क्योंकि दीदी ने कभी टोका ही नहीं कि तुम इधर उधर क्यों दौड़ रहे हो। दीदी ने पता है क्या कहा बच्चों से, कि सारे बच्चे जाकर मैदान में खूब खेलो, जिसको जो करना है वो करो, दौड़ो भागो, एक दूसरे के पीछे दौड़ो, एक दूसरे को पकड़ो, स्टापू खेलो, जो खेलना है वो खूब मजे से खेलो।
मैंने तो ऐसा स्कूल कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं तो अपने स्कूल को ही देखकर ये बात कहूंगी ना, लेकिन मुझे मालूम है बच्चों, आपका स्कूल बहुत अच्छा है। वहाँ खेलने की तरह तरह की चीजें हैं जिनसे आप खेलते हैं। झूले भी तो हैं आपके स्कूल में। ये बात तो किसी ने मुझे बताई ही नहीं, लेकिन मुझे तो सब पता है कि आपके स्कूल में क्या क्या है। आपके स्कूल में झूले हैं, आपके स्कूल में खूब सारी खेलने की चीजें हैं, एक खूब बड़ा सा मैदान है, और कल्याणी ने तो मुझे ये भी बताया कि एक ऐसा बड़ा सा कमरा है जहां पर खूब सारे शीशे लगे हैं देखने के लिए, आईने लगे हैं, और हारमोनियम है, तबला है, सितार है, ड्रम है, और हम खूब नाचते और गाते हैं। तो कल्याणी ने अपने स्कूल का पहला दिन कैसे बिताया पता है बच्चों? नहीं पता? तो जो मुझे कल्याणी ने बताया वो मैं आपको बता देती हूँ। तो कल्याणी जब अपने पापा के साथ स्कूल पहुंची तो नंदिनी दीदी ने कहा, कल्याणी आपका ही नाम है ना? कल्याणी ने नंदिनी दीदी की तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? उसके बाद नंदिनी दीदी ने कल्याणी का हाथ पकड़ा और वो उसे प्यार से क्लासरूम में ले आई। पता है क्लासरूम में और क्या क्या था? क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। और क्या कर रहे थे बच्चे? सारे बच्चे आपस में खूब हंस हंस के बातें कर रहे थे, एक दूसरे का नाम पूछ रहे थे। आप जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो आप भी तो नाम पूछते हैं। तो सारे बच्चे एक दूसरे का नाम पूछ रहे थे, नाम जान रहे थे, कौन कहाँ रहता है ये भी पूछ रहे थे, और वो कहाँ रहते हैं अपने बारे में बता रहे थे। तो कल्याणी ने सारे बच्चों को देखा और सारे बच्चों ने कल्याणी को देखा। सारे बच्चों ने तालियां बजाई कल्याणी के आने पर। तो कल्याणी बहुत खुश हुई और कल्याणी जाकर बैठ गई बबली के पास। बबली उनके पड़ोस में रहती थी। कल्याणी ने बबली को देखा और बबली ने कल्याणी को देखा। तो बबली ने कहा, कल्याणी तुम किसके साथ आई हो? कल्याणी ने कहा, मैं अपने पापा के साथ आई हूँ। अच्छा, तो अंकल आपको छोड़ने आए हैं स्कूल? कल्याणी ने कहा, हाँ। तो क्या वे चले गए? मुझे मालूम नहीं है, मुझे तो नंदिनी दीदी क्लास में ले आई थी, शायद चले गए हो, उन्हें ऑफिस भी तो जाना है। देखो कल्याणी, हमारी क्लास कितनी अच्छी है, तुमने देखा इस क्लास में कितनी सारी किताबें हैं? तो बच्चों, उस क्लास में ढेर सारी किताबें रखी हुई थी, तरह तरह की किताबें, रंगीन चित्रों वाली किताबें, और कहानियों की किताबें, कविताओं की किताबें, और कुछ किताबें ऐसी थी जिसमें कोई कहानी कविता तो थी ही नहीं, केवल चित्र ही चित्र थे, केवल तस्वीरें ही तस्वीरें थी। और मुझे तस्वीरों वाली किताबें बहुत पसंद आती हैं। तो सारे बच्चे नंदिनी दीदी को घेर कर बैठ गए। अच्छा सोचिए बच्चों, आगे क्या हुआ होगा? नंदिनी दीदी ने कोई पाठ शुरू किया होगा पढ़ाने के लिए, जैसा आमतौर पे होता है? नहीं, नंदिनी दीदी की क्लास में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नंदिनी दीदी ने सब बच्चों को अपने पास बुलाया, सबका एक एक करके नाम पूछा और फिर उन्होंने अपना नाम बताया। तो इस तरह से बीत रहा था हमारे स्कूल का पहला दिन। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कूल में तो पढ़ाई लिखाई होती है, लेकिन इस क्लास में तो कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है बच्चों। नंदिनी दीदी ने सब बच्चों से पूछा, उन्होंने बच्चों की पसंद पूछी कि वे आज क्या करना चाहते हैं। हमेशा नंदिनी दीदी ऐसे ही करती हैं, वे बच्चों से ही पूछती हैं कि अच्छा बताओ हम क्या करें आज। तो बच्चे बताते हैं, नंदिनी दीदी आज हम कोई गीत गाएं। तो बच्चों, नंदिनी दीदी ने सब बच्चों को एक गीत सुनाया।
तो हम भी सुने वो गीत? ये गीत कुछ ऐसा था।

गए। कैसा लगा गीत आपको? ये गीत तो मुझे लगता है सब बच्चों ने सुना होगा। नंदिनी दीदी ने सब बच्चों के साथ ये गीत गाया और बच्चों ने भी नंदिनी दीदी के साथ इस गीत में खूब आनंद लिया, खूब मजे किए। और पता है उसके बाद जॉन ने नंदिनी दीदी से क्या कहा? जॉन ने कहा, दीदी दीदी अब हम एक और गीत गाएंगे। अच्छा बताओ कौन सा गीत गाएंगे? वही जो आपने पहले उस दिन सुनाया था। मैंने कब सुनाया था? नन्नी दीदी आपको याद ही नहीं आ रहा, जब आप मुझे स्कूल के बाहर मिली थी तो एक गीत गुनगुना रही थी, वही गीत सुना दीजिए ना। तो नंदिनी दीदी ने अपने दिमाग पे जोर डाला और सोचा उन्होंने कि मैंने कौन सा गीत गाया था, मैं कौन सा गीत गुनगुना रही थी। तभी नंदिनी दीदी को वह गीत याद आ गया। तो बच्चों, नंदिनी दीदी ने बच्चों के साथ मिलकर एक और गीत गाया, तो लीजिए सुनिए आप वह गीत।

0: कैसा लगा आपको गीत? भाई मुझे तो बहुत मजा आया। तो मुझे मालूम है कि हमारे नन्हे मुन्ने श्रोताओं को भी यह गीत बेहद पसंद आया होगा। आप भी ऐसे गीत गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। देखिए भाई, गाना हो तो जी भर के गा लीजिए। अब उसमें सुर है, लय है, ताल है, इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस आप तो जी भर के गाइए, खूब मजे से गाइए, आनंद के साथ गाइए। अब जब हम अपने दिल से गाते हैं गाना तो वो सबको पसंद आता है, पर हम तो अपने लिए गाते हैं ना गाना, तो बस आपको जो गीत आता है आप गुनगुनाइए। अभी ये गीत खत्म ही हुआ था तो रूबीना ने कहा, नंदिनी दीदी क्या आप एक और गीत सुना सकती हैं? तो पता है बच्चों क्या हुआ, नंदिनी दीदी ने कहा ठीक है हम एक और गीत गाते हैं। तो फिर सब ने मिलकर एक और गीत गाया और ये गीत आप भी सुनिए।
1: घंटी बजती तबला बोले, घुंघरू छनके

0: तो कैसा लगा आपको ये गीत?
1: अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत पसंद आया। तो बस गीतों के सहारे ही आज स्कूल का पहला दिन बीत रहा था। तभी अचानक अमरजीत की नजर गई दरवाजे पर। पता है वहाँ कौन था? वहाँ एक छोटी सी बिल्ली झांक रही थी। कहाँ? अरे भाई, क्लास के अंदर। लेकिन ये बिल्ली क्यों आई क्लास के अंदर? क्लास में तो कोई चूहा नहीं था। कल्याणी ने कहा कि मुझे लगता है ये बिल्ली भी गाना सुनने आई है, तो इस बिल्ली को भी गाने का आनंद लेने देते हैं। तो बच्चों, बिल्ली झांक रही थी, सब बच्चों की नजर नंदिनी दीदी की तरफ थी, लेकिन कल्याणी की नजर कहाँ थी? उस छोटी सी बिल्ली पर। छोटी सी बिल्ली गीत खत्म होते ही भाग गई। तभी दीपक उठा और वह कहानियों की किताब के पास चला गया। उसने अपनी पसंद की खूब सारी कहानियों की किताबें देखी और एक किताब उठाकर वह नंदिनी दीदी के पास ले आया। अच्छा सोचो बच्चों, दीपक ने किताब क्यों उठाई और उसने वह किताब नंदिनी दीदी को क्यों दी होगी? सोचिए, क्यों दी होगी आखिर किताब उन्होंने नंदिनी दीदी को? बिल्कुल सही, आपने एकदम सही पहचाना। दीपक दरअसल वह कहानी सुनना चाहते थे नंदिनी दीदी से। तो नंदिनी दीदी ने कहा, ठीक है, अब हम गीत के बाद एक कहानी कहते हैं। और फिर नंदिनी दीदी ने बहुत मजे से एक कहानी सुनाई। कहानी सुनते सुनते सब हूं हूं कर रहे थे। नंदिनी दीदी ने कहानी कहना शुरू किया। एक गांव था, गांव में एक किसान रहता था, किसान के दो बच्चे थे, वे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, बस नंदिनी दीदी कहती जा रही थी कहानी और सारे बच्चे हुंकारा भर रहे थे। ये हमारी आदत ही पड़ जाती है, जब हम कहानी सुनते हैं तो मुंह से ये निकल ही जाता है। इसका मतलब ये भी था कि सारे बच्चे बहुत ध्यान से नंदिनी दीदी की कहानी सुन रहे थे और कोई बच्चा सो नहीं रहा था। सोचिए, जब कोई बच्चा सो जाएगा तो वह हुंकारा कैसे भरेगा, और जब आवाज नहीं आएगी तो नंदिनी दीदी को यह पता चल जाएगा कि कौन बच्चा कहानी नहीं सुन रहा और उसे नींद आ गई। लेकिन आप सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम सोते हैं कहानी सुनते हैं और कहानी सुनते सुनते हम गहरी नींद में सो जाते हैं, और कुछ बच्चे तो खूब जोरदार से खर्राटे मारना शुरू हो जाते हैं तो दादी नानी को पता चल जाता है कि बच्चा सो गया। लेकिन स्कूल में ऐसा क्यों होता है कि हमसे ये उम्मीद रखी जाती है कि जब हम कहानी सुने तो बहुत अलर्ट होकर सुने, अटेंटिव होकर सुने, हुंकारा भरे और सोए नहीं। लेकिन अगर कहानी सुनते सुनते किसी को नींद आ जाए तो कोई बात नहीं, तो नींद आनी थी तो हमें आ गई। इसका मतलब है कहानी बहुत अच्छे तरीके से सुनाई जा रही है। तो बच्चों, स्कूल के पहले दिन यही सब कुछ हुआ। तो आपको याद है स्कूल में क्या क्या हुआ? मेरे स्कूल में नहीं, कल्याणी के स्कूल में। हम तो कल्याणी की बात कर रहे थे ना, तो फिर सोचिए कि कल्याणी का स्कूल का पहला दिन कैसे बीता। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले कल्याणी अपने पापा के साथ स्कूल गई। तो फिर उन्हें कौन मिला? उन्हें मिली नंदिनी दीदी, वही नंदिनी दीदी जो कक्षा 1 को पढ़ाती हैं। फिर नंदिनी दीदी कल्याणी को क्लास में लेकर आई।

0: अब बताइए बच्चों, क्लास में क्या था?
1: क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे।
0: अच्छा, तो बताइए बच्चों कि बच्चे क्या कर रहे थे?
1: शाबाश, सारे बच्चे आपस में हंस बोल रहे थे, एक दूसरे का नाम पूछ रहे थे।
0: तो बच्चे नाम क्यों पूछ रहे थे?
1: अरे भाई, बच्चे पहली बार मिले थे एक दूसरे से, इसलिए परिचय और दोस्ती बढ़ा रहे थे।
0: फिर क्या हुआ क्लास में?
1: फिर सब बच्चों ने फरमाइश की नंदिनी दीदी से कि हम गीत गाएंगे, आप हमें अच्छा सा गीत सुना दीजिए। तो फिर नंदिनी दीदी और बच्चों ने मिलकर गीत गाया।
0: अच्छा, फिर नंदिनी दीदी ने कहानी क्यों सुनाई, याद है आपको?
1: प्यारे बच्चों, नंदिनी दीदी ने दीपक की कहानी सुनाई। वही दीपक जो कहानी की किताब उठाकर लाए थे, उन्होंने नंदिनी दीदी को किताब दी और कहा कि दीदी हमें ये कहानी सुना दीजिए। तो फिर नंदिनी दीदी ने बच्चों को कहानी सुनाई और इस तरह से आज का स्कूल का पहला दिन कल्याणी का समाप्त हो गया।
0: अब आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत जल्दी स्कूल का दिन पहला बीत गया।
1: ऐसा नहीं है, हमने तो आपको सिर्फ नंदिनी दीदी के साथ बिताया हुआ स्कूल का पहला दिन बताया है। अभी तो स्कूल में बहुत कुछ हुआ। टन टन टन टन टन टन घंटी बजी और सब बच्चों ने अपना अपना टिफिन खोला और भोजन किया। जो बच्चा भोजन नहीं लेकर आया था, सारे बच्चों ने अपने हिस्से का भोजन उनको देना शुरू किया। उसमें एक बच्चा था नंदू। तो नंदू आज भोजन लेकर नहीं आया था, तो सब बच्चों ने नंदू से कहा, ये लो नंदू, तुम मेरे साथ भोजन कर लो। कल्याणी ने कहा, अमरजीत ने कहा, रोहित ने कहा, बबली ने कहा, दीपक ने कहा और झुमके ने कहा। तो नंदू सबके साथ भोजन करने लगे और फिर सब बच्चों ने अपने हाथ धोए, खाना खाया और फिर उसके बाद वे खेलने के लिए चले गए। खेलते खेलते एक घंटा बीत गया और फिर टन टन टन टन टन टन की आवाज आई और सारे बच्चे वापस क्लास में आ गए। यहाँ क्या देखते हैं, क्लास में एक बहुत बड़ी सी दरी बिछी हुई है और एक हारमोनियम है, तबला है, नंदिनी दीदी के साथ दो और नए लोग आए हैं।
0: बच्चों, आपको पता है ये नए लोग कौन थे?
1: नहीं पता? तो मैं बता रही हूँ कि दो नए लोग थे उसी स्कूल के संगीत शिक्षक। एक का नाम था गर्वित और दूसरे का नाम था मयंक। तो गर्वित और मयंक ने, एक ने हारमोनियम संभाला और एक ने तबला संभाला। और फिर नंदिनी दीदी ने कहा कि आज हम सिर्फ गीत गाएंगे। तो सारे बच्चे मिलजुल कर गीत गाने लगे, लेकिन इस बार गीत गाने के लिए लय ताल का सारा सामान क्लास में मौजूद था। तो सब बच्चों ने मिलकर तबले की ताल पर गीत गाए और पता है बच्चों क्या हुआ? गीत गाते गाते बहुत सारे बच्चे उठे और नाचने लग गए और इसके बाद जो धमाल मचा क्लास में, सारे बच्चे गीत पर नाचने लगे। नंदिनी दीदी देखकर बहुत खुश हुई, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि आज बच्चे इतना खुश हैं। तो उन्होंने पता है मनी मन क्या सोचा? उन्होंने बच्चों मनी मन ये सोचा कि ये सारे बच्चे हमेशा ऐसे ही स्कूल में हंसते रहें, गाते रहें, खुश रहें और ऐसे करते करते वे धीरे धीरे पढ़ना लिखना भी सीख जाएंगे। तो ऐसा था कल्याणी का स्कूल का पहला दिन। आपको कल्याणी के साथ स्कूल का पहला दिन बिताया हुआ कैसा लगा? मुझे मालूम है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप भी कल्याणी के स्कूल की बातों को अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, दादी को, नानी को, सबको बताइएगा कि कल्याणी का स्कूल का पहला दिन कैसा रहा। ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं और फिर हम आपके साथ दोबारा बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को उषा दीदी का नमस्कार।
2: तो साथियों, अभी आपने सुनी कक्षा एक की ध्वनिशाला। विषय विशेषज्ञ थी प्रोफेसर उषा शर्मा, NCERT। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: ताजा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
5: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
2: शारदा। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर,

यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: तुम रहो स्वस्थ और सुरक्षित, हमको यही बात की चिंता सताई।
1: अरे कौन है वो जो हमको समझाए, कैसे करें हम इनकी देखभाल?
2: अरे चिंता ना करो अम्मा, मुन्नी अस्पताल में हुई है, इसलिए 7 बार हम इस घर के चक्कर लगाएंगे, नहीं रहेगी कोई कसर अधूरी। मुन्नी की जांच मैं करूंगी पूरी, जांचूंगी वजन और तापमान, रखूंगी आंख नाक और त्वचा का भी ध्यान, कितनी बार कब और कैसे अपना दूध तुम पिलाओगी ये मैं तुम्हें बतलाऊंगी। मुन्नी को छूने से पहले हर बार कैसे धोना है हाथ ये भी सबको सिखलाऊंगी। छोटी सी है मुन्नी, इसे तुम 7 दिन तक बिल्कुल मत नहलाना, सीने से लगा के रखना और कपड़े खूब पहनाना। 15 है खतरों के लक्षण, रखना तुम इन सबका ध्यान, देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना, तुरंत मुन्नी को SNCU ले जाना।
3: करती है पते की बात, ये तो सुघर सयानी है, बच्चे के होने पर ये तुम्हारे घर आनी है।
2: 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42वें दिन मैं बच्चे की जांच करने आऊंगी, क्योंकि बच्चे की नियमित जांच से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्ते जी, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं, स्मार्ट के साथ मिलकर हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं और आप लंबे समय से उस कार्यक्रम को सुन भी रहे हैं, जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। अब सेहत सही, आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य ठीक हो तो उसके लिए आपको हम बताते रहते हैं कि भाई आपको बहुत सारी जो बीमारियां हैं, मच्छरों से हो रही हैं या अन्य किसी कारण से होती हैं, उनसे आपको कैसे बच के रहना है। साथ ही साथ आपका जो खान पान है वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आपको बताते रहे हैं और बताते रहेंगे। लेकिन आज एक खास दिन है और आप सबको भी पता होगा कि आज 21 जून है और आज के दिन हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और योग के बारे में हम बात कहें तो ऐसा जो योग के जानकार हैं उनका ये कहना है कि जो लोग योग करते हैं, साथ ही साथ अच्छा खान पान उनका रहता है, तो वो अपनी बीमारियों को भी जल्दी ठीक कर लेते हैं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। लेकिन योग क्या है, कैसे इसकी शुरुआत करें, कैसे ये हमको फ़ायदा पहुंचा सकता है और हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए योग के साथ साथ, इन सब बातों की विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरेंद्र गौतम जी। आप फाउंडर हैं पंचोपचार वेलनेस रिजोर्ट कांडाताल उत्तराखंड के। तो सबसे पहले डॉक्टर हरेंद्र गौतम जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया।
1: तो डॉक्टर गौतम जी, जैसा कि हमने अभी अपने जो लिसनर हैं उनको बताया और आपको भी पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है
2: जी,
1: तो क्या कहना चाहेंगे आप?
2: सबसे पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 21 जून को उन्होंने एक पर्व के रूप में इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में मनाने के लिए शुरुआत कराई और एक इनिशिएटिव लिया। और बात करते हैं हम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के, और योग क्योंकि किसी धर्म से नहीं इसको जोड़ा गया है, किसी जाति से नहीं जोड़ा गया है, किसी चीज से नहीं जोड़ा गया है, तो योग जो है हम सब के लिए है। योग को अगर हम सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करें और इसके महत्व को समझने की कोशिश करें तो योग हमें अपने आप से जोड़ने के लिए प्रेरित करता है, अपने आप को जानने की प्रेरणा देता है। जब हम सही दिशा में योग कर रहे होते हैं तो हम स्वयं के साथ प्रसन्न रहना चालू कर देते हैं, एक हम जॉयफुल नेचर में चले जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति इस नेचर में जाता है तो ऑटोमेटिकली जो हम बात करें कि समाज में कई सारी विकृतियां हैं, कई सारे परेशानियां चल रही हैं, वो धीरे धीरे घटना चालू हो जाती हैं। तो योग पूरे पृथ्वी पर लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य, जिसकी बात करें हम अगर मेंटल हेल्थ की, उसमें हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। आज लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, और हमें इन दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो योग हमें एक बैलेंस देता है और हम अपने जीवन को भी बैलेंस करके खुशियों के साथ, स्वस्थ एक जीवन के साथ आराम से जी सकते हैं।
1: बिल्कुल, आपने योग के बारे में कहा। देखिए, आम जन की यही सोच रहती है कि कोई भी काम करें तो उससे उनको फायदा क्या मिलने वाला है, तो यही सोच योग के साथ भी है कि चलिए हम योग करते हैं, शुरुआत कर दें, तो क्या क्या उनको फायदे मिल सकते हैं?
2: सबसे बड़ा फायदा उनको जो होने वाला है, उनका पैसा बचने वाला है
1: जी। वो कैसे?
2: हर इंसान पैसा कमाता है इस सोच के साथ कि वो एक अच्छा जीवन जिएगा, उसमें अपने घर की सारी सुख सुविधाओं को जोड़ेगा, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देगा, घर की सारी जरूरतों को पूरा करेगा। अनजाने में उस लग्जरी के ट्रैप में जब वो चला जाता है, उस पैसे को जब वो अपनी लग्जरी के साथ जोड़ता है, वहीं समस्या चालू हो जाती है। तो जब हम ये समझ जाएंगे इस पैसे को हमें कैसे सदुपयोग करना है, तो हम बहुत ज़्यादा सेविंग कर पाएंगे। सेविंग का मतलब आप समझ रहे हैं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बीमार होंगे तो वो पैसा दवाइयों में जाएगा।
1: बिल्कुल,
2: और खाली आप अपने पैसे से दवाइयाँ जो खा रहे हैं डॉक्टर्स के पास या हॉस्पिटल्स में जो आप जा रहे हैं, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि आप ठीक नहीं हो रहे हैं। आप सिर्फ अपना टेम्परेरी इलाज करा रहे हैं और जैसे ही आपको थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा आप थोड़े दिन बाद फिर से उसी पोजीशन में चले जाएंगे और बार बार ये लाइफ में रिपीटेशन चलता रहता है। अगर एक आदमी अपने जीवन में हर साल बीमार पड़ रहा है तो लाखों रुपए उसके खर्च हो रहे हैं, और जब वो रेगुलर बीमार पड़ रहा है तो किसी ना किसी दिन वो एक गंभीर बीमारी के का शिकार भी हो जाएगा। तो हमें ये समझना है कि योग से हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, हमें उसको किस तरीके से अपने जीवन में उतारना चाहिए, कैसे हम उसको जोड़ सकते हैं। तो इसका सिंपल तरीका मैं यही बोलूंगा कि आप किसी अच्छे योग शिक्षक को अपने आसपास ढूंढें, उनसे आप गाइडेंस लें। ऑनलाइन भी हमारे सेवाएं चलती रहती हैं, क्लासेस चलती रहती हैं, कंसल्टेशन भी होता है, हम उसके माध्यम से भी लोगों को योग की जानकारी देते हैं और उनको किस तरीके से लाइफ में योग को जोड़ना चाहिए वो भी बताते हैं, क्योंकि हर इंसान की अलग जरूरत है। एक इंसान पतले होने के लिए योग कर रहा है, एक इंसान बीमारियों से बचने के लिए योग कर रहा है, किसी इंसान को कोई हेल्थ इश्यू हो गया है उसको उसे रिकवर करने के लिए योग कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग जरूरतें हैं, कोई मेंटल पीस के लिए योग करना चाहता है, लेकिन अगर हम सिंपल तरीके से समझें कि योग जब आप करते हो तो आप हर तरीके से ठीक होते हो, हर बीमारी वो रिकवर करता है। मतलब एक आदमी काम एक ही कर रहा है, लाभ अनेक मिलना चालू हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, तो हमारे कार्यक्रम का भी नाम यही है, सेहत सही लाभ कही। डॉक्टर साहब, आपसे बातों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं।
2: जी,

0: नमस्ते जी, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। अपने सुनने वालों को एक बार फिर से याद दिला दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और खासकर योग पर हम बात कर रहे हैं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरेंद्र गौतम जी। आप फाउंडर हैं पंचोपचार वेलनेस रिजोर्ट कांडाताल उत्तराखंड के। डॉक्टर साहब, आपने लाभों की बात करी कि योग करने से कितने फायदे हैं, तो अपने जो श्रोता हैं, हमारे जो लिसनर हैं, उनको एक बार फिर से याद दिला दें कि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि जब कोई इंसान योग करता है तो किस तरह से वो अपने पैसे बचा सकता है। और पैसे तभी बचते हैं कि जब आप बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हैं तो घर में डॉक्टर साहब एक ही नहीं, कभी कभी तो पूरा घर ही बीमार हो जाता है। और बहुत से घर हमारे भारतीय समाज में ऐसे हैं कि जहाँ पर कमाने वाला एक है लेकिन सबका खर्च वही चला रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे में बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है, बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं कि अगर जो ही हमारे घर का मुखिया या जो भी करता धरता है उनको कुछ हो जाता है, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो एक तो बीमारी होगी, उसको बीमारी को कवर करने में पैसा की जरूरत होती है, और दूसरा जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है वो एक अलग से होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब ने हमें समझाई है कि योग के जरिए हम कैसे अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। जब हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम डॉक्टर साहब के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें कोई बीमारी नहीं होगी, और जो बीमारी पर खर्च होने वाला जो पैसा है वो बचेगा और हम उसका कहीं पर भी सदुपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज हमारे और आपके बीच जो चर्चा चल रही है और हमें जो सुनने वाले हैं, हो सकता है वो सुन के आज से ही योग शुरू करना चाहें, तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं योग की, कैसे अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं?
1: जी जी, मैं जरूर ये दिशा देने की कोशिश करूंगा लिसनर्स को, क्योंकि आप ये मान लीजिए कि अच्छी शुरुआत कभी भी की जा सकती है, कभी भी किसी चीज के लिए हम लेट नहीं है, जब हम जाग जाएं तभी सवेरा है। बचपन से इस कहावत को सुनते आ रहे हैं। आपने पहले कभी योग नहीं किया,
0: हाँ,
1: कोई फर्क नहीं पड़ता। और योग जो है कितना मतलब सरल और सुंदर एक अभ्यास है और एक ऐसी प्रैक्टिस में लेके जाता है जहां बिल्कुल सामान्य प्रैक्टिस से शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए किसी आपको बहुत एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है कि पहले मैं ये सीख लूं तब मैं योग कर पाऊंगा। कई सारे कंफ्यूजन लोगों को रहते हैं। आप सिंपल आप सांसों के माध्यम से योग चालू कीजिए। आप डेली 15 से 20 मिनट प्राणायाम चालू कर दीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम चालू कर दीजिए। आपको अनुलोम विलोम नहीं आता, ये क्या होता है? तो आप सिंपल आप बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और लंबी गहरी सांस भरना चालू कर दीजिए। यही आपके बॉडी में इतना चमत्कारी बदलाव लेकर आएगा। और इसका बदलाव आपको कंसिस्टेंसी बस मेंटेन करनी है। आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन इसको लगातार करें, आप फील करेंगे आपकी एनर्जी ठीक होने लगी, आपका जो है एक पॉजिटिव नजरिया आपको मिलने लगा, आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो योग को करने के लिए आप, मैं आपको बताया कि आप अगर अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, योग शिक्षक से जुड़िए किसी। आजकल हर जगह बहुत आसानी से योग शिक्षक अवेलेबल हैं। ऑनलाइन का भी टाइम चल रहा है, आप ऑनलाइन भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें बहुत कम खर्चा होता है। तो और आसपास भी कई सारे योग सेंटर हैं जहां पे जाकर भी आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हर इंसान की कुछ वीकनेस होती है। और जनरली एक वीकनेस तो मैंने सबके साथ सुनी है कि हम योग तो स्टार्ट करते हैं बट कर नहीं पाते, हम खुद से नहीं कर पाते। तो हम कह रहे हैं कि आप खुद से मत करो, आप किसी संस्था को ज्वाइन करो, वहां आपको थोड़ा सा एक सर्कल मिलेगा, एक सोसाइटी के लोग मिलेंगे, तो आपका मन भी लगेगा। और जब एक दूसरे से हमें मोटिवेशन भी मिलता है, एक सोशल दायरा भी बढ़ता है हमारा, तो और बहुत कुछ चीजें एक्सचेंज होती हैं जब हम किसी जगह जाते हैं। तो आपका एक तो एक सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, आपको वहां से अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी स्वास्थ्य के बारे में, योग के बारे में, और आप लॉन्ग टाइम तक कंसिस्टेंटली उस प्रैक्टिस में जा सकते हैं, जिससे कि आपको रियल फायदा होने वाला है। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सुनते ही खुद से चालू कर देते हैं, 2-3 दिन करते हैं और फिर चीजें छूट जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप किसी को अपना हाथ पकड़ाएं। जीवन में मेंटोरशिप बहुत जरूरी है और हर एक छोटी से छोटी चीज का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में। बड़ी चीजों का महत्व कम है, छोटी चीजों का महत्व ज्यादा है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम करते हैं चलो कल से कर लेंगे, वो कल कभी नहीं आता, आपको आज से ही करना है। आप वॉक कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए और थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, जितना समय आपके पास है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में जाएंगे, आपको अंदर से भीतर से आनंद आने लगेगा, तो आपका प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, ये उसकी पहचान है योग करने के बाद। लोग अपने काम में परेशान रहते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, कोई उनसे बोलता है तो गुस्सा आता है। लोग खाना खा रहे हैं उनको एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है। लोग घर पे आके बात कर रहे हैं तो किसी से, बच्चे से, फैमिली में बात करने का मन नहीं कर रहा है। ये हमारे सिम्टम्स हैं कि हम बीमार हैं, हमें एक अच्छी हेल्थ की जरूरत है। लेकिन क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है हमारी, हम उसमें ट्रैप हो गए हैं। मतलब हम हर समय कंप्लेंट्स करते रहते हैं और थके रहते हैं, हम अपनी चीज़ों से नहीं भाग सकते, उसे स्वीकारना पड़ेगा। तो योग एक ऐसा माध्यम है, मैंने शुरुआत में ही बोला कि जो कि हमें स्वयं से जोड़ता है। जब हम स्वयं से जुड़ते हैं तो पूरे परिवार के साथ जुड़ना चालू कर देते हैं। तो स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, योग कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, किसी के साथ जुड़कर कीजिए, तो आपको बहुत आनंद आने वाला है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि शुरुआत आप अल्प समय से कीजिएगा, फिर उसको आप बढ़ाते रहिए। डॉक्टर साहब, एक और बात यहाँ पे निकल के आती है कि जैसे आपने तो बता ही दिया किस तरह से योग की शुरुआत कर सकते हैं, आपके आसपास कोई ट्रेनर हैं या योग गुरु हैं उनके साथ में जा करके शुरुआत कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे निकल के आती है खान पान की, जो लोग योग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो अनुकूल समय कौन सा होता है योग करने के लिए, और साथ ही साथ खान पान है वो कैसा होना चाहिए?
1: बिल्कुल, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पे आपने ये सवाल जो मुझसे पूछा है। भोजन का बहुत बड़ा रोल है, हम जैसा खाते हैं हम वैसे ही बनते हैं, है ना, जैसा हम अन्न खाएंगे वैसे ही हम बनेंगे, वही हमारी सोच से भी जुड़ा हुआ है, वही हमारे शरीर और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। तो मैं सिंपल जो बात बोलना चाहूंगा भोजन को लेकर, हमें अपनी लाइफ में कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम स्वीकारते नहीं हैं और हम एक ऐसी पोजीशन में मनोस दशा में रहते हैं जहां पर लाइफ आगे बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, लेकिन हम चीजों के साथ वहीं अटके हुए हैं कि पहले तो मैं ऐसे खा लेता था, पहले तो मैं ये करता था, मुझे कुछ नहीं होता था।
0: बिल्कुल,
1: अरे भाई वो 22 साल 25 साल 30 साल की उम्र में हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर के जो मशीनरी है, ऑर्गन्स है, उनकी फंक्शनिंग अलग थी, उनकी पावर अलग थी। इसको हम लॉजिकली ऐसे समझ लें जैसे कि हमने शोरूम से गाड़ी निकाली है, हम उस गाड़ी का कितना ध्यान रखते हैं, सर्विस हमें 10,000 रुपये करानी है हम पहुंच जाते हैं लेकर, इंश्योरेंस हमें कराना है हम पहुंच जाते हैं लेकर। जिस शरीर को ईश्वर ने दिया है, जिसको हम भोग रहे हैं, उस पेट के अंदर हम क्या क्या नहीं डाल रहे, क्या हम उसकी कभी सर्विस कराते हैं? नहीं कराते, हम सिर्फ डाले जा रहे हैं। निकलने का रास्ता जो है वो हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि हम जो खा रहे हैं उसको कितना पार्ट उसका बॉडी में लग रहा है और कितना निकल रहा है। तो धीरे धीरे धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है और हम बीमारियों में घिर जाते हैं। तो भोजन में जब हम एक 30 स्लैब में हैं तो हमारा भोजन थोड़ा सा, उसमें हम 3 टाइम का भोजन भी कर लेते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि हम फिजिकली बहुत एक्टिव हैं। जब हम 40s में जा रहे हैं तो हमारी मेटाबॉलिज्म चेंज हो रही है। तो मैं बोलूंगा कि आप भोजन को 2 टाइम पर लेकर आओ, आपका ब्रेकफास्ट और आप लंच करो। डिनर आपका 7 बजे से बाद नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 8, इससे पहले आपको ले लेना है। क्योंकि ये बहुत ही कैटेगराइज्ड विषय है इसलिए मैं इस पे मतलब ये सामान्य बात सबके लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज ये हर इंसान के साथ अलग अलग एप्लीकेबल होती है, हर इंसान के साथ उसको अलग तरीके से कस्टमाइज करके बताना होता है तभी उसको लाभ मिलता है। लेकिन एक जनरल वे में स्वास्थ्य रहने के लिए जो बातें हैं मैं वही बता रहा हूँ। 40s के बाद आप कोशिश करो कि आपका 2 मील ही होनी चाहिए, आप ब्रेकफास्ट लो, ब्रेकफास्ट आपका न्यूट्रिशनल फुल होना चाहिए। हम लोग जो पराठे हैं, ब्रेड है, जो जनरल ये खाते हैं, इससे हमें अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। हमारी बॉडी में जितना हो सकता है हम रॉ फूड खाएं, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सलाद हो गए, ये सब चीज़ें खाएं। खाना खाने से पहले भी सैलेड जाना चाहिए। हमें ये तय करना है कि आज मेरी फिजिकल रिक्वायरमेंट, फिजिकल एक्टिविटी कितनी हो रही है। मैं पूरे दिन में 2000 कैलोरी खा रहा हूँ, मतलब मैंने 2000 कैलोरी लिया तो क्या मैं उस कैलोरी को बर्न कर पा रहा हूँ? अगर वो बर्न सिर्फ 1000 हो रही है, 1500 हो रही है, तो जो 500 और 1000 कैलोरी बच रही है और वो डेली बच रही है तो वो धीरे धीरे स्टोर हो रही है और वही बीमारियां बना रही है। तो मैंने आज जितना कैलोरी लिया मुझे आज वो उतना बर्न करना है, ये कॉन्सेप्ट को मुझे बहुत आराम से समझना है और क्लियर करना है। इसके लिए कुछ भी कंफ्यूजन है उसको भी दूर कर सकते हैं आप किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से गाइडेंस करके, किसी योग टीचर से गाइडेंस लेकर आप इसके ऊपर चर्चा करके आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि मुझे क्या खाना चाहिए। हम लोग क्या है, पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, हम जिस अपब्रिंगिंग के साथ बड़े हुए हैं हम उसी पैटर्न को जिंदगी भर चलाते हैं। हम बचपन में पराठे खाते थे, हम 40 साल में भी पराठे खा रहे हैं। पराठे खाने में प्रॉब्लम नहीं है, कितना खाना है इसमें प्रॉब्लम है, कब खाना है इसमें प्रॉब्लम है, कैसे खाना है इसमें प्रॉब्लम है। तो कब, कैसे और कितना ये समझना जरूरी है, अदरवाइज हम उस ट्रैप का पार्ट बनेंगे। और फिर आज आप देख रहे हो कि दुनिया में, हिंदुस्तान में जितने हॉस्पिटल बन रहे हैं वो भी कम है, जितनी फार्मेसी कंपनियां और ये मेडिकल स्टोर हैं वो भी कम है, वहां मेला सा लगा रहता है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जबकि बीमारियों को बहुत ही आराम से समझा जा सकता है और उनको ठीक किया जा सकता है। और आपकी बीमारी आपके किचन में है, इस किचन को समझो और उस किचन को बदलो, नहीं तो आप तैयार रहो, जो हम किसी चीज में बचा रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, वही हमारा रियल जो है ना एक धन है। तो हम पैसे को वहां से बचा सकते हैं बीमारियों में खर्चा करने से, तो अपने किचन को हमें बदलने की जरूरत है, अपने शरीर को समझने की जरूरत है, जो कि योग हमें अच्छे से समझाता है कब कैसे कितना। तीन के को समझना है, तीन क को समझना है, आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कब कैसे कितना खाना चाहिए ये जरूर हमारे श्रोता आपकी बात सुनकर समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उसी अनुसार अपना जो जीवन है, जीवन की दिनचर्या है, उसको अपनाएंगे। और आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो हमारा स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है, और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है चाहे आपके पास कितना भी धन हो, वो भी आपके लिए सुखदायी नहीं बन सकता।
1: बिल्कुल सही है।
0: अपने सुनने वालों को एक बार फिर से याद दिला दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और खासकर योग पर हम बात कर रहे हैं, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरेंद्र गौतम जी। आप फाउंडर हैं पंचोपचार वेलनेस रिजोर्ट कांडाताल उत्तराखंड के। डॉक्टर साहब, आपसे बातों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं।

0: नमस्ते जी, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरेंद्र गौतम जी। डॉक्टर साहब, बात स्वास्थ्य की चल रही है, बहुत सारी बातें आज आपने हमारे श्रोताओं को बताई हैं और आपने ट्रैप की भी बात की थी। तो आजकल हम देखते हैं, आज का जो युवा है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, मोबाइल फोन के आदि हो चुके हैं। रात रात भर जागते हैं, कोई 3 बजे सो रहा है, कोई 1 बजे सो रहा है, फिर सुबह जगते हैं तो जब नींद पूरी नहीं होती है तो चिड़चिड़ापन रहता है और अपने माता पिता के साथ फिर उनका व्यवहार ऐसा हो जाता है। तो जो ये दलदल है मोबाइल फोन का, क्या योग के जरिए उससे छुटकारा पाया जा सकता है?
1: जी बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल पूछा है और ये एक ऐसा विषय है जिसपे मुझे लगता है कि हमें चर्चा करनी चाहिए और ये चर्चाएं मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही इग्नोर्ड वे में ये चीजें चल रही हैं। हमें होश नहीं है, हम बेहोशी में चीजों को देख रहे हैं, लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव है जो हमारी जनरेशन, हमारी अगली पीढ़ी पे जो पड़ रहा है, आने वाली पीढ़ी को जो खराब करेगा, बहुत भयानक तरीके से करेगा। मैं आपसे मतलब शशि कपूर जी ये बोलना चाहूंगा कि आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, बच्चों की कहीं कोई गलती नहीं है। हम बच्चों को डांटते हैं, हम उनको चिल्ला के बोलते हैं जाके अपने रूम में जाओ, पढ़ाई करो, यहाँ मत जाओ, वो मत करो। क्या हमने कभी सोचा है कि ये जो बच्चे हैं, इन्होंने जो चीज़ें आज सीख रहे हैं या ये जो एक्ट कर रहे हैं, क्या वो पहले से सीख कर आए थे? बच्चे को अगर आपको बदलना है तो स्वयं को बदलना पड़ेगा। आज सबसे बड़ी समस्या हो गई है पेरेंटिंग में, बच्चा पैदा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा लगता है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमने पूरी कर दी, क्या वो काफी है? आप अपने बच्चे को कितना प्रेम करते हैं, बहुत मोह है, बहुत प्यार करते हैं, और फिर वही बच्चा जब आगे चल के बीमार होता है या गलत मार्ग पर चला जाता है तो आप कितना परेशान होते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जो बच्चा जिस राह पे पहुंचा है या बीमार हुआ है या गलत मार्ग पे गया है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आप डॉक्टर्स के पास लेकर जा रहे हैं बच्चों को काउंसलिंग कराने के लिए, क्या आपको लगता है कि बच्चों की काउंसलिंग की जरूरत है? काउंसलिंग तो आपकी जरूरत है। आपको पता ही नहीं है कि माता पिता का सही रोल क्या होना चाहिए, बस एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं कि बच्चा होना चाहिए। अरे भैया, आपने अगर बच्चा अपने मतलब परिवार में आप बच्चे को लेकर आ रहे हैं, जन्म दे रहे हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाओ। बच्चे कभी बोलने से नहीं सुधरते, बच्चे फॉलोअर होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, वो हमें देख रहे हैं, वो इतना डीपली देख रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। आपको लग रहा है मैं और आप बात कर रहे हैं लेकिन बच्चा खेल रहा है, वो आपके उसके कानों में सारी बातें जा रही हैं। कल वो हो सकता है आपको वो बातें बता भी दे कि आप वहां बैठकर ये बातें कर रहे थे। बच्चे इतनी गहराई से हमें ऑब्जर्व करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास, उनको बेस चाहिए आपको जवाब देने का। हम बच्चों को बोल रहे हैं जाके टीवी मत देखो, आप टीवी देख के खाना खा रहे हो। हम बच्चों को बोल रहे हैं जाओ अपने रूम में पढ़ाई करो, हम मोबाइल देख रहे हैं। आपको त्याग करना पड़ेगा, इसका कोई समाधान नहीं है, इसकी कोई काउंसलिंग नहीं है। आप सोचो बच्चे को हम सुधरवा देंगे डॉक्टर के पास काउंसलिंग करा के, इम्पॉसिबल चीज है। बच्चों को अगर सुधारना है तो स्वयं को बदलना पड़ेगा, खुद की एक्टिविटीज को बदलना पड़ेगा। मैं अपने बच्चे के बारे में बात करूं, मेरा बेटा 8 साल का है। 8 साल के बच्चे को, बहुत रेयर बच्चे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा ही बच्चा रेयर है, सभी बच्चे मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखकर खाना खा रहे होते हैं। मेरा बच्चा 8 साल का हो गया, उसको मोबाइल नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोन नहीं देखा या फोन नहीं चलाया या फोन के बारे में उसे जान, सब रही जानकारी है, लेकिन उसकी हर चीज की टाइमिंग फिक्स है। वो यूट्यूब भी देखता है तो उसको टाइम फिक्स है कि संडे को ही यूट्यूब उसको देखना है, 1 घंटा 2 घंटा। मोबाइल देखना है तो ट्रैवलिंग में हम कभी बाहर जाते हैं तो उसको मोबाइल मिलता है, अदरवाइज घर पर नहीं मिलता। मैं जब स्वयं खाना खाता हूं तो टीवी बंद होती है, मैं पालथी मार के जमीन पर बैठ के खाना खाता हूं, तो वो भी वही काम करता है। तो बच्चे को अगर मैं बोलूं नहीं तू ऐसे कर और मैं उल्टा कर रहा हूं, तो बच्चा खुद विरोधाभासी हो जाएगा कि यार ये मुझे कुछ और बोलते हैं, करते कुछ और हैं। तो हम बच्चों को कहीं ना कहीं अनजाने में, हम कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा खराब हो, लेकिन हम अनजाने में इतना गंदे तरीके से बच्चे को खराब कर रहे हैं जिसका मतलब जो अभिशाप है एक तरीके से, जो बच्चों को झेलना ही पड़ेगा आने वाले टाइम में, हम अपनी पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। हमें बदलने की जरूरत है, बच्चों को बदलने की जरूरत नहीं। आज मोबाइल, गैजेट्स, लैपटॉप, ये सब हमारे जीवन का बहुत बड़ा अंग बन चुका है, सबका। आज योगा आप बात करें स्कूलों में तो ऑनलाइन जो है ना, उनको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं घर पे, ठीक है, आप उनको बताओ, समझाओ, उसको देखने की तरीके बताओ। अब आप अपने आप को बचाने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा रहे हैं, ये गलत है। इससे बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो रहा है, फिजिकल विकास नहीं हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हीन भावना का भी शिकार हो जाएगा, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी शिकार हो जाएगा। बच्चे इंटेलिजेंट हैं, 90-95% मार्क्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनका एक सोशल प्लेटफॉर्म पे या मतलब जो सामाजिक एक दायरे में वो वहाँ पर बहुत कमजोर हैं, वो ठीक से किसी से बात भी नहीं करना चाहते, वो लोनली रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं मानसिक विकार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बच्चों को जितना हो सकता है उम्र के हिसाब से उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो, उनको जितना हो सकता है ग्राउंड में लेके जाओ, मिट्टी के साथ वो कनेक्ट हों, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो प्रोफेशनल फिजिकल एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करो। योग है बच्चों के लिए तो ढेर सारी चीज़ें हैं, वही योग है उनके लिए, लेकिन आपको एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उनको बाहर लेके जाना पड़ेगा, उनको वो प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, वो स्वयं नहीं ले सकते वो जिम्मेदारी, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि अपने आप को समझें, अपने आप को बदलें बच्चों के लिए जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनको आपने पैदा किया है, अदरवाइज आप इतना बड़ा गलत काम कर रहे हैं अनजाने में जिसका भुगतान आपको भी भुगतना पड़ेगा और आपने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसको भी भुगतना पड़ेगा। तो योग से स्वयं को जोड़ें और बच्चों को भी जोड़ें, यही योग दिवस की लोगों को हम प्रेरणा देना चाहते हैं, मोदी जी प्रेरणा देना चाहते हैं कि यही एक मात्र मार्ग है जो हमें बचा सकता है, अदरवाइज कोई चीज़ हमें नहीं बचा सकती, इसको समझना पड़ेगा। और ये बिल्कुल नेचुरल है, प्राकृतिक है, आपको प्रकृति के साथ जुड़ना है, यही योग है।
0: बिल्कुल बहुत सही कहा डॉक्टर साहब आपने, और जैसा आपने बताया कि बच्चे जो हमेशा है ना वो बड़ों को फॉलो करते हैं और वो जाने अनजाने बहुत सारी चीज़ें हैं वो अपने बड़ों से सीखते रहते हैं, उनको कॉपी करते हैं। तो हमारे जो भी बड़े हैं अगर वो अपने घर में योग करना शुरू कर देंगे तो बच्चे अपने आप योग करना शुरू कर देंगे। तो ज़रूर इन चीज़ों पर हमारे जो सुनने वाले हैं ध्यान देंगे। डॉक्टर साहब आपसे बातों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं
1: जी।

0: नमस्ते जी, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। अपने सुनने वालों को एक बार फिर से याद दिला दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और खासकर योग पर हम बात कर रहे हैं, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरेंद्र गौतम जी। आप फाउंडर हैं पंचोपचार वेलनेस रिजोर्ट कांडाताल उत्तराखंड के। डॉक्टर साहब, एक और बात यहाँ पे जानना चाहेंगे आपसे। योग की बात हम कर ही रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, तो कौन कौन सी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है योग करने से?
1: आप ये पूछिए कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो योग से ठीक नहीं हो सकती है। योग अपने आप में संपूर्ण है। हम बीमार पड़ते हैं अनदेखे अनजाने गलतियां कर करके, इग्नोर कर करके, चीजों को हम लेटगो वाली चीजों में छोड़ देते हैं। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा ही तो खा रहा हूँ, ठीक है। मैं आज के समय के हिसाब से बात करूंगा, मैं 80 और 90 के हिसाब से बात नहीं करूंगा। समय बदला है, हालात बदले हैं, परिस्थितियां बदली हैं, जॉब के कल्चर बदल गए हैं, कॉरपोरेट कल्चर हो गए हैं, एमएनसीज के अलग अलग टाइमिंग्स होने लग गए हैं, लोग कॉल सेंटर्स में नाइट में जॉब करते हैं, और इंसान को जीवन चलाने के लिए हर तरीके से अपने आप को ढालना पड़ता है। मैं बिल्कुल इसका विरोधाभासी नहीं हूँ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा जब आप प्रकृति के अंगेंस्ट चल रहे हैं, क्योंकि प्रकृति का एक स्वरूप बनाया गया है। दिन होता है, रात होती है, रात सोने के लिए बनाई गई है, जागने के लिए नहीं बनाई गई। हम जानवरों से ये चीज सीख सकते हैं, हम पेड़ पौधों से ये चीज सीख सकते हैं कि रात को देखो वो अपने आप जब सुस्त हो जाते हैं, उनकी पत्तियां ढीली हो जाती हैं, लेकिन सुबह जैसे ही प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है वो तरोताजा होने लगती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे खिलखिला के हंस रहे हैं, जानवर भी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, रात को शांत है। लेकिन एक मनुष्य, एक इंसान वो प्राणी हो चुका है जो 24 घंटे एक्टिव फॉर्म में है। तो हमें क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। हम नींद को भूल चुके हैं, हमें नींद की जरूरत भी है।
0: बिल्कुल,
1: आप 5 साल 10 साल अपनी जवानी, अपने यंग बॉडी को मिसयूज कर सकते हैं, आप जीवन भर उसको मिसयूज नहीं कर सकते। आपको उसको समझना पड़ेगा। आपको ये शरीर नहीं समझे आप तो आप बुरी तरीके से फंसेंगे, और ऐसा फंसेंगे कि कई बार हम नहीं निकल पाते, क्योंकि शारीरिक समस्याओं को आराम से मैनेज किया जा सकता है, मानसिक समस्याओं का मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे समाज में मानसिक समस्याओं को लोग शेयर नहीं करते कि उनको कोई समस्या है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उपहास उड़ाएंगे उनका। वो बताएगा यार मुझे अजीब अजीब थॉट्स आ रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा मरने का मन कर रहा है, तो लोग उपहास उड़ाएंगे, यार तू पागल हो गया है, लोग ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन वो समस्या शारीरिक समस्या से बड़ी है, क्योंकि शारीरिक समस्या का मूल जड़ जो है वो मानसिक समस्या से है। तो ये दोनों आपस में पूरक हैं एक दूसरे के। हमें शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए तो मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रखना पड़ेगा, मानसिक स्वास्थ्य चाहिए तो शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रखना पड़ेगा। और अगर ये दोनों ठीक हैं तो मैं चैलेंज से बोल सकता हूँ कि हर आदमी हर परिस्थिति में खुश रहेगा, चाहे उसको करोड़पति है, चाहे वो लखपति है, चाहे वो नॉर्मल आदमी है, वो खुश रहेगा, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया असली खुश रहना अंदर से है। ये सब चीजें लग्जरी की हैं, जो कम होंगी तो भी चलेगा, ज्यादा होंगी तो भी चलेगा, वो बैलेंस बनाना जानता है। तो स्वास्थ्य को सही रखना है तो योग कीजिए, और योग से यकीन मानिए हम बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों को, 20-20 साल क्रोनिक डिजीज को भी ठीक कर रहे हैं, और लोग ठीक हो रहे हैं। हमारे पास हजारों ऐसे टेस्टिमनीज हैं, मैं आपको वो दिखा सकता हूं जो लोगों ने स्वयं हमें दिए हैं वीडियो बना बना के, कि 20 साल पुरानी बीपी ठीक हो गया, 20 साल पुराना शुगर ठीक हो गया, सर्वाइकल ठीक हो गया। ये बेसिकली बीमारियां नहीं है शशि जी, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आपके इस रूम में हम बैठे हुए, हर चीज ऑर्डर में है, टेबल यहाँ पर है, कंप्यूटर का स्क्रीन यहाँ पर, हर चीज सिस्टमेटिक है तो सुंदर लग रही है। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो, उल्टी सीधी हो, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड होगी। हमें अपनी बॉडी को भी ऑर्गेनाइज करना है, उसको ऑर्डर में लाना है। तो जैसी बॉडी ऑर्डर में आती है तो आपके जितने पैरामीटर्स हैं, वाइटल्स जो हमारे बॉडी को, जिसको हम लेबोरेटरी में टेस्ट कराते हैं, वो अपने आप ठीक आ जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: हमारा तालमेल हमें बस बैलेंस करना है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब हम समझ गए, हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी समझ गए होंगे कि शरीर को स्वस्थ रखना है। तो आपने जैसे बताया कि योग के जरिए आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी सही रहता है, और आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी सही रहता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे ऐसे युवा साथी हैं और भी जो सुनने वाले हैं, वो चाहते हैं कि योग तो वो करें ही करें, साथ ही साथ कुछ रोजगार के अवसर भी वो हो सकता है तलाश हैं इस क्षेत्र में। तो आप तो खुद फाउंडर हैं पंचोपचार वेलनेस रिजोर्ट कांडाताल उत्तराखंड के, तो इस क्षेत्र में जो भी आना चाहता है रोजगार की दृष्टि से, तो कैसे आ सकता है और क्या क्या संभावनाएं हैं?
1: ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है ना, एक बहुत बड़ा विषय है हमारे देश में, और लोग बोल रहे हैं, सरकारें गिर जाती हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन मोदी जी हमेशा एक अच्छी बातें करते हैं। क्योंकि वो, मैं उनका नाम इसलिए लेता हूँ, मैं इसलिए नहीं लेता कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ या किसी पार्टी को, मैं उनकी पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ, व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ, बस मेरा यहीं पर वो पॉइंट है। वो हमेशा बात करते हैं कि अपने आप को जानो समझो तो स्वयं आपके पास काम आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में आओ, आप स्वयं को रोजगार दो, स्वयं को
0: जी।
1: वो चीज कितनी बड़ी फ्रीडम है। आज मेरे कई सारे मित्र हैं कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, बड़ा परेशान रहते हैं, उनको हमारी जरूरत पड़ती है, यार 40 साल हो गए, अब बता यार कुछ मेरे को, अब तो मेरे पास ये बीमारियां हैं, 5-6 बीमारियां हैं, तो पैसा तो आया लेकिन बहुत कुछ सेक्रीफाइस होके उनका छिन गया। तो आज के समय में क्योंकि मोदी जी ने योग को इतना प्रचलित किया, रामदेव बाबा जी ने भी बहुत सारा उसमें योगदान दिया, और बड़े बड़े हमारे योगी हमारे देश में रहे हैं, आज से 15-20 साल पहले उसके ऊपर इतना एम्प्लॉयमेंट या हम बोलें कि लोग इस दिशा में नहीं सोचते थे कि इससे हम अपने जीवन को चला सकते हैं, मतलब एक हम यहाँ से भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आज समय बिल्कुल बदल गया है, आज वेलनेस इंडस्ट्री $1 trillion की इंडस्ट्री है, दुनिया में योग की सबसे ज़्यादा डिमांड है, ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर लोग योग नहीं करते। तो योग टीचर्स जितने भी आएंगे वो भी कम है, एक अच्छा योग टीचर आराम से 50,000-60,000-70,000 रुपए मंथली इजीली कमा लेता है, उसको समय देना होता है, एक अच्छे कोर्स को करने की जरूरत है, कई सारे हमारे छोटे कोर्स भी हैं, 3 महीने के, 2 महीने के, 1 साल के डिग्री कोर्स भी हैं, ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है। मैं तो कहूँगा कि अगर आपने इस विषय में सोचा है तो आप 12th के बाद इस विषय में सोचिए, अब डायरेक्शन में सोचिए, और योग से ही ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, आपके पास अपार संभावनाएं होंगी पैसा कमाने की, जॉब करने की। कई सारी इंस्टीट्यूशंस में आज योग कंपलसरी हो चुका है, कॉरपोरेट्स में कई सारे वर्कशॉप होती हैं जहां पर योग टीचर्स उनके पास परमानेंटली होते हैं। तो योग को लेकर एक, मतलब क्योंकि ये आपका स्वयं का काम है, एक फ्रीलांस के रूप में आप योग कर सकते हो, एक जॉब, स्कूलों में योग की बहुत ज़्यादा डिमांड है, आर्मी में योग की ज़रूरत है, क्रिकेट जितने भी स्पोर्ट्स हैं वहाँ पर भी योग हो रहा है, क्योंकि आज मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, हम लोग बहुत सुपर एक्टिव हो गए हैं। तो योग, जितने भी टीचर आज आएंगे वो भी कम है, बहुत टीचरों की जरूरत है योग में, जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं हम उनको डिटेल में पर्सनली गाइड कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बहुत सारी संभावनाओं के बारे में बताया है कि योग में तो बहुत सारी संभावना है, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे औरों को भी स्वस्थ करेंगे, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आप खुद भी खुश और दूसरे भी खुश रहते हैं।

0: नमस्ते जी, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। अपने सुनने वालों को एक बार फिर से याद दिला दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और खासकर योग पर हम बात कर रहे हैं, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरेंद्र गौतम जी। डॉक्टर साहब, समय हो चला है कि अपने श्रोताओं से अनुमति ली जाए, तो चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं यही कहना चाहूंगा,

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी, किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है। बोली में थोड़ा रियान भी टच है। जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Film making एक creative field है और यदि आप creative सोचते हैं तो ये field आप ही के लिए है. तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में. यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in.
0: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मेरी दादी बोलती है तेरी शादी कभी नहीं होगी, तो दादी बोलती है तू तो दुनिया में सबसे अलग है।
2: तेरी दादी और दुनिया को पता नहीं है कि तू क्या चीज है।

दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, न दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते हैं।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है, जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है। सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
3: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। गाना चला तो गाना चला तो गाना

0: टीचर ने बताया था ना,
1: सभी काम सब लोग कर सकते हैं, पुरुष या महिला।
0: सफाई करना तो हम सभी का काम है। अपा एक मिनट, मैं भी कचरा उठाने में आपकी मदद करूँगी।
2: ठीक है चलो, तो हो जाए कचरा पार्टी।
3: कचरा पार्टी?
4: बर्थडे पार्टी और घर से जो भी कचरा निकला है उसका सही उपयोग और प्रबंधन करना जरूरी है। तो हो जाए कचरा पार्टी।
1: कचरे का सही उपयोग और प्रबंधन मतलब
4: घर पे, स्कूल में या बाहर सड़क पर कचरा यूं ही नहीं फेंकना। ये कचरा हमारे वातावरण, जमीन, हवा, पानी को प्रदूषित करता है।
5: सड़क पर यहाँ वहाँ कचरा फैलाओ तो कितनी बुरी बदबू आती है।
6: और कचरे के आसपास चूहे, छुछुंदर, मक्खी मच्छर का घर बन जाता है और कीड़े भी लग जाते हैं
0: जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालो।
2: रुको तारा, पहले ये देख लो ये कचरा किस तरह का है।
0: कचरा भी अलग अलग तरह का होता है अब्बा।
2: हाँ तारा, ये देखो कि ये सूखा कचरा है या गीला कचरा है।
4: जो आसानी से सड़ जाए वो है गीला कचरा, और जो ना सड़े या कई सालों बाद सड़े वो है सूखा कचरा।
0: ये सड़ सकता है, इसका मतलब ये गीला कचरा है।
2: बहुत अच्छे तारा, हमेशा सोचो कि कचरा दोबारा किस काम आ सकता है।
7: इस गीले कचरे को गमले में डाल के मिट्टी से ढक दें तो कुछ समय के बाद ये गीला कचरा जैविक खाद बन जाता है।
6: तो अंकल, क्या हम बचा हुआ हलवा भी गमले में डाल सकते हैं? ये भी तो गीला कचरा है।
2: नहीं चौधरी, पका हुआ खाना गमले में नहीं डालना, उसे तुम जानवरों को खिला सकते हो।
0: कचरा भी आएगा तुम्हारा काम, तो ये गया गीले कचरे में।
5: और मेरे पास है सूखा कचरा।
2: वाह वाह वाह वाह, तुम सब समझ गए। तो इस तरह घर पर ही सूखे और गीले कचरे को अलग कर लिया। और अब ऐसे कचरे की बात करते हैं जो हजारों साल तक सड़ते नहीं, और कुछ कचरे तो खतरनाक भी होते हैं।
0: हजारों साल तक सड़ते नहीं
3: और खतरनाक भी होते हैं,
2: जैसे प्लास्टिक जो हजारों सालों तक ऐसे ही रहेगा, या फिर टूटा शीशा, ब्लेड वगैरह। अगर इन्हें इस कचरे में मिला दिया और कहीं जानवरों ने खा लिया तो
0: या फिर कहीं शीशे के टुकड़े काम वाली दीदी या कूड़ा इकट्ठा करने वाले भैया को चुप कर दो।
7: इसलिए कोशिश करो कि ऐसी खतरनाक चीजों को अलग से अखबार में लपेट कर बाजार जाते हुए कपड़े का थैला साथ ले लो, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना पड़े।
2: और अगर करना ही पड़ जाए तो उसे बार बार इसी तरह से इस्तेमाल करो, ना कि कूड़े में फेंक दो।
6: वाह, बार बार इस्तेमाल।
5: जैसे इस गिफ्ट रैपिंग पेपर को हम अपनी नोटबुक या किताबों में कवर की तरह चढ़ा सकते हैं।
2: अरे ये क्या खुसर खुसर चल रही है।
0: अब आप देखिए अप्पा, हमारी कचरा कला। कचरा पार्टी की कचरा कला।
6: हमने कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके अपने वातावरण को बचाया।
8: अरे वाह, इसे तो मैं अपने टेबल पर सजाऊंगा।
1: तो तुम सब कब कर रहे हो कचरा पार्टी?

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगी?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: से 9 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक गुलाबी गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या है। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरो साधन 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: सुना शारदा 90.8 FM
1: सत पक्षियां रंगा दी तुम बरसाती सुन रंग धरती का गोटे रंगा है लहरिया
2: वो दोनों को ही चाहतों ने चाहतों से मारा इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा
3: अपने धंधे की फितरत समझिए। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

जाने हैं कहां, ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो संग बाय लकी अली, कंपोजर्स माइकी मैक्लेरी और सूरज कुलवडी, लिरिसिस्ट कौसर मुनीर। तू जाने है कहां, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन.
1: जिंदगी, म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय रुहान मलिक, लिरिक्स बाय साकिब नवी, ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
5: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
6: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
5: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
6: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
5: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
6: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
5: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
6: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
5: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
7: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
8: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशारदा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
7: So, where are you? The world is here at Sharda University.
9: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to

0: बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: तेज होगी ते तेनू जोगन होना पै जाऊगा।
1: Get ready!

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, I'm Ranvijay. You are listening to Suno Sharda at 90.8 FM.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सफाई ही आधा ईमान है,
2: यानी स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है।
1: और ये भी तय है, स्वच्छ रहकर ही हम तमाम बीमारियों को मात दे सकते हैं।
2: कैसे, कब कब हाथ धोने चाहिए, चलिए ये हम आपको बताते हैं।
1: खाना बनाने से पहले,
2: खाना खाने से पहले,
1: बच्चों को खाना खिलाने से पहले,
2: शौचालय के प्रयोग के बाद,
1: बच्चों के मल को साफ करने के बाद,
2: बाहर से आने के बाद,
1: पशु को छूने और उनके मलमूत्र को साफ करने के बाद,
2: खांसने और छींकने के बाद साबुन और साफ पानी से अपने हाथों को धोएं और हर बार हाथों को कम से कम 40 सेकंड तक धोएं।
1: हमारा भविष्य हाथों में है,
2: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से
2: सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा
1: जनहित में।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स यानी टीबी के आसार, जैसे कि दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
2: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुण शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़ी से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुण शारदा 90.8 एफएम।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: गगन कोकरी फतेह।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
2: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
1: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
2: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
1: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
1: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
2: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कृपया आप रास्ता देंगे?
6: प्लीज।
5: थैंक यू।
7: वर्षा जी, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
5: तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चों कौन हूँ मैं।
7: अलिका शरारती है। वो तो ऐसे मजाक करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

नवजात शिशु के संपूर्ण विकास के लिए दूध पिलाने वाली माँ को खाना चाहिए ये आहार। जो अपने जन्मजात बच्चों का अच्छा विकास देखना चाहती हैं, उन्हें स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। आपके द्वारा किए गए स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन आपके बच्चे को उचित मात्रा में सभी पोषण तत्व प्रदान करता है और किसी भी प्रकार के पोषण तत्व की कमी से पीड़ित नहीं होने देता। स्वस्थ और पौष्टिक आहार केवल गर्भ अवस्था के दौरान ही आवश्यक नहीं होता है, बल्कि वो आपके स्तनपान की गुणवत्ता के लिए भी जरूरी होता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपने सामान्य आहार में उच्च प्रोटीन, कैल्शियम, पोषण तत्व और विटामिन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए, साथ ही उन्हें तरल पदार्थ का भी सेवन करना चाहिए। तो चलिए कुछ ऐसे ही खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी लेते हैं, जिनके सेवन से आपके बच्चे के विकास के लिए संपूर्ण पोषण तत्व प्रदान हो सकते हैं। दूध पिलाने वाली महिला को पीना चाहिए दूध। आपके आहार में कैल्शियम को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए दूध आवश्यक है। यह आपके बच्चे की हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी हड्डियों में उचित कैल्शियम बनाए रखता है। यह आपके बच्चे के शरीर में एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है। स्तनपान कराने वाली माँ को पीना चाहिए अधिक पानी। स्तनपान कराने वाली माताओं को कैफीन युक्त और अल्कोहल पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रसायन स्तनपान के माध्यम से आपके शिशु के अंदर भी जा सकते हैं। कैफीन युक्त पेय के 3 कप से अधिक का सेवन करने से माताओं को नींद न आने की समस्या हो सकती है और आपके शिशु में चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। दूध पिलाने वाली माँ का भोजन। बच्चे के जन्म के बाद माँ आहार में खाए हरी पत्तेदार सब्जियाँ। स्तनपान कराने वाली माताओं को हरे पत्ते वाली सब्जियों का उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। हरे पत्ते वाली सब्जियाँ विटामिन और पोषण तत्व जैसे विटामिन ए और कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन आदि में समृद्ध होती हैं, जो माँ और बच्चे दोनों के अधिकांश पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ को खाना चाहिए संतरा। संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से माताएं संक्रमण से दूर रहती हैं और उनके बच्चों को प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने में भी मदद मिलती है। बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला को खाना चाहिए साबुत अनाज। साबुत अनाज फोलिक एसिड में समृद्ध होता है। साबुत अनाज सही तरह से कोशिका में वृद्धि के साथ साथ आपके बच्चों के मस्तिष्क के विकास में भी सहायता करता है। फोलिक एसिड पूरक के रूप में चिकित्सक द्वारा एक बार देने की सलाह दी जाती है। साबुत अनाज में मौजूद फोलिक एसिड इन पौष्टिक जरूरतों को पूरा करने में मददगार है। स्तनपान कराने वाली महिलाएं खाएं मछली। सैल्मन मछली DHA से समृद्ध होती हैं और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी उच्च मात्रा में पाई जाती है। यह आपके बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, हालांकि इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी

0: Hi, this is Sharmili Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग, तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।